0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुन दिया सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे आदिति नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतूषा श्रोताओं को भी नमस्कार मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृत नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई है एडीबी की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पारित किए गए वित्त पोषण में मॉरिशस को मात्र 12 मिलियन रुपए से थोड़ा ज़्यादा ही प्राप्त हुआ है ये पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत कम है जब ये राशि कई बिलियन रुपए तक पहुंची थी लेकिन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार इस कदम का अर्थ ये नहीं है कि ये संस्था मॉरिशस को छोड़ रही है बल्कि बैंक का कहना है कि कई बड़ी परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है एडीबी इस कदम के लिए कुछ परियोजनाओं में देरी और उच्च सार्वजनिक ऋण का भी कारण बताता है गन्ने की कटनी की शुरुआत के संदर्भ में कल पंजाब के अमातू के कोविल में आयोजित वार्षिक प्रार्थनाओं में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भावी राष्ट्रीय बजट की रूपरेखा प्रस्तुत की जो उनके अनुसार मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच जिम्मेदारी सॉलिडारिटी और आर्थिक दक्षता पर आधारित रहेगा उन्होंने कहा कि ये दूसरा बजट एक कठिन आर्थिक दौर के बीच तैयार किया गया है और देश को यथार्थवाद तथा दृढ़ संकल्प के साथ सही राह पर वापस लाना आवश्यक है प्रधानमंत्री ने मौजूदा चुनौतियों के मद्देनज़र सभी से एकजुट होकर और जिम्मेदार तरीके से राष्ट्रीय हित में काम करने की मांग की

अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज तड़के सुबह दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 अंकों और गहराई 35 किलोमीटर की मापी गई। सुनामी की चेतावनियां जारी की गई हैं और वहां के राष्ट्रपति फेडिनान मार्कोस ने लोगों के लिए जल्द से जल्द ऊंचाई वाले इलाकों में पनाह लेने के आदेश जारी

0: आम हालत मस्कैलेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। आमतौर पर दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, 2.50 मीटर तक की लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है, जबकि दोपहर बाद दक्षिणी लगूनों में स्थिति बेहतर हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:40 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।
1: RM3 Radio.

हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे विसाल के बाद तुम लोग देखोगे कि लोग अपने को दूसरों पर तरजीह दे रहे होंगे। सहाबाए कराम ने दरियाफ़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे वक्त में हमारे लिए आपका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस तुम लोगों के हुकूक की अदायगी में कोताही न करना और अपने हक का सवाल अल्लाह से करते रहना। बहवाला सही अल बुखारी।

0: नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया कि मेरे वालिद ने मुझे एक ग़ुलाम तोहफ़ा दिया, तो मेरी वालिदा ने कहा कि जब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह न बनाएं, मैं राज़ी नहीं हो सकती। चुनांचे हाजिर खिदमत होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मामला अर्ज़ किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया फरमाया कि इसी जैसा तोहफ़ा तुमने अपनी तमाम औलाद को दिया है। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। चुनांचे वो वापस हुए और तोहफा वापस ले लिया। बहवाला सही अल बुखारी।
1: नहीं कोई

सूरा इसरा उर्दू तर्जुमा और रिश्तेदारों को उनके हक देते रहना, ये आयत मुबारक हमें अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखने का पैगाम दे रहा है। इस आयत की रोशनी में ये पैगाम दे रही है, इस आयत की रोशनी में ये साफ जाहिर है कि हर शख्स पर उसके रिश्तेदारों और अजीज़ों का भी हक है। अल्लाह ताला हमें अपने रिश्तेदारों से मुहब्बत

हज़रत बरीदा असलमी रदियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए बरीदा, जिसके साथ अल्लाह ताला खैर का इरादा फरमाते हैं उसको ये कलमात सिखाते हैं। उर्दू तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे अपनी रज़ा से मजबूत कर दे, मुझे पेशानी से पकड़ कर खैर की तरफ ले जा, मेरी रज़ा की मुंतहा इस्लाम को बना। ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे मजबूत कर दे, मैं जलील हूँ, मुझे बाइज़्ज़त कर दे, ए अरहमर रहीमीन, मैं तेरा मोहताज व फ़कीर हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ये कलमात सिखाते हैं फिर वो मरते दम तक नहीं भूलता। सामईन कराम, सबाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। तकनीकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे, अपना ख्याल रखे। खुदा हाफिज। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: 94.96
1: with RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Dini Seyarangam.

करीता हो तेरे सिको हो ये सुंदर रोमांटिक गीत इन द रोमांटिक वॉइसेस ऑफ हरिहरन व महालक्ष्मी आयर छेरिया तारा छेरिया भावना टेकन फ्रॉम द मूवी दीपाशोक

महादेव की बात मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है। शिव जी के पास सारी दुनिया का जहर है, उन्हें नीलकंठ कहते हैं, और फिर भी वो सबसे शांत सबसे स्थिर कैसे? भक्त जिंदगी में दर्द आए तकलीफ आए महादेव की तरह उसे पी जाओ, टूटो मत, क्योंकि जो जहर पचा सकता है वो ही असली शिव है। हर हर महादेव।

भक्तों, राम और विष्णु एक ही आत्मा के दो नाम हैं। विष्णु जी पालनहार हैं, यानी जो बनाया है उसे संभालते हैं, छोड़ते नहीं, और राम जी उन्हें हर रिश्ते में, हर मुश्किल में मर्यादा नहीं तोड़ी। इसलिए कहते हैं राम और विष्णु एक ही है। भक्तों, आज हम भी यही करें, जो हमें अपने हैं उन्हें संभालें, जो जिम्मेदारी है उसे

भक्त माँ अम्बे इस पूरे ब्रह्मांड की माँ है। जब कोई रास्ता नहीं सूझता, जब थक जाते हैं हम, तब लगता है अकेले हैं, तब माँ अम्बे को पुकारो, वो हमेशा सुनती हैं। माँ का एक नाम है दुर्गा, यानी जो दुर्गम रास्तों से बचाए। भक्तों, आज की सुबह माँ के चरणों में रख दो, माँ सब संभाल लेगी। कहते हैं ना, जय माता दी बोलते ही सारी उलझने, सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं।

भक्तों आप जुड़े हैं रेडियो मनोरंजन से पूनम के साथ। आज का ये वक्त भगवान के नाम था, भक्ति के नाम था, आपके नाम था। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और भक्ति में शक्ति, बिल्कुल शक्ति यानी कि दम रखिएगा। जय श्री हरि, जय माता दी, हर हर महादेव।

0: शक्ति।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। एफएससी के अनुसार उनका वित्तीय रेगुलेशंस क्षेत्र में 20 सालों से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर अनुभव रहा है। उन्होंने मॉरिशस सहित अमेरिका, यूके, भारत और कैमन द्वीपों में काम किया है। इस साल के लिए गन्ने की कटनी का सीजन आने वाले कुछ दिनों में शुरू होगा। 22 जून से आलतेओ और 13 कारखानों से पेड़ाई का काम शुरू होगा। विशेषज्ञों के अनुसार भले ही इस कटनी का सीजन एक सामान्य से ज़्यादा सूखे मौसम की बात आया है, फिर भी गन्ना पैदावार की कुल वृद्धि संतोषजनक है। कृषि सदन के तरफ से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सर्दियों के आगमन के साथ वृद्धि में धीरे धीरे कमी आने के कारण कटनी मध्य दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में 201 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड पार करने के बाद अप्रैल 2026 तक हाउस होल्ड ऋण बढ़कर 207.46 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। बैंक ऑफ मॉरिशस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें वार्षिक 12.2% की वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस बढ़ोतरी के कारण के कई कारण हैं। परंपरागत रूप से मॉरिशन लोग घर खरीदने या बनवाने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन हाल ही में अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट की कीमतों में लगभग 30% की वृद्धि ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। एक और कारण है आम जीवन चलाने और खरीदारियों के लिए क्रेडिट सुविधाओं का सहारा लेना। इसके परिणाम से परिवारों की खरीद शक्ति और बचत में कमी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कर्ज चुकाने में अब मॉरिशन परिवारों की आय का लगभग 18% खर्च होता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज सुबह दक्षिण फिलीपींस में पेश आए 7.8 अंकों की तीव्रता वाले जोरदार भूकंप में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। 129 लोग घायल बताए गए हैं। इस भूकंप के बाद फिलीपींस और आसपास के कई देश, इंडोनेशिया और जापान में भी सुनामी के वार्निंग जारी किए गए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: श्लोक समाचार सुनिए। तालिबो लेन अमोरी में, तालिबो लेन अमोरी में 45 साल की 45 years old श्रीमती दीपा गोकुल लालमन, श्रीमती दीपा गोकुल लालमन जो पैदाशी नाम गोकुल जो दीपा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं कि अर्थियाज दिन के 3 बजे, इनके अर्थियाज दिन के 3 बजे इनके पिता श्री प्रेम गोकुल के मकान तालिबो लेन अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांड पा वेला वांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। सदाली रोड वाकुआ में, सदाली रोड वाकुआ में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड मिसेस बीबी साहेरुनिसा कुदाबुकस, मिसेस बीबी साहेरुनिसा कुदाबुकस पैदाशी नाम जुमन जो मीना नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 3:30 बजे, इनका जनाजा आज दिन के 3:30 बजे इनके मकान सदाली रोड वाकुआ से उठाकर पहली नमाज जनाजा के लिए सदाली की मस्जिद दे जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे 3:30 PM। शोक में रूबेन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं। भाई प्यार सिखाना क्या, हम तो यहाँ पर आते हैं और कितने सारे हमारे दोस्त हैं जो दिल में प्यार लिए हमारा इंतज़ार करते हैं, बस कब प्रोग्राम शुरू होगा। और ये प्यार सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, ये प्यार होता है हमारे उस प्रोग्राम का जहाँ पर हम सभी मिलकर एक पूरी फैमिली बन गए हैं। वेलकम टू सुहाना सफ़र। जी हाँ, सुहाना सफ़र अब वो प्रोग्राम बन गया है जिसके चलते यहाँ पर हर कोई हमारे साथ जुड़ रहा है और अच्छा भी लगता है जब आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे गीतों को पसंद करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर परदेश से भी लोग हमें सुनते हैं और उसके लिए तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। चलिए जी, आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा खूबसूरत गीतों का यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए, और कुछ गाने आपके कुछ हमारे पसंद के होंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और क्या, बस टिकटॉक हमारा थोड़ी देर में लाइव होगा। भाई मैं सोच रही थी, भाई आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं ना कि हमारा टिकटॉक लाइव कब होगा, तो चलिए टिकटॉक को हम लाइव रखते हैं अभी थोड़ी देर में। आप लोग बस हमारे साथ इन गीतों का मज़ा लेते रहिए और हमारे साथ गुनगुनाते रहिए। यहाँ पर एक के बाद एक खूबसूरत गीतों का सिलसिला आपके लिए हम लेकर आए हैं, और चलिए लता जी की आवाज़ के साथ कार्यक्रम को आगे लेते चलते हैं।
1: RM3 Radio.

0: दिल तो है दिल दिल का एतबार क्या कीजिए। चलिए जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना है आपको और जुड़े रहिए क्योंकि खूबसूरत गीतों का ये सफर जारी है आपके लिए। प्रोग्राम सुहाना सफर विदिता के साथ
1: RM3 रेडियो

0: मेरे महबूब कयामत होगी। चलिए भाई कयामत तो नहीं, लेकिन यहाँ पर साथ हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं।
1: सुहाना सफर।
0: चलिए जी, सुहाना सफर हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पर हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं एक्चुअली हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहें और हमारे टिकटॉक के साथ भी जुड़े रहते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे साथ हैं मिस्टर जितिन डुलवा। हैप्पी मंडे आपको भी। नमस्ते एजे, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड मैसेज है नेक्स्ट गाना फॉर माई लवली सन सोहल मथुरा और पिचिक आफ्रिक। ओके जी, चला देंगे नेक्स्ट गाना उनके नाम। और यहाँ पर हमारे साथ हैं, हाय विदिता, कैन यू प्ले सॉन्ग फॉर माई डॉटर नू, शी विल गेट मैरिड सून। ये है फरनाज की तरफ से, ठीक है जी, अगला गाना उनके नाम। एंड यहाँ पर एजे ने बोला कल उनका बर्थडे था और वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड चलो जी, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशी हमारे सभी लिसनर्स की तरफ से। अनोरकी माधुरी हमारे साथ हैं एंड यहाँ पर रंभा जी हमारे साथ हैं, नमस्ते आपको भी। अब्दुल रिशाद, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए गीतों के सफ़र में एक प्यारा सा गाना आप सभी हमारे लिसनर्स के नाम, स्वीट हार्ट फंसे।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: सांसों से नहीं कदमों से नहीं बल्कि मोहब्बत से बनती है दुनिया। चलो ये बात तो हम भी मानते हैं कि जहां प्यार नहीं वहां कैसी जिंदगी। इसी के साथ तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रोग्राम में अब हम वेलकम करते हैं बबीता बंधु का। वी हैव शाहिद इकबाल फ्रॉम पाकिस्तान। रिश्ता कहती है तन्वी के लिए गाना हो जाए, वहीं पे मनीता जी ने हमें याद किया। आशा अरुणा दीप्ति उनके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए गाना मांग रही, वहीं पे आशा और आशा लखनऊ हमारे साथ जुड़ी हैं। इंदिरा जी आपका स्वागत है। लीना की तरफ से उनके हस्बैंड कृष्णा के लिए गाना। आरती सदा सिवैन हमारे साथ है। वी हैव फिया दीक्षा बिल्ता आफरीन रोहित फ्रॉम सुरीनाम ईशिका निवैन। वी ऑल्सो हैव अनवर एंड रानी मोहिद्दीन पिंकी सभी के सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैप्पी फॉर यू एजी, थैंक यू सो मच। चलिए जी यहाँ पर आप कहते हैं ओए होए क्या गाना लगा दिया, पुरानी यादें फिर से ताज़े हो गई। तो यही तो हमारा प्रोग्राम है सुहाना सफ़र, जहाँ पर आपके सफ़र को हम सुहाना बनाते हैं हमारे खूबसूरत गीतों के साथ। चलो जी यहाँ पर ट्रियोली से हमें सुन रही हैं सूरज सजाद, आपका वेलकम है सूरज। हाँ ये राम राम, शुभ दिन आपको, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तनवीर खालिद आपका भी हम वेलकम करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं साहिल, क्या बात है, ये भी जुड़ गए हैं। इंदिरा मुतव सिंह, लक्ष्मी जी आप बताओ आप कैसे हो। तो यहाँ पर गाना होगा विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू माई मदर इन लॉ पद्मा, बहुत ही प्यारा सा गाना उनके नाम ज़रूर करेंगे। यहाँ हमारे साथ हैं नेक्स्ट गाना अनुषा की तरफ से उनकी प्यारी से मामा शोभा मधु की जन्मदिन के मौके पर। श्री 63 इयर्स ओल्ड टुडे रहती हैं पिछतवी है, उनको बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार है। राज हाय राज कैसे हो आप, एंड एक और हेलो आया है कहीं से, थैंक यू। तो ऐसा करते हैं अभी नेक्स्ट गाना जो होगा हम कमला जी आपके नाम भी डेडिकेट करते हैं। एंड साथ में यहाँ पर आफरीन कहती है कोई गज़ल हो जाए। हाँ फिल्मी गज़ल है हमारे लिस्ट में, ज़रूर चलाएंगे आपके लिए। और साथ में यहाँ पर बहुत सारा प्यार भेजा है हमें निवेद ने, थैंक यू सो मच।

0: एंड किसी ने कहा कि रोमांटिक गाना अगर हो जाए तो राज पूछ रहे हैं भाई ये रेडियो स्टेशन कहाँ से है भाई, ये मॉरिशस का है। यू आर लिस्निंग टू मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये है हमारा RM3 रेडियो मनोरंजन।
1: You're listening RM3 Radio.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: कहते हैं ना टाइम इज़ फ्लीटिंग, वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता, और हमें भी चाहिए कि हम वक्त की इज्जत करें। और चलिए वक्त की बात चली है तो वक्त वक्त पे यहाँ पर हमें मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव वीमा कलूते, वी हैव सूरज सीता, विकानी देवी, वी हैव नी, विवेक यादव, युद्धिश, ललिता, नजीमा एंड वी हैव जीवन। कहते हैं कि इंतज़ार करते रहो, इंतज़ार का फल मीठा होता है। हाँ, लेकिन जीवन जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आम की बजाय नींबू का पेड़ लगा दो तो नींबू के पेड़ में आम नहीं आता, इसीलिए वो फल खट्टा होता है। तो सोच समझ कर भी हमें पौधा लगाना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दीप्ति जी थैंक यू सो मच, एंड रेखा जी कैसी हो आप? हाय मोहिनी, हाय परी, नमस्ते, कैसे हो? चलो जी यहाँ पर आई एम वेटिंग एजे, डोंट वरी। एंड बेबो हमारे साथ है, चलिए भाई। यहाँ पर माधुरी जी कहती हैं कि सैटरडे को देखा आपको उछल कूद करते थे, हमारा काम ही उछल कूद करना, हम इसीलिए बाहर गए थे। थैंक यू सो मच। एंड सुबी नमस्ते, हाय केतिका कैसे हो? नमस्ते नमस्ते बबीता बुलाकी जी, और इतने सारे दोस्त आ गए हैं, रुमिता गुड़ा जी आ गई हैं, और साथ में धर्म हमारे साथ हैं। वी हैव अनस्तासिया, नमस्ते, थैंक यू मिमी, थैंक यू सो मच, आपको हमारे गाने अच्छे लग रहे हैं। और चलो मेहंदी लगाने की बारी है, सुबह लगा देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मौका मिला लगा देंगे। फिलहाल अभी के लिए जो गाना आ रहा है ना, मुझे पता है आपको 100% पसंद आएगा। कहते ना कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू सुदेश गुजा फ्रॉम रुमिता एंड दशरथ, और साथ में गुजा फैमिली की तरफ से। कितने सारे दोस्त अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, है ना। अगर आप उनको विश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

0: कभी अलविदा ना कहना. चलिए नेक्स्ट गाना विनन गुरु जो पेरिस से भी सुन रही हैं रेशमा राम की सुन जो हमारे साथ है. और इंदिरा राम दुनिया कहते हैं उनकी बेटी प्रतिमा का बर्थडे है आज, उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे. और चलिए इसी के साथ शालिनी हरी हमारे साथ है और मनीता जी आपके लिए पेश है ये प्यारा सा गाना.
1: मोहब्बत का न

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए जी, खूबसूरत सा गाना था आपके लिए और इन्हीं खूबसूरत गीतों के बीच एक और प्यारा सा नगमा अब हम लेकर आए हैं। अब नगमे की बात की है तो एक और नगमा तो आएगा ही, है ना? तो चलिए उसी गाने के साथ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी फरमाइशें भी आई हैं जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वो गाने आपके लिए पेश करें। कभी कभी हम मिस कर देते हैं, इसके लिए हम आपको सॉरी कहेंगे। रेडियो मनोरंजन आरएमथी पर विदिता का साथ है। यहाँ पर मैसेज एक के बाद एक आ रहे हैं, तो चलो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अपना कुछ, तो बहुत सारे लोग हैं कहते हैं खाने की बात मत करो वरना गरब गजब हो जाएगा। चलो सुल्ताना खानदाई का हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। एंड हमारे साथ और कोई हैं? मम्मा संगीता, पापा धर्मराज मोंगू से हैं। नेक्स्ट गाना जना कहती है कि उनके लिए। और यहाँ पर गंगा जल, वैसे आप लोग नाम नहीं लिखते हो ना, ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, प्लीज़ नाम तो भेज दिया करो। चलो जी, यहाँ पर अब हम डेडिकेट करते हैं हमारे प्रोग्राम का नेक्स्ट गाना शमिला बुधन के नाम, जो हमें सुन रही हैं। और यहाँ पर अनवर जो है हॉस्पिटल में है, कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई वुड लाइक टू लिसन टू अ सॉन्ग इफ़ यू कैन प्लीज़। ऑफ कोर्स आई एम गोना प्ले इट फॉर यू, जस्ट हैव टू वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। राधे राधे राधा, कैसी हो आप? चलो राधा जी भी आ गई, बहुत सारा प्यार बनीता जी ने भेजा है। मनोज जी आ गए हैं, शुभ दिन। रजिया खान, कैसे लग रही कैसे लग रही हो? अच्छा जी, ऐसे लग रहे हो, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, गौरंगा कैसे हो आप? और इंदिरा जी का भी वेलकम, अंजलि चेतियार का भी वेलकम, अनुषा जी शुभ सोमवार आपको, एंड रेशमा उनके हबीब विनय के लिए गाना मांग रही हैं। चलो जी, कवि किशन स्वागत है आपका।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan।
1: और ये गाना मोहिनी जी आपके लिए।

0: RM3 Radio. Radio.
1: इसी गाने के साथ बढ़ते हैं अब हम एक बजे के समाचारों की ओर. मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में. यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं, जितने भी लोग हमारे टिकटॉक पे लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उनको धन्यवाद कहना

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: घड़ी मिलाते चलिए, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन RM3। दिन के ठीक एक बजा है।

0: अभी के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ रजनी जी, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करती है। चेतन बाबूलाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो वे विपक्ष नेता का पद संभालने के लिए तैयार है। चेतन बाबूलाल ने इस बात पर विश्वास जताया कि वे जिम्मेदारी अलग तरीके से संभाल सकते हैं, क्योंकि वे पुरानी सरकार का हिस्सा नहीं थे जिस तरह के वर्तमान समय में जुले शौको हैं। आज सुबह वे एगेमेन में कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। वे फ्रों मिलितों फ्रों क्रिसिस के सदस्य हैं और उन्होंने बताया कि अगर वे विपक्ष नेता बने तो प्रधानमंत्री

0: मंत्री को उनके प्रश्नों का जवाब देना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा, यही सही बदलाव होगा। मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा स्वीकृति नई फाइनेंसिंग में भारी गिरावट आई है। एडीबी की 2025 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल पारित किए गए नए वित्त पोषण में मॉरिशस को मात्र 12 मिलियन रुपए से थोड़ा ज़्यादा ही प्राप्त हुआ। ये पिछले कुछ सालों की तुलना में बहुत कम है, जब ये राशि कई बिलियन रुपए तक पहुंची थी। लेकिन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार इस कदम का अर्थ ये नहीं है कि ये संस्था मॉरिशस को छोड़ रही है, बल्कि बैंक का कहना है कि कई बड़ी परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। हीरामन जवाहिर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। वे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। विदेशी समाचारों में फिलीपींस में 7.8 अंकों वाला एक जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें मरने वालों की संख्या कम से कम 19 तक पहुंच गई है। घायलों की तादाद 129 तक बताई जाती है। फिलीपींस के प्रमुख दक्षिणी द्वीप मिंडानाओ में जनरल सांतोस सिटी के तट के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। इलाके के कई देशों, फिलीपींस के साथ साथ इंडोनेशिया और जापान ने भी सुनामी की चेतावनियां जारी की। फिलीपींस के राष्ट्रपति फेडिना मार्कोस जूनियर ने सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं ताकि तुरंत कदम उठाए जाएं। लोगों से ऊंचे इलाकों में भी जाने की मांग की गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे। चीनी सरकारी एजेंसी सिंघुआ के अनुसार वे वहां उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बैठक के दौरान दोनों नेता दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती की पुष्टि करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 53 साल के 53 years old के जनाब मोहम्मद फैजल गुलाब खान, जनाब मोहम्मद फैजल गुलाब खान जो औगी नाम से भी जाने जाते थे, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के दो बजे उनके मकान जगदम्बी रोड गुडलैंड से उठाकर दफनाने के लिए बिलमोका कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। टालीपोलिन अमोरी में 45 साल के 45 years old की श्रीमती दीपा गोकुल लालमोन पैदाशी नाम गोकुल जो दीपा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके पिता श्री प्रेम गोकुल के घर टालीपोलिन अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घाव पावे लावांचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। साडाली रोड वाकुआ में 78 साल के 78 years old की बीबी सहेरुनिसा कोदाबकस पैदाशी नाम जुमन जो मीना नाम से भी जानी जाती थी, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके घर साडाली रोड वाकुआ से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए सादाली मस्जिद ले जाया जाएगा, जिसके बाद दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर
1: और सुहाना सफर में चलिए देखते हैं हम सफर कौन बने हैं हमारे। नेक्स्ट गाना हम शमिला चुनीलाल के नाम डेडिकेट करते हैं, साथ में ये गाना जाएगा साइलेश और अफीजा के लिए, वीना गंगा दोस्त उनके पति की तरफ से, साथ में है विश्वदेव, वेलकम स्वागत है आपका। एंड साथ में यहाँ पर हम डेडिकेट करते हैं गाना फॉर सिस्टर जोशीला, बेटी तेष्णा एंड अनसुया निखिल फैब्रिस जो कि स्विट्जरलैंड में है, कहते हैं सी साइड, लेट मी गेस सी साइड है लेक है, मैं तो लेक में ही गई थी, सी साइड का मुझे पता नहीं है, बस इतना पता है स्विट्जरलैंड इज लैंड लॉक्ड सो आई डोंट रियली नो, हाँ लेकिन वहाँ की जो लेक्स हैं मुझे पता है, वहाँ पे आपको कुछ बीचेस जैसी दिखते हैं वो। ओके, तो अगला गाना होगा आपके लिए एंड वी हैव प्रवीणा कुमारी, प्लीज़ गेट वेल सून, सूर्या, सुनीता बोजू, साथ में है संजय रोहन, विकास बातो, सिमला बिजादर, आपके लिए करुणा जी, गाना आपके नाम, प्रेमिला जी नमस्ते, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे साथ गाने गुनगुनाने के लिए भी रेडी हैं। संजय जी आपका भी हम वेलकम करते हैं और नमस्ते उत्तम, आपका भी स्वागत है।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: लो भाई सुहाना सफर के जितने भी हमारे हम सफर हैं एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का। दिन के 1:15 हुए हैं मंडे 8th of June। जी हाँ, आज के दिन कितने सारे दोस्त अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उनको हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे। और चलिए यहाँ पर कुछ और दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभी किसके नाम गाना डेडिकेट करें, तो चलिए यहाँ पर गाना होगा आपके लिए प्रमिला जी। वी हैव साहिल, कहते हैं कि हमारे बॉस अनिल काल नेपाल जा रहे हैं, एक हफ्ते के बाद आएंगे, उनको बॉन वायाज कह देना। ठीक है जी, आपको कहेंगे बॉन वायाज, हैव अ सेफ फ्लाइट एंड वापस आए तो हमसे ज़रूर मिलें। इंडिया से जब भी कोई आता है हम एक ही चीज़ उम्मीद करते हैं उनसे और उनको पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय एस्थर, हाउ आर यू? हाय रोनिका जी, कैसी हैं आप? एस्थर ने भेजा है ब्लेसिंग्स फ्रॉम फिजी आइलैंड्स। हेलो फिजी वालों, कैसे हो? एंड नेक्स्ट गाना जाएगा हैप्पी बर्थडे टू

मकुसीरा सौदागर एंड यहाँ पे आ गई हमारे दोस्त तरुण राम, कैसे हो? आपकी विदिता रानी तो बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर बस गाने की फरमाइश ही आई है। कौन सा गाना किसके नाम चला है यहाँ पर? राम राम जी, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और बस आपने राम राम लिखा, अपना नाम भी लिख देते तो बहुत अच्छा होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी किसी ने कहा था कि अगर कोई गज़ल हो जाए तो हम फिल्मी गज़ल ज़रूर चलाते हैं हमारे प्रोग्राम में, और अर्थ फिल्म का ये गज़ल जो है ना चित्रा सिंह की आवाज़ में आपको पसंद आएगी।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर जिंदगी में वही है जो है, प्यार और कुछ नहीं। प्यार से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है हमारी ज़िंदगी में। तो इसी प्यार के साथ तो हमारे दोस्त आते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कुछ पल हमारे साथ बिताते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए। वैदेही जी नमस्ते, आपका स्वागत करती हूँ मैं प्रोग्राम में। और यहाँ पर परी कहती हैं कि मेरे निफ्यू अमन कुंजा का आज बर्थडे है, प्लीज़ उनके लिए गाना, उनकी मम्मी बीना, पापा राजन, उनके भाई अक्षय की तरफ से विशेज हैं, थैंक यू सो मच। कविता अनु आ गई है और जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, साहिल का कहना है कि भाई प्लीज़ आप लोग हमारे लिए थोड़ा केक ज़रूर लेके आना। चलिए उनको केक खिलाएं, हम गाना सुनाते हैं।
2: You're listening RM Free Radio, Radio, Radio, RM Free Radio, Radio, Radio.

You're listening to RM3 Radio Manoranjan.

0: वादे हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि वादे टूट जाते हैं, है ना? और कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं।
1: सुहाना सफर।
0: वैसे ये बहुत ही प्यारा सा वादा था, बहुत प्यारा सा गाना है। और संजू है मिलान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाय संजू। एंड वी हैव बबीता माया राम दोस्त जी, काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़ी हैं लेकिन कहती मैं हूँ इधर ही हूँ। पद्मिनी पोइन एंड सलमान, थैंक यू फॉर लविंग दिस सॉन्ग। हेमा दुखेत, आपका वेलकम करते हैं हम। एंड यहाँ पर वीरन कुमारी बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे गाने। ऋषिका, नाइस सॉन्ग, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अनीता जी, फ्लिका फ्लाक से साथ दे रही हैं, कहती हैं हैप्पी मंडे। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो? एंड नेक्स्ट गाना जो है, गाना किसके लिए होगा भाई? उन्हीं के लिए होगा जो सुन रहे हैं ना, और किन के लिए होगा? वैसे आप लोग चाहे तो हमारी इस लाइव को शेयर भी कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस समय हम टिकटॉक पर लाइव हैं। और अभी फ़िलहाल खूबसूरत गीतों के सफ़र में ये सुदास साहब का ये गाना, हमने कहा था ना थोड़ा सा मूड बदलना चाहिए। सुदेवी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? चलिए गाना संजू के नाम जिससे मैं हमें सुन रहे हैं, कभी जॉगिंग करते हुए, कभी घर पे चाय या कॉफी पीते हुए। और यहाँ पर दिव्या की मम्मा, आपके लिए भी गाना होगा, अंजनी, राइट? कहते हैं क्या कमाल के गाने चला रही हैं आप, मज़ा ही आ गया। चलो भाई, आपको अच्छा लगा हमारे ये गाने तो सुनते रहिए, हम हैं आपके साथ 2 बजे तक।

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए जी, इसी के साथ नेक्स्ट गाना होगा आप सभी लिसनर्स के नाम। यहाँ पर हमारे साथ कल्याणी जी कहती है डांस करो। हाँ कर रहे हैं, आप भी करो साथ में हमारे। माया जी एंजॉय करो। दीप्ति जी क्या बात है, थैंक यू सो मच। सुमन अब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और गाना होगा आप सभी के नाम। प्रकाश द्यू सिंह हमारे साथ हैं, थैंक यू जी। वैदेही आप खान भी आ गए हैं, चले तो इनका भी हम वेलकम करते हैं। और दानी जगरू हैं गुडलैंड से, उनके लिए होगा ये गाना।

0: स्पेशली गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं सुदेवी के लिए जो बीमार है फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी बहन रजनी के लिए. वी हैव सरोज फ्रॉम फ्रांस, वीर सिंह, अरविंद और साथ में ये गाना जाएगा बिसोनी फैमिली के लिए ऑफ दागोचिए. और खान हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं. विनय गंगाराम थैंक यू सो मच. पामेला रामास्वामी नमस्कार. एंड एस पी थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. चलिए जी मीला रामा आपका भी वेलकम है. अरहाना हमारे साथ हमारे गाने इंजॉय कर रही हैं और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करते हैं आप के लिए. जी हाँ यहाँ पर नीमा जीवासन पिरोमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं.
1: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर
1: जी हाँ दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन पर, और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपका हम सफर वेदिता। आज का दिन बॉलीवुड के ऐसे आर्टिस्ट का जन्मदिन है जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अदाओं से, जबरदस्त एक्टिंग से हर जनरेशन के दिलों पर राज किया। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द एवरग्रीन एक्ट्रेस, द टैलेंटेड डिंपल कपाड़िया की, जिनका आज बर्थडे है। 16 साल की उम्र में उन्होंने बॉबी फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। इतना धमाकेदार था, फिर रुकना नहीं था, बस आगे ही बढ़ना था। एक टाइम आया जब उन्होंने शादी कर ली, जब वो अपनी सक्सेस के पीक पर थी, और राजेश खन्ना के साथ उन्होंने शादी की है। फिर उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, बाद में वो सागर फिल्म के साथ वापस आई और उनका सफ़र बहुत ही ग्लैमरस रहा है। उन्होंने सागर, रुदाली, क्रांतिवीर, दिल चाहते हैं और कई यादगार फिल्मों में काम किया। आज उनका बर्थडे है तो उनको हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ हमारे जाने का भी टाइम हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।

चलिए तो हम आपसे बस कहेंगे बाय बाय, आपसे अब हम वेडनेसडे को मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अनिल जी एक बार फिर आपको बॉन वोयाज। मणिप्रिया थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं वेडनेसडे को यहीं पे आपके सुहाना सफर प्रोग्राम इन रेडियो मनोरंजन।

स्वागत करते हैं। अभी ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून तैयार किया जा रहा है और मॉरिशनों को महासागर के टिकाऊ संचालन के हक में अतिरिक्त रूप से समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करने के वास्ते उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बात का ऐलान ब्लू इकोनॉमी मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेन ने किया। वे आज मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट की ओर से लेस्टिटी फ्रांसिस डी मॉरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस से संबंधित गतिविधियों में भाग ले रहे थे। बेथॉन लार्जेस के खिलाफ औपचारिक रूप से नए आरोप लगाए गए हैं। असल में इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एजेंसी के इस निदेशक को सैलवी थर्मल स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 2020 में डेनमार्क की कंपनी बीएमएससी में एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व आयका के महानिदेशक की ओर से इंटरमीडिएट अदालत के सामने दर्ज मामले को रद्द कर दिया गया है और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस डीपीपी के सुझावों के अंतर्गत एक नया मामला दर्ज किया जाएगा। चेतन बाबूलाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो वे विपक्ष नेता का पद संभालने के लिए तैयार है। चेतन बाबूलाल ने इस बात पर विश्वास जताया कि वे जिम्मेदारी अलग तरीके से संभाल सकते हैं क्योंकि वे पुरानी सरकार का हिस्सा नहीं थे, जिस तरह की वर्तमान समय में जोले जोगो है।

0: आज सुबह वे RMN में कार्यक्रम में भाग ले रहे थे. वे फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के सदस्य हैं और उन्होंने बताया कि अगर वे विपक्ष नेता बने तो प्रधानमंत्री को उनके प्रश्नों का जवाब स्पष्टीकरण देना ही होगा. यही सही बदलाव होगा. विदेशी समाचारों में फिलीपींस में 7.8 अंकों वाला एक जबरदस्त भूकंप आया जिसमें मरने वालों की संख्या कम से कम 19 तक पहुंच गई है. घायलों की तादाद 129 तक बताई जाती है. फिलीपींस के प्रमुख दक्षिणी टापू मिंडानाओ में जनरल सांटोस सिटी के तट के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए. इलाके कई देशों फिलीपींस के साथ साथ इंडोनेशिया जापान ने भी सुनामी की चेतावनियां जारी की. उधर फिलीपींस के राष्ट्रपति फेडिना मार्कोस जूनियर ने सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं ताकि तुरंत कदम उठाए जाए और लोगों से ऊंचे इलाकों में भी जाने की मांग की गई है. रुख करते हैं चीन. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे. चीनी समाचार एजेंसी जिंगवा के अनुसार वे वहां उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इस बैठक के दौरान दोनों नेता दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती की पुष्टि करेंगे और साथ में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे. और इसराइल ने आज कहा कि उसने ईरान के दक्षिण पश्चिम में एक पेट्रोकेमिकल केंद्र पर हमला किया. साथ ही अन्य सैनिक ठिकानों पर भी निशाना बनाया गया है. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी रिपोर्ट दी कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से कह दिया कि वे अतिरिक्त रूप से हमला न करें. संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए. आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद. कुछ ही समय में शोक समाचार. Maisonnette Road, Rivière des Anguilles, 47 साल के 47 years old के श्री सुदेशन वेंकटेशु. श्री सुदेशन वेंकटेशु जो ब्ले नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे अभी से ही उनके पिता श्री देवा सागाबेन के घर मेजोनेट रोड रिवियर डी सोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रोमेशनल टुडे एट 2 PM. टालीपोलिन अमोरी में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दीपा गोकुल लालमोन पैदाशी नाम गोकुल जो दीपा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके पिता श्री प्रेम गोकुल के घर टालीपोलिन अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव पावेला पहुंचे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रोमेशन टुडे एट 3 PM. साडाली रोड वाकुआ में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के बीबी साहेनुरिसा कोडाबकस बीबी साहेरुनिसा कोडाबकस पैदाश नाम जुमन जो मीना नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके घर साडाली रोड वाकुआ से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए साडाली मस्जिद ले जाया जाएगा, जिसके बाद दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान. फ्यूनरल टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है.
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the
1: news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: संस्कृति की बातें.
4: नमस्कार. संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. संस्कृति की बातें इस कार्यक्रम का आयोजन होता है MBC और आप्रवासीघाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से. और आज हमने बात कर अब जा संस्कृति की बातें के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे हमने के देश में जो हमने के भोजपुरी गायक हवंजा भोजपुरी कलाकार हवंजा उन लोग के गीत में उन लोग के संगीत में संस्कृति हर एगो क्षण में झलकेला. कोनो भी गीत लेला दिखबता ओकर में संस्कृति के एगो ना एगो शब्द जरूर रहेला. और इस विषय पर बात करे खातिर आज हमने संगे देश के जानल मानल कलाकार हवन किशोर खिमिया जी. किशोर जी नमस्ते.
5: किरण जी नमस्ते. और जितना लोग हमने के देखत हवन जा सुनत हवन जा आप लोगन के भी प्यार भरा नमस्कार.
4: आपके बहुत बहुत स्वागत भाई कार्यक्रम में। जैसे जाने ला हमने के एगो कार्यक्रम अब चले ला संस्कृति की बातें, और ये कार्यक्रम में हमने देखी ला जा कैसे हमने के देश में आज संस्कृति के बात करे के बहुत ज़रूरी बा। कम से कम एगो सप्ताह में एक घंटा बैठ के चाहिए हमने के ई बात पर विचार विमर्श करे के, कहे कि हमने एगो ग्लोबलाइज दुनिया में जियत है जहाँ पर विश्वीकरण के इतना प्रभाव पड़ता कि

0: आध्यात्मिकता रहे, हर एगो जोन दिशा बा, हर एगो जोन क्षेत्र बा, कैसे सकब जा हमने संस्कृति पर जस्ती ध्यान देवे और कैसे सकब जा बोले कि ई दिशा में काम हुआ था, इस सब विषय पर बातचीत हमने करी ला जा। और आज हमने के सौभाग्य बा कि आप हमने के ई कार्यक्रम में शामिल हुआ था वा। और आपके ऐसा ढेर गीत चलते रहेला भोजपुरी तड़का में, हर रोज चलेला, हर रात चलेला, और जब कोनो खास मौका आवेला जैसे 2 नवंबर में एगो गीत चलेला आपके जो उनकी हमने के पूर्वज से जुड़ल बा। अब उधर हमने के स्वतंत्रता दिवस के बात करबा तो हुआ पर भी आपके कोनो गीत बा, और ऐसा ऐसा ढेर कलाकार हवन जा आपके जैसन जे लोग संस्कृति से जुड़ के अपन गीत लिखेलन जा और वो गीत बहुत मशहूर होवेला। तो आज आप अपन अनुभव बाटा, आप कैसे हमने के देश में संस्कृति के जिंदा रखत हवा अपन भोजपुरी गीत के जरिए।
1: अच्छा, सर्वप्रथम हम बोलब बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमके मौका मिलल, ये सौभाग्य कि आज अली जा और संस्कृति पर बात करते हैं जा। किरण जी, जब हम आवत हैं MBC पहला चीज सोचत हैं कि संस्कृति का है
0: जी,
1: यही हमने के पहचान है
0: जरूर
1: है। हम जब सोचत हैं तो उकर में एस बा, ए बा, एन बा, एस बा, तो उकर मतलब एकर में जुड़ल बा और छुपल भी बा
0: जी।
1: मानना सर्वप्रथम बोलब कैसे हमने के जो संस्कृति बा शुरुआत से संस्कार,
0: हाँ जी,
1: तो कौन हमने के परवरिश जैसे होल, कौन भाषा के इस्तेमाल करते हैं जा, तो वो हमने के पहचान है, कैसन बोल विचार, कैसे हमने कौन शब्द इस्तेमाल करे थे जा अपन गीत में
0: जी,
1: अच्छा शब्द रही, अच्छा बोल चाल रही, अच्छा संगीत रही, तो वो एगो पहचान है
0: जरूर।
1: तो ये हमारे पहला चीज है, हमने के पहचान है इसके संस्कृति और कैसे हमने अपन भाषा लेके आगे बढ़ाओ थी सब
0: जरूर। हाँ, और आपके जो अलग अलग गीत बा अभी हम उदाहरण देवत रही, तो कैसे आपके प्रेरणा मिलल, इंस्पिरेशन आपके कैसे मिलल अपन जो गीत बा वो अलग अलग विषय पर, संस्कृति के विषय पर या फिर इतिहास से भी जुड़ के, या फिर आपके जो हल्का फुल्का गीत भी बा वो मैं भी कहूँ ना कहूँ एगो ऐसा बोली सुनाई देवेला, ऐसा शब्द मिलेला जो संस्कृति से जुड़ल बा, इंस्पिरेशन आपके कैसे मिलल।
1: देखा एगो चीज बोल, हम बोलब ई आवेला कैसे हमने के जो गीत सुनने जा बहुत पहले वो लोग कैसे गैलन जा, तब हमने इंस्पिर होली सा, अब हमने के जो छोटा सा सीख मिलेला हो, सीख लेके अपन जन चीज सीख ले जा, अपन शब्द डाल के, अपन जो संगीत बा ओकर में डाल के आगे बढ़ ला जा। और दूसरा चीज जैसे बोला था, जब देख ले जा सर्वप्रथम संस्कार, ओकर बाद मिलल आदर,
0: एस ए,
1: तो कैसे जब कोनो गीत दिखत है तो बोलब दूसर कोई के सकब सा आदर करे
0: जरूर।
1: तो कोनो गीत में से बोले हैं और कोनो गीत में जैसे बोला नौजवान लोग बा, उन लोग के कैसे आगे बढ़ाब जा, तो वो गीत में बा ई मशाल लेके आगे बढ़ाब जा, तो मशाल हमने के धरोहर
0: जरूर,
1: तो हमने के जो धरोहर बा, हमने के शब्द बा जैसे बातचीत करी ला जा, तो ये हमने के धरोहर, हमने के मशाल है
0: जरूर,
1: तो एक लेके आगे बढ़ाब जा। तो ऐसा ऐसा शब्द बा, एकता में भी गीत लिख रहे हैं, तो वो एकता भी हमने के संस्कृति के साथ जुटल बा, ताकत हमने के, तो वो कैसे इस्तेमाल कर ली, तो एकता पर एगो गीत कर ली। ऐसे बहुत गीत बा जो लिमन से सुनबा तो कर में संस्कृति छुपल बा, ये सही बात बोला।
0: हाँ, और अभी जब हमने संस्कृति आदर के बात बोला था, संस्कार के बात बोला था, ऐसा ढेर गीत बा खाली भोजपुरी ही नहीं,
1: हाँ?
0: अलग अलग भाषा में जो आप सुने नहीं सकबा, एगो सभा में नहीं सकबा सुने, गाड़ी में आपके कोनो गुरुजन कोनो बड़जना रही तो थोड़ा परिहाली से उन हटावे के, तो आपके गीत कोनो ऐसा नहीं बा जो नहीं सकबा, एगो चाहे जन्मदिन के माहौल रही, बड़ा छोटा सब कोई जुटल बा, तो कोई नहीं तोहरा बोली कि ई गीतवा हटा द बेटा, कहे कि ई गीतवा में थोड़ा अपशब्द लिखल बा, तोहर कोनो गीत में ऐसा बात के गुंजाइश नहीं बा।
1: हाय, हम बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा बोलब, जानेला जब हम एगो गीत लिखिला तो संस्कृति पर ध्यान रख के लिखिला, कहे कि जन्म के नहीं बोला परवरिश में जो बैठका में सीखले जा, हमने जन्म के गुरुजन से सीखले जा, जो हमने के बुजुर्ग से सीखले जा, तो वो हमने आज ऐसा शब्द जैसे बोला इस्तेमाल कर जा गीत में, दूसर कोई नहीं सकी सुने, तो हमने के लयका का सीखी
0: जरूर।
1: और जो शुरुआत जैसे बोली, ऐस हो गल संस्कार, ए हो गल आदर सम्मान, एन होइल हम के नौजवान जैसे बोल।

0: तो हमने के जो नौजवान बा छुपल बा कौन चेकर में कि उ लोगन के ऐसन शब्द का इस्तेमाल करके ताकि दूसर कोई सकी सुने
1: और जिनमें मिठास
0: बा, मिठास बा, सही बात बोला,
1: हंसी बा, हंसी बा, मजाक बा, लेकिन आदर भी बा,
0: आदर भी बा। सक भाई जैसे गीत में बोला था कि माने जमर जो जो हिट ऑफ द ईयर रहा, ये फिर से बोला सबको के बहुत बहुत धन्यवाद, ये तुलो के आशीर्वाद से, तुलो के वोट से, तुलो के सहयोग से ये गीत रहा जिस दिन आने। ओकर में भी जैसे बोला एगो एगो पार्टी चलत है, एगो सेलिब्रेशन बा, तो ओकर में जो हमार पहल का अंतरा बा, तो ओकर में चिंता के छोड़ के हंसले तो गाले, तब में से कब बोले कि चिंता के छोड़ के अब दुख में डूब जो, नहीं चलो हंसले गाले, तनी सुन आके मस्ती में हमने के संगे आव, एकर पीछे छुपल बा जिंदगी बाद दो दिन के
1: जी,
0: तो जुन अच्छा से जीबा मस्ती में जिया, मगर फिर भी एकर पीछे छुपला संस्कृति
1: जरूर जरूर। तो किशोर जी अभी हमने के जितना श्रोता लोग हवन जा, जे लोग अभी फेसबुक पर देखत हवन जा, ता आपके दर्शन तो होते ही बा, लेकिन जे रेडियो पर सुनत हवन जा, शायद लोग के विश्वास नहीं होत हुई कि किशोर की म्याई बखत हमने संगे हवन। तो एगो टुकड़ा अपन जन एगो मनपसंद गीत बा संस्कृति से जुड़ल हमने के सुनावा, और एकर बाद आपके एगो गीत हमने सुनब जा रेडियो पर।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। देखा इसे बहुत गीत बा जैसे संस्कृति के साथ जुड़ल बा, जैसे हम बोला था एगो गीत बा जो हमेशा हमारे दिल के करीब है, संस्कृति में जुड़ल बा, जैसे शुरुआत में बोला हमने के इतिहास
1: जरूर,
0: अब इतिहास के साथ छुपल बा हमने के बाप दादा हमने के पुरखन कैसे जा अलन जा
1: जरूर।
0: तो एगो गीत जो हमारे दिल के करीब है, और एक गीत में हम सच्चाई के साथ बोला था, जब रिकॉर्डिंग होता है तो बहुत ऐसा शब्द डाल रहा हमारे कितना ऐसा प्रोग्राम बा जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हाउ जोन समय रिकॉर्डिंग होता शब्द ऑटोमेटिकली बदला था, और जैसे हमने संगे रहल अविनाश भाई हमर संगे, तो आई गीत हम हमेशा जब गायला थे कभी बुझाला कि कुछ बाय कर में
1: जरूर,
0: तो वो गीत एक टुकड़ा सुना दिला, वो 2 नवंबर पर है, 2 नवंबर हमने के पुरखन लोग हमने के बाप दादा रंजा, तो चले एक दो लाइन
1: जरूर।

बहुत बहुत बढ़िया। 2 नवंबर पर अपन पुरखन पर किशोर जी बहुत सुंदर गीत लिखले हवन और बोलत हवन कैसे ये गीत गाते समय उनकर मन के इच्छुगल रहल और आँख से 2 गो आंसू भी छलक गल रहल। तो सुनी जा किशोर खिमिया के एगो गीत। ये ब्रेक के बाद हमने के मुलाकात फिर से हुई। फिलहाल एगो छोटा सा विराम।

0: संस्कृति की बातें
1: कार्यक्रम में आप सब कोई के एक बार फिर किरण के करजोर नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत। जैसे हम शुरू में बोली, ये कार्यक्रम के प्रसारण होवेला मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिला जुला सहयोग से ई बखत ई प्रोग्राम के आप सुनत हवा रेडियो मनोरंजन पर। और साथ में हमने के फेसबुक पेज पर भी ई लाइव प्रसारित हुआ था और दो तीन दिन बाद ई प्रोग्राम के प्रसारण MBC टीवी के तीसरा चैनल पर भी हुई। और हमने बात कर रहे थे जा कैसे हमने के जो मॉरिशन कलाकार हवन जा भोजपुरी के क्षेत्र में, खासकर कैसे अपन गीत अपन संगीत के माध्यम से आप लोग संस्कृति के बढ़ावा देवत हुआ जा। और हमने संगे हवन किशोर किमिया जी, जे आपके जानल मानल कलाकार हवन और अलग अलग विषय पर आप निकले हवा। अभी ये गीत सुन के सच में एगो दूसर दुनिया में चल गए लीजा, जब पूर्वज लोग के याद करबा, जहाँ पर सभ्यता के बात हुआ था, संस्कृति प्रगति संस्कार ये सब जन शब्द बा, ये खाली शब्द ही नहीं है, हर एगो शब्द में एगो पूरा भाव छुपल बा और ये सब ये गीत में बा। तो ऐसन आपके जन अलग अलग गीत बा, ढेर कोई जब कोनो गीत सुने लन जा तो शायद वो बखत नहीं ख्याल आवेला कि ये गीत के कर गावल है, लेकिन आपके जो गीत बाद एक से बढ़कर एक गीत संस्कृति पर ही आधारित बा। तो थोड़ा अपन अलग अलग जो गीत बा आप लिखले हवा, कौन कौन विषय पर लिखले हवा और कैसे आपके ध्यान में आल कि चला ई विषय पर आज लिखी जा। और जन्मदिन भी बा, जलसा के रात भी बा, जलसा के रात जो ने को झूमर से प्रेरित होके लिखले हवा, आज भी जब यह गीत हम सुनी ला, हाँ जलसा लाल बा, कोई शकेला ढेर कोई नहीं जानत हो नौजवान लोग कि इतना एगो पुराना एगो झूमर है,
2: झूमर है
1: जी हाँ। तो थोड़ा अपन गीत के बारे में बोलब, अलग अलग विषय
2: फिर से बोलब सबको कि नमस्ते और धन्यवाद कि आज सकते हैं थोड़ा सी बातचीत करे हमेशा गीत संगीत पर। तो कैसे गीत संगीत संस्कृति के साथ जुड़ल बा? देखा किरण जी, हम छोटा सा गीत गाइला सुनले हई पिताजी, जैसे आगे सुनत सुनानवेन जी, पोखन जी, ऐसे बूथ कलाकार मामू रहल विनोद शिवदत्त जी, ऐसे बूथ कलाकार के गीत सुनले हई। मगर गीत सुनत सुनत हमके विचार आल कि चाहना संगीत सीखे के गायला, जब बूथ कलाकार बा सब कोई के मान सम्मान दिला, रिस्पेक्ट नहीं बोला से ई छोटा कलाकारी बड़ा बड़ा कर सब कोई के, जैसे बोला से नो वन इज परफेक्ट, मगर अपन जो न सीख बा अपन कैपेसिटी से अपन स्किल से बनाए ला जा। तो हमके जब सीखे के मौका मिलल तो हम महात्मा गांधी संस्थान गई हौजा पर क्लासिकल जो हमने के संगीत बा हम सीखली हौजा पर हमने के मौजूद रहा भोजपुरी के। तो जब हौ मौजूद रहा तो गुरु जी अरविंद विशेषर जी एगो पुस्तक बनेलक ओका में हमने के भोजपुरी कविता रहा। देखब कहाँ से वो कविता के लेके कैसे के गीत में डालब, कैसे संस्कृति आगे आई, वो रहल कैसे हमने आगे बढ़ब जा। तो हम ओकर में एगो कविता लिख ली
1: जरूर,
2: वो रहल आगे ही आगे, और दूसर कविता रहल आगे बढ़ते चलो। तो हम बोली तो कौन मिसाज रही, कैसे नौजवान लोग के बोलब कि दुख आई सुख आई तो चल आगे बढ़ते रह सब, कैसे हमने के पिता जम के पुरखन बाप दादा बहुत मेहनत कर ले उनसे
1: कुछ नहीं तो, कल उलो के रोके
2: जरूर
1: आगे बढ़े में,
2: आगे बढ़े में। तब हम जब पिताजी देखा जब जाता काम करे तो अपन बहुत अपन सब सामान सब ले के फजिर के जाता, पानी आवता घाम आवता वो मेहनत करता है, सबसे हम प्रेरित हो ली, ये हमने के इंस्पिरेशन हुआ। तो ये सब लेके जब हम गीत बनेली तो हौ एगो एगो कविता रहल, एगो छोटा सा टुकड़ा ओका में रहल कि चाहे आंधी आए आए चाहे तूफान, घामा जोर चाहे पानी मूसलाधार, मेहनत से काम कर हिम्मत कबो ने हार, आगे ही बढ़ते चलो। तो कैसे आगे बढ़ लीजा, मेहनत आई तूफान आई परिश्रम कर मेहनत कर आगे बढ़ते चलो
1: जरूर।
2: तो ये गो उदाहरण के तौर पे रहल, ऐसे बहुत ऐसे गीत बा जैसे हंगामा भी बा, जैसे गीत बने ले ली जमाल कुडू, ओकरो में भी सुनबा तो एकता के बारे में बात कर लें, ऐसे बहुत गाना बा कुछ ना कुछ एगो सीख बा या संस्कृति पर
1: और देश पर भी लिखले हवा।
2: हाँ,
1: स्वतंत्रता पर आपके दो तीन गीत बा
2: हमर पहलका जोन एल्बम रहल
1: जी
2: उ रहल मॉरिशस हमनी के शान। सही बात बोला, ओकर में भाव गीत बा और हमनी के पैट्रियोटिक सॉन्ग भी बा, यानी कि हमके देश पर आधारित गाना भी बा। हाँ, देशभक्ति गीत।
1: तो देशभक्ति की भावना आप में कैसे आ
2: जानेला? ऐसे नहीं कि जब हम अध्यापक होली तब लड़का लोग के चांस सिखाए के, जैसे बोला जाए इनकल्केट द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म खाली हाई हमें काम नहीं रहा,
1: जरूर
2: ये अपन में आवेला। एक से पहले हम पुलिस फोर्स में रही।
1: हाँ, तो थोड़ा अपन परिचय के बारे में अभी बोलिए,
2: जरूर
1: जानने चाहब जा।
2: तो जब पुलिस फोर्स में हुआ तो जरूर ई हा हमनी के रक्षा करेंगे, देश के रक्षा जहाँ पर भी रहा जरूर, तो देश के रक्षा कर बे चाहेला अपन एगो देश भक्त बनेंगे तब सब रक्षा करे।
1: देश खातिर अपन मन में आपके चाहे प्यार रहे,
2: प्यार रहे के,
1: स्नेह रहे के,
2: स्नेह रहे के
1: जी,
2: तब सब देश भक्त बने, तब सब गीत लिखे। ऐसे नहीं कि देशभक्त नहीं बने तो गीत नहीं लिखबा, मगर तोहर सोच, तोहर विचार, तोहर जो महसूस करो तो भीतर में उस सब अपन संगीत में आने।
1: तो जैसे देखत है जा किशोर किमिया जी बोलत हवन कि एगो शिक्षक हवन, शिक्षक के हैसियत से जब अपन छात्र लोग के सिखावत हवन, चाहे वो गीत संगीत रही, फिर भी चाहे वो लोग में जैसे बोला वैल्यूज चाहे इनकल्केट करेंगे, चाहे वो लोग में संस्कार और संस्कृति के बात निहित करेंगे। और फिर बोलत हवन कि जब देशभक्ति के बारे में लिखला तो आप पुलिस फोर्स में रहा एगो समय में, वहाँ से प्रेरणा लेके आप लिखे के जब शुरू करला तो देश के ही बारे में लिखा। और फिर इधर एगो बात बोला जन हमके एगो दूसर परिप्रेक्ष्य से हम एक जरूरत है, अभी बोला कि आप जब संगीत सीखला महात्मा गांधी संस्थान में तो हाँ। वहाँ कविता भी के अध्ययन करला,
2: हाँ।
1: लिखे पढ़े के, और ये शायद यही वजह है कि जैसे तू अला तो संस्कृति इस शब्द के लेके जो एक रोमन लेटर्स बा एकर पर आप एक एक शब्द लिखे के शुरू करला, एस से संस्कार, आ से आदर,
2: हाँ।
1: एन से नौजवान, और फिर
2: तब ओकर बाद चाल चलाल संगीत
1: जी
2: जानला, जैसे बताए ओकर संगीत जुड़ल बाई सब शब्द, संस्कृति के साथ जुड़ल बाई शब्द
1: जी।
2: मगर पीछे कौन चीज छुपल बा
1: जी? हाँ।
2: जैसे बोली नौजवान, तो नौजवान के कैसे प्रेरित करब जा, कौन चीज सिखाब जा उन लोगन के। अब ओकर बाद जैसे बोला अब संगीत बहुत शब्द आई सकेला हमनी के,
1: तो आप इस क्षेत्र से जुड़ल हवा तो आपके इस सब शब्द
2: एस जो अर्थ संगीत सकेला जितना को हमके सुनत हो जा या भोजपुरी क्षेत्र में हो जा, संगीत के क्षेत्र में हो जा, तोरा एस सकबा सुर बोले के, जैसे सुर ताल है संगीत के साथ, तो हमके लोकल संगीत एगो धरोहर है हमनी के संस्कृति के जीवित रखे।
1: जरूर,
2: तो जैसे बोला था एकर संगीत जुड़ल बा संगीत, अब छुपल बा कौन चीज एकर पीछे, भाषा। जैसे शुरुआत में बोला कौन भाषा इस्तेमाल कैला जा हमनी के गीत में, गायन में, तब सकब भोजपुरी में अच्छा शब्द दे रही, अच्छा गीत दिखब सा जे सुना था वो बोली हाँ अच्छा शब्द है बा। तो एक पर ई मैसेज नहीं है, संदेश नहीं है, मैं नौजवानों के जन बोलब कि संगीत जो चीज़ करब जा ई हमनी के एगो एगो एगो एगो प्रार्थना एगो प्रेयर है, ओकर में हंगामा बा, ओकर में भक्ति गीत बा, ओकर में भजन बा, कीर्तन बा, मगर शब्द छा अच्छा इस्तेमाल करेंगे। तो संगीत एगो माध्यम है, एगो महत्वपूर्ण माध्यम है कि सकब हमनी के संस्कृति के जीवित रखे। जैसे संगीत के साथ जुड़ल बा हमनी के लोकगीत, हमनी के झूमर बा, गीत गवाई, यही सब गीत गमट सब संस्कृति के साथ जुड़ल बा।
1: और अभी हम बोलते रही अपन परिचय के बारे में थोड़ा बोला।
2: अच्छा।
1: सबको आपके एगो भोजपुरी सिंगर, एगो भोजपुरी कलाकार के रूप में जाने लग जा। अच्छा। लेकिन आपके भी एगो प्रोफेशन बा जो बोला था वो आप

0: इस फोर्स से शुरू कर ला।
1: अच्छा,
0: तो थोड़ा अपन बारे में बोला।
1: देखा सका बोले हम शुरुआत बहुत काम कर रहे हैं जिंदगी में।
0: अच्छा,
1: मतलब यह है कि मेहनत कर रहे हैं
0: जरूर।
1: हाँ, ये मेहनत में सर्वप्रथम हमारे माता जी पिताजी, हमने के गुरुजन जो बाप दादा बुजुर्ग और जितना कोई हमने के मित्र बा परिवारगन बा उ सबसे सीख रहे हैं। मतलब यह है कि जो अच्छा चीज बोलन जा पहर बेटा आगे बढ़ बा, ये हमने के धरोहर और वेपन एजुकेशन। हाँ, तो ये नहीं रहत तो आज ही जा नहीं पहुँचती। शास्त्रीय संगीत सीखे खातिर भी चाहे लाइगो टू ए लेवल सिकेला धीर कोई सोचा तो म्यूजिक के क्षेत्र में बा अच्छा ठीक कैसे पहुँच बा जा पर परी पढ़े के एगो फॉर्म फाइव चला रही के एडवांस चला रही के एगो एच एस सी चला रही के तब सब डिप्लोमा करे डिग्री करे एक बाद ऐसे आगे बढ़ब। तो हम जब एच एस सी कर दिली ओकर बाद नौकरी मिलल इंडस्ट्री रहल गुडलैंड्स में दलास इंडस्ट्री हौजा पर हमारी फॉर्म फाइव एच एस सी के बाद हौजा पर नौकरी के लिए। तब हौजा पर एस एस एस में इसका धीर को नहीं जानो थोई शर्मा जगदम्बे में हौजा पर संगीत के शास्त्रीय संगीत हौजा पर चलत कक्षा चलत रहा
0: सर्टिफिकेट।
1: हाँ जरूर, तो उनगर के जो डिवीजन सेंटर्स रहल तो उ एगो सेंटर हौजा हौजा पर रहल। तो हौजा पर हमर गुरुजी के नाम रहल गुरुजी छट्टू जी ओकर से हम सीखली शास्त्रीय संगीत। हम पहला गुरु शास्त्रीय संगीत के ऊ रहल और उनकरा लोकल कि हम सकब इस क्षेत्र में आगे बढ़े हमके बहुत ओंकवाजे करलक काम करते लिए हौजा। मगर बाद में काम के बाद हौजा पर हम अपन सर्टिफिकेट कोर्स कर ली। जब तीन बरिस हौजा काम कर ली लगभग तो हमार सर्टिफिकेट फ्री हौजा माने तीन साल कर देबा तब एगो सर्टिफिकेट मिला
0: जी।
1: तब हौजा पर शास्त्रीय संगीत के हमार सर्टिफिकेट मिलल ओकर बाद अब परी नौकरी करे के तब ओकर बाद हम पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली खुशी से कि चला हमार देश के रक्षा करब। तब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बोबासे रही हौजो पर ट्रेनिंग हासिल कर ली ओकर बाद संगीत के इतना रुचि रहल हम बोली पुलिस बैंड ज्वाइन कर ली ना पुलिस बैंड ज्वाइन कर ली ओकर बाद हौजो पर भी हमके ट्रेनिंग मिलल संगीत के क्षेत्र में वेस्टर्न म्यूजिक पर वो हौजा गुल इन्वेस्टी है ढेर को नहीं जानो थोई पुलिस बैंड वो एगो इन्वेस्टी है एगो अपन आप में कहे कि जितना हमने खेली ला जाए इंस्ट्रूमेंट विन इंस्ट्रूमेंट खास हौजा सीखे के मिली
0: जी।
1: और ये वेस्टर्न म्यूजिक कैसे न्यूट्रिशन पहरब मगर एक से पहले एगो कोर्स चला लेगी ट्रेबल क्लेफ बेस क्लेफ कैसे लिखी ला जा ओकर मीनिंग का है तो है सब के बाद वेस्टर्न म्यूजिक पर हमके तनी नोशन मिलल ओकर बाद एस एम एफ ज्वाइन कर ली बहुत डिविजन में काम कर ली पुलिस के और साथ साथ हमारे डिप्लोमा भी कर ली डिप्लोमा कर ली एम जी आई जो करीब रहल वोकल म्यूजिक ओकर बाद शास्त्रीय संगीत आगे बढ़ल डिग्री कर ली पी जी सी कर ली पी जी सी से पहले तब हमके नौकरी मिलल स्टेट सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक के तौर पे एजुकेटर म्यूजिक एजुकेटर। तब भौजो पर हम अपन काम हमके लोकेला हम सकब अपन एक्सपीरियंस बांटे लेका लोग संगे जो सीखले हैं और अभी ले सीखते हैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया आपके जो ये जो जीवन सारिणी बा बहुत दिलचस्प बा कहाँ से आप शुरू करला कहाँ तक पहुँचला अपन सपना के जो उड़ान बा वो आप भरते रहला अपन सपना के पीछे आप कबो आगे बढ़े से नहीं चुकला
1: लक्ष्य रहल कैसे बोई ला जा। हाँ, तो एक पर जैसे नौजवान लोग बोली ला जा कि थोड़ा जिंदगी में चाहे लक्ष्य रहेगी
0: जरूर
1: फोकस ऑन योर एम तो ये फोकस करब तोहर एम रही तो मेहनत करब परिश्रम कम करब जहाँ ले सकी मेहनत नहीं करब तब बोलब लोथरी नहीं के लिए तो हमके नहीं मिलल जैसे कोई बोली ला तो मेहनत कर परिश्रम कर तब आगे फल मिली
0: जरूर।
1: हाँ
0: जरूर। और संस्कृति की जब बात करते जा तो देखते है जा कि कैसे आप एगो प्रोफेशन से निकल के दूसर में जाके फिर तीसरा में जाके फिर भी अपन संस्कृति

अपन भाषा के आप हमेशा संगे लेके चल रहा, और ये एगो मिसाल है, एगो उदाहरण है कि आप कोनो भी क्षेत्र में रह के सगबा अपन भाषा सगबा अपन संस्कृति के आगे बढ़ावे और अपन योगदान अपन तरफ से देवे। ये जो चर्चा बा संस्कृति के बात बा एकर पर हमने के चर्चा अभी थोड़ा घरी बात जारी रही। फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक और किशोर खिमिया जी के एगो सुंदर गाना सुनी जा।

0: संस्कृति की बातें की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत बा। आज हमने संस्कृति के बात के जरूरत है सा भोजपुरी गीत, भोजपुरी संगीत और भोजपुरी भाषा के साथ, और ये विषय पर आज हमने के बात करे खातिर मेहमान हवन श्री किशोर खिमिया जी। किशोर जी, अभी हम ये बोलत रही जा कि कैसे हमने के जोन गीत बा, आपके जोन गीत बा, ओकर में संस्कृति के जो अलग अलग पहलू बा, संस्कृति बहुत बड़ा बा, बहुत विशाल एगो बहुत विस्तार से एकर परिभाषा बा, लेकिन संस्कृति के अंतर्गत आवेला संस्कार, आदर, सभ्यता, प्रगति, ये सब कुछ एकर एकर अंतर्गत आवेला, और ये सब कुछ देखत है जाकि आप अपन गीत में भर के प्रस्तुत कर ले हवा, चाहे वो गीत भावुक गीत रही, चाहे वो जैसे अभी सुन ली जा जलसा लाल बा, चाहे वो ऐसा नहीं बहुत ही खुशनुमा माहौल खातिर गए हवा, लेकिन बहुत खुशी, बहुत उत्साह, बहुत आदर भाव पाए कर में, और देखत है जा कि जब ये सब कुछ रहेला एगो गीत में, तब बुझला वो गीत के जो शक्ति बा वो और बढ़ जाला
2: बढ़ जाला।
1: तो अब हमने के थोड़ा एकर बारे में अपन चर्चा थोड़ा जारी रखा।
2: फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बल्लभ किरण जी, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखा, जब ये गो गीत लिखेला जा तो विषय पर सोचिला जा,
1: जरूर।
2: तो जब विषय पर सोचा थी सब, तो शुरुआत में जैसे बोली शब्द के इस्तेमाल कैसे कर जा
1: जी,
2: तो हमने के चला जब हम लिखते हैं जैसे बोला हमने चिंता के छोड़ के या सब कुछ संगे हैं जा, तो एकता के बारे में सोचा था। तो पहला का जो चीज हम सोच ली तो चला मस्ती के रात बा, तो चिंता के छोड़ के आवा संगे मिल के हंगामा करी जा। अच्छा, हंगामा हो गल, ओकर बाद अब सोचे थे एकता। तो संस्कृति में एगो शब्द कैसे की बोले थे सब, तो हमने के ताकत, तो ताकत कैसे आई एकता से,
1: जरूर।
2: तो इस सोच कैसे एकता आनप इस गीत में, तो सब कोई के चला संगे आने की, तो सब कोई के जब संगे आनप जा तब एकता रही। तो एगो रूप एगो प्रकार से हमार गीत में इस सोच के हम लिखेला कि एकता कैसे आने पर अपन गीत में, कि वो भक्ति देशभक्ति गीत रही या गो गीत जो बनाव थे कहीं मस्ती भी भा, तो कमें कैसे एकता आना,
1: जरूर। कहे कि बोल जरा कोनो भी काम करवा,
2: हाँ,
1: जे वो काम आप लंबा समय तक ले जाए चाहत हवा, जे आप एगो क्षेत्र में एगो विषय के लेके दूर जाए चाहत हवा, तो सब कोई के संगे लेके
2: चले,
1: सब कोई के सहयोग चाहिए, अकेले में बड़ा काम
2: नहीं हुई,
1: देर लंबा समय तक नहीं होवेला। और बोल जरा जे हाली हाली चले के बाद, हाली से कहूँ पहुँच जाए के बाद, तो अकेले चला, लेकिन अकेले ढेर दूर नहीं सक जाए।
2: तो जैसे बोला ऐसा गीत बा, संगे संगे
1: चली जा,
2: संगे संगे चली जा, हाथों में हाथ मिलजुल के चली जा, ते एगो एगो प्रकार से एकता के बारे में बात करते हैं
1: जी।
2: तो ई विवाह हमनी के संस्कृति के साथ जुड़ल, ताकत है,
1: जरूर इस संस्कृति के साथ भी जुड़ल बा, लेकिन हमर जो काम है वो जस्ती यूनेस्को के गाइडलाइन संगे जुड़ल बा, और यूनेस्को के एगो मोचो है कि सबके संगे लेके चले के, ये सबसे ओकर बड़ा स्लोगन है, और ई बात के आप जाने अनजाने अपन अपन एगो विचारधारा

0: बना के अपन गीत लिखेला गावत हवा और प्रस्तुत करत हवा। अब हमें के ई बोला कि ढेर कोई बोलेला कि जो संस्कृति बा काहे पिछले छुटल जाता, काहे कि संस्कृति परंपरा जो रीति रिवाज आदर भाव के जो सीख को होरा बात बा, तो एकर से नौजवान लोग के ज़्यादा मतलब वो लोग के संबंध नहीं बनेला, वो लोग एकर से बोर हो जा रंजा, वो लोग के चाहे मुद्दे अनिते वो लोग के चाहे हाँ और जो घिसी पिटी बात बा ओके हरर को वो लोग के सामने रखबा तो वो लोग के नहीं पसीना आवेला। लेकिन संस्कृति तो एगो आधार है, अभी एकरे से शुरू कर लीजा और ये आधार नहीं छुटी। ये बात के ख्याल रख के जब आप अपन गीत लिखत हवा तो जनता के जो रेस्पॉन्स बा वो कैसन रहेला, आज जो नौजवान लोग आपके गीत सुने लन जा वो लोग कितना सराहे लन जा आपके गीत।
1: देखा एक बारे में बहुत अच्छा चीज़ पर बात कर रहे थे जा नौजवान पर कैसे वो लोग के रेस्पॉन्स बा। देखा इन जनरल बोला था हमू नौजवानों के संगे बातचीत करी ला
0: और एगो शिक्षक हाँ। हवा नौजवान से आप जरूर उठना बैठना हाँ। होला
1: तो उन लोग संगे बातचीत करी ला जा उन लोग के जन जैसे अभी आजकल म्यूजिक फ्यूजन टाइप चला था
0: जी हाँ।
1: तो हम यो के ऐसे ऐसे कलाकार जो हम सक अब हमार विचार से जैसे एगो गीत हमार दोस्त अपन शिवा तपसी वो गीत जब लेबा तो अपन शिवा बाबा के पान फूल चढ़ाई पर तो अपन स्टिल में अपन स्टाइल में बने लग। हालांकि वो गीत हमने के परंपरा में रहल
0: जरूर
1: हाँ वो गीत बा
0: हमेशा
1: से है। तो नौजवान लोग वो अभी जन सुनलन जा हम भी जान रहे थे सर वो बहुत पहले वो रहल जैसे हमार गीत बा आज के गमट को हाँ, लाले लाल बहुत पुराना ये शब्द बहुत पुराना है। तो ये हम अपन अंदाज में ली यही प्रकार से जैसे दूसरा हमने के दोस्त हम जा सबको के रिस्पेक्ट देते हैं अपन अपन प्रकार से अपन फासों से आनत हो जा आगे तो देखते हैं कि नौजवान लोग खुशी हो तुम जा हाँ। मान जमनी के महाशिवरात्रि के त्यौहार होल
0: ये सबसे हिट गीत
1: हाँ तो हिट गाना रहल और ये बहुत कोई खुशी होल
0: जरूर
1: हाँ। तो कौन चीज होल जो हमने के ट्रेडिशन जो संगीत रहल ओकर में साज रहल ओकर में तबला बा ओकर हारमोनियम बा और ओकर साथ बा फ्यूजन म्यूजिक जैसे कि लागिता बास ओकर संगे बा कीबोर्ड है सब ले के तेनी मोडर्निजे करके जब अनन जा तो कितना नौजवान खुशी होली गीत। मैं फिर से बोला था ऐसा ऐसा बहुत खूबसूरत गीत सकब जा बनाई हमने के जोन कुले उतम चिकिरुल में बोला जा चारा रखे के और ओकर साथ जोड़े के नवा नवा जो साहस बा नवा नहीं बल्कि फ्यूजन बनाए के तब हमने के जो नौजवान बा वो भी खुश रहें ता कहे कि चाहे हम यो के संगीतकार होते हुए चाहे ला
0: समय के साथ रहे चले के
1: हाँ दिखे के कि नौजवान कौन सी खुशी होता और कैसन शब्द इस्तेमाल कर कहे पर हम ध्यान देला
0: जरूर। और अभी प्रोग्राम अभी अभी शुरू हो और प्रोग्राम के समाप्त हो सकब हम तोरा बोले 7 मिनट कमती बा
1: अच्छा
0: तो हम चाहते हैं कि ये जो 7 अंतिम मिनट बा
1: अच्छा
0: एकर में आप अपन भावी परियोजना के बारे में बोलबा कैसे ये अच्छा। परियोजना जो शुरू कर ले हवा हमर लिए तो हम ही इस क्षेत्र में जिलो हवन जा ये
1: हाँ।
0: परियोजना ही है
1: हाँ।
0: कि भोजपुरी में गीत संगीत लिखे के जब जैसे जैसे आप अपन आपके नाम स्थापित हुआ था वैसे वैसे आप इस क्षेत्र में एगो योगदान देवत हवा। देखा अभी वसंत सुपोल नहीं हवन
1: हाँ।
0: सोना नुयान नहीं हवन
1: हाँ।
0: बड़ा बड़ा कलाकार ज्ञान मही पतलाल नहीं हवन लेकिन उन लोग के गीत आज भी सुनबा
1: हाँ।
0: तो एगो जो पुराना जमाना बा ओकर शब्दावली आपके सुने के मिलेला उ जमाना के जो परिप्रेक्ष्य जो कॉन्टेक्स्ट रहल वो आँखों के सामने चलावेला तो ये सब जो देखब तो एगो योगदान देवत हवा आप समाज के देश के और इस संगीत दुनिया के। तो आपके इस क्षेत्र में जो भावी परियोजना बा ओकर बारे में थोड़ा बोला ताकि जब आप यहाँ से इस दुनिया से जब जाइबा तो आपके भी ये सब योगदान सबको याद करी।
1: ये बहुत अच्छा बात बोला किरण जी जैसे आप भी जो प्रोग्राम करत हुआ तो एकर में भी थोड़े को योगदान हम के संस्कृति के प्रति भोजपुरी रही हिंदी रही सब हमने के संस्कृति के साथ जुड़ल बा। अब हम यो ऐसा काम करी ला जा कि काहे जो सीखले हैं जा जो चीज कर ले हैं जा ये मशाल दूसर के हाथ में छोड़ के जाप जा एक दिन तो हमने अपन खातिर बनाब जा खाली गीत अपन खातिर नहीं बनाए ला जा

0: सर कोई खातिर जो सर कोई सुनता और कैसे नौजवान लोग के लेके आगे बढ़ जा। तो हमने अभी जो अभी जो प्रोजेक्ट बा एक पर काम करे थे जा आयोजन बा हमने एगो भोजपुरी बड़ा भोजपुरी कॉन्सर्ट तैयार करे थे जा।
1: अच्छा
0: एक में जो बोला योजना एक में हम अकेले ने हई एक बारे में बात करब तो ये पर एगो पूरा प्रोग्राम ले कहे कि आज से नहीं शुरू कर ली सा बहुत मीटिंग होल कैसे से कब जा करे ओकर में शुरुआत में कलाकार लोग से मिले से पहले हमने जो हित मित जो संगे रही जा जैसे कि हम ये बातचीत जब शुरू कर ली जा प्रोजेक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में तो कुनल भाई रहल रोशन साधा सिंह रहल और साथ में रहल सूरज भाई उधर रहल निशाल यश अभिपूरण ऐसे ऐसे बहुत बहुत कलाकार बल्कि 8 जना रही जा ओकर बाद तब और ही कलाकार लोग के देख ली जा पीछे में और ही नौजवान भी बा क्या कि अकेले ने हुई कम हो तो एक बारे में हम बोला जितना हमने के भोजपुरी सुने हो ना जो लोग हो जा फांस हो जा भोजपुरी के भोजपुरी गीत बनावे ला जा आओ वे गो बोला जा फर्स्ट बल्कि एगो ऐसा कॉन्सर्ट रही जहाँ पर कितना कलाकार ही साथ में जैसे कि नीरज गुप्त मधुबा रंबा राम तोहल जवन कुनल रही और साथ में हवन कृषि मुनिक रोशन सादा सिंह और हमूर हब साथ में और हमने संगे अभी नृत्य करके डांसर्स भी रही एक बारे में योजना करे थी जाए यानी कि वो चलते बा
1: और ये कंसर्ट आप लोग करत कब हुआ था।
0: हाँ वो ले 26 सितंबर।
1: अच्छा सितंबर महीना
0: सितंबर महीना में है। हाँ और ये खान पान हो जाए ओकर बाद धमाका हुई जलसा लाल ही रही और गीत प्रोग्राम के नाम बा जलसा के रात बा।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जलसा के रात एगो गाना रहल कुनल के जलसा के रात बा हमरो में बात जलसा लाल बा और ई जलसा मिल के करब जलसा तो भोजपुरी शब्द है।
1: हाँ।
0: ने सकब समनी शब्द एवंती करे तो ई शब्द लेके कलाकार लोग के लेके बाद में अब योजना कौन सी बा हो जाए अब नौजवान लोग के लिए अवसर
1: जरूर कहे कि सबसे महत्वपूर्ण बात है जन कार्य करत हवा ओके जब आप जात हवा ये दुनिया से।
0: हाँ।
1: सब कोई के जाए के बा कोई यहाँ रहे नहीं आलबा
0: जरूर
1: तो आपके चाहिए तैयार करके जाए के गलेव
0: गलेव और ये कैसे हम यो प्रेरित होला से इंस्पायर हो लें जा कितना कलाकार के नाम ले ला
1: जी
0: तो वो लोग अपन काम कर लन जा हम यो अपन काम करी जा सहयोग देला जा तो लोग भी जब सुनत हो जा हमनी जितना परिवारगण हो जा मित्र हो जा दोस्त हो जा मित्र हो जा हम बोले चला जहाँ ले हो सकी सहयोग द
1: जरूर
0: कहे कि जब बोला जब हमने के संस्कृति एक पर बात हुआ था ये हमने के जड़ है हमने के संस्कृति हमने के जड़ का है जड़ नहीं रही तो हमने के पेड़ नहीं रही पौधा नहीं रही तो फल नहीं रही तो यही है हमने के जब जड़
1: जड़ी मजबूत रही
0: मजबूत
1: सब फलते फूलते
0: सब रही
1: जी हाँ।
0: वो कहे गो फल गिर गल जाए वो चल गल मैं जड़ है जा बा ये चलना रखेगी
1: जरूर।
0: हाँ।
1: और आपके विचार से हमने के भोजपुरी भाषा के आधार पर जो भोजपुरी गीत संगीत बा वो हमने के जड़ी से जुड़ल बा
0: एकदम सही बात बोला तो हम थोड़ी देर पहले ताकत पर बोली जा ताकत के बाद आखिरी संस्कृति में बा आई तो ये हम जब आवत हैं सोच ली कैसे बोली जुड़ल बा एकर संगे इंसानियत अब छुपल बा कौन चेकर पीछे इंसानियत के पीछे छुटल बा हमने के कैसे सकत है हमने के इज्जत बचाई
1: जरूर
0: तो ये संस्कृति हमने के इज्जत है हमने के धर्म के चाला रक्षा करेगी
1: जरूर
0: तो ये इंसानियत ये हमने के इज्जत ये हमने के लाज ये हमने के पहचान
1: बहुत बड़ा बात बोला यही शब्दों के साथ जैसे अभी किशोर जी बोलन हमने के संस्कृति हमने के इज्जत है।
0: हाँ,
1: हमने के पहचान है हमने के शक्ति है और ये संस्कृति के आप आगे बढ़ते चलिए देखा आज हमने के सामने किशोर किमिया जी अपन जीवन के जो सार बा प्रस्तुत करलन और संगीत से जुड़ल अपन अनुभव प्रस्तुत करलन कई

0: से उनकर लिए जीवन के हर एगो अनुभव उनकरा प्रेरित करलन लिखे के गावे के और उनकर हर एगो बात में संस्कृति संस्कार और सभ्यता के बात जुड़ल बा। सब बातचीत खातिर किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको किरण जी और MBC को भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितना लोग हमने के सुनत हों जा देखत हों जा आप लोगों के आशीर्वाद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी हाँ बहुत धन्यवाद। अगला संस्कृति की बातें कार्यक्रम तक हमके आज्ञा दा। नमस्ते
1: नमस्ते।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे रजनी जी नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। गंगा तालाब एक पवित्र स्थल है, आध्यात्म का प्रतीक। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग स्थल का दौरा करते हैं, लेकिन हाल में पेश आई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब इस प्रतीकात्मक स्थल पर दौरे के लिए संबंधित कदम उठाना चाहते हैं। इस तरह आज कला एवं संस्कृति मंत्री के नेतृत्व में स्थल का दौरा किया गया और उठाए जाने वाले कदमों पर बातचीत की गई। स्थलों के संरक्षण के लिए गाइडलाइंस दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अभी ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून तैयार किया जा रहा है और मॉरिशनों को महासागर की टिकाऊ संचालन के हक में अतिरिक्त रूप से समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करने के वास्ते उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बात की घोषणा ब्लू इकोनॉमी मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल ने की। वे आज मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट की ओर से लेस्टे फ्रांसे दे मॉरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस से संबंधित गतिविधियों में भाग ले रहे थे। बेथॉन लाजेस के खिलाफ औपचारिक रूप से नए आरोप लगाए गए हैं। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एजेंसी के इस निदेशक को सेल्वी थर्मल स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 2020 में डेनमार्क की एक कंपनी BMSC में एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व आईका के महानिदेशक की ओर से इंटरमीडिएट अदालत के सामने दर्ज मामले को रद्द कर दिया गया और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन DPP के सुझावों के अंतर्गत एक नया मामला दर्ज किया जाएगा। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं। फिलीपींस में आए भूकंप में मृतकों की संख्या कम से कम 32 तक पहुंच गई है। कई इमारतें ढह गई और सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। 200 से अधिक लोग घायल बताए जाते हैं। इसके अलावा भूकंप के बाद दक्षिणी फिलीपींस में सरांगानी प्रदेश में भूस्खलन भी हुआ और भूटान में कल रात 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके सिलीगुड़ी समेत उत्तर बंगाल और कोलकाता में महसूस किए गए। झटकों से लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि देर रात तक किसी जान माल के नुकसान की खबर

0: नहीं थी। और पैट्रिक ब्रियल नामक गायक एवं कलाकार को बलात्कार करने की कोशिश और यौन दुराचार के एक मामले के सिलसिले में आज पुलिस हिरासत में रखा गया है। कलाकार ने इन सभी का खंडन किया। 67 वर्षीय कलाकार को आज सुबह पेरिस में हिरासत में रखा गया। कुल 30 से अधिक महिलाओं ने पैट्रिक ब्रियल पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। कम से कम 12 शिकायत दर्ज की गई है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में एक शोक समाचार। रॉयल रोड शमे ग्रेनियर में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड की बीबी फरीदा भातू, पैदाशी नाम फाउदाओ, जो फरीदा नाम से भी जानी जाती थी, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात सवा आठ बजे उनके बेटे जनाब रियाद भातू के घर रॉयल रोड शमेग्रनिये से उठाकर दफनाने के लिए कौशालो शमेग्रनिये का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:15 PM। शुक में डुबी इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: आज की चर्चा।
5: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक स्वागत बाटी। जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम हम हर लेंदी के हमने पेश करी लाजा और हमने के जितना जना देखत हो अंजा सुनत हो अंजा सबके हार्दिक स्वागत। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है कृषि वन। जी हाँ, कृषि वन, जिसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे फार्मिंग सिस्टम के बारे में जो हमारे जो ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी को आपस में जोड़ता है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं एक अधिकारी, आप है फागे, यानी कि फूड एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट श्रीमान विशाल भिखारी जी, जो फूड प्रोडक्शन के सिस्टम पर रोशनी डालेंगे और जिसे हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो अभी से ही आपको नंबर बता देते हैं, 4028085-402-8085। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की जो हम बात करते हैं, जैसे कि 5 अलग हिस्से होते हैं इनके, क्या है हम आपको बताते हैं और बारी बारी से इस विषय पर, इन विषयों पर जो अलग अलग 5 होते हैं, हिस्से जो होते हैं, इन पर हम खुलासा करेंगे। पहले तो है कृषि वन की बेसिक्स, इनको हम समझेंगे। फिर कैसे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए डायरेक्ट लाभ होता है, आर्थिक विविधीकरण और रोजाना का काम, प्रैक्टिकल मुश्किलों को सॉल्व कैसे करना होता है और क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं, इससे लड़ना और आने वाले फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे। तो विशाल भिखारी जी, आप आज हमारे खास मेहमान हैं, आपका स्वागत है आज की चर्चा कार्यक्रम में। तो सबसे पहले जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, एग्जैक्टली क्या है?
6: सभी सुनने वालों को मेरा हार्दिक नमस्कार और शुक्रिया मुझको यहाँ एमबीसी के मंच पर इनवाइट करने के लिए। तो ये एग्रोफॉरेस्ट्री, जवाब देने के पहले मैं सभी सुनने वालों को ये बताना है कि 2000 से 2025 तक ग्लोबल फॉरेस्ट डिक्लाइन 2.5% हो गए हैं, यानी कि 4.1 बिलियन हेक्टर्स का घट गई।
5: जब हम बात करते हैं अबाउट फॉरेस्ट्री, आई मीन जंगल
6: वन, ओके। हालांकि इसी पीरियड के दौरान मॉरिशस में 4% यानी कि 3,100 हेक्टर्स की घट गई है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जितने जल्दी हो सके वृक्षों की संख्या को बढ़ाना चाहिए
5: जी।
6: तो अब आपके उत्तर पर आते हैं, प्राचीन काल से लोग वन में ही

0: कृषि करते थे
1: जी।
0: और उस समय में कोई हेल्थ का कोई हेल्थ की समस्या नहीं थी, कोई कीड़े मकोड़े नहीं थे, थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जैसे आज का, या पौधे में बीमारी नहीं थी और कोई रासायनिक पदार्थ केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे। जब कृषि वन में करते थे तो ये प्रैक्टिस कृषि वन की बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इंग्लिश में

0: कृषि और वन का मिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन का ये सिस्टम नया नहीं है, बल्कि बढ़ती हुई वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ये चक्कर में केमिकल की एंट्री की वजह से लोग इसे भूल गए थे।
1: अच्छा,
0: तो एग्रोफोरेस्ट एक ऐसा फूड प्रोडक्शन सिस्टम है जहां एक ही ज़मीन पर वृक्ष, फसलें या पशु लाइफ स्टॉक एक बैलेंस और नेचर फ्रेंडली तरीके से मौजूद होते हैं, ताकि एक इंटरैक्टिव और हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बना सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसके कौन कौन से और भी फायदे हैं?
0: एग्रोफोरेस्ट्री का बहुत फायदे हैं, तो मैं आज की प्रोग्राम में 5 ऐसे फायदे बताता हूँ। पहले मिट्टी का स्वास्थ्य का की सुधार, यानी कि इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो एग्रोफोरेस्ट्री में वृक्ष की पत्तियाँ जो लीव्स हैं, जब मिट्टी पर गिरते हैं तो डिकम्पोज होते हैं, एक तरह की नेचुरल कंपोस्ट बन जाती है। इसी मिट्टी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उसकी उपजाऊ शक्ति यानी कि फर्टिलिटी बढ़ती है।
1: अच्छा,
0: दूसरा किसानों की कमाई में इजाफा, यानी कि डाइवर्सिफाइड इनकम एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इस सिस्टम में किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि मिक्स फार्मिंग है ना, तो उन्हें फसल के साथ साथ लकड़ी, फल और चारा यानी कि फोडर भी मिलते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ जाती है। तो एक ही जमीन पर सेवरल क्या बोलते हैं हार्वेस्ट होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। तीसरी मिट्टी और पानी का बचाव, यानी कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। पैरों की जड़ें जो रूट्स हैं मिट्टी को मजबूती से पकड़ करते हैं, जिसे मिट्टी का बहाव रुक जाते हैं। साथ ही साथ ये जमीन के अंदर का पानी जो पकड़ करते हैं और मदद करते हैं कि सोइल इरोजन नहीं होते हैं और ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाते हैं।
1: अच्छा,
0: चौथा बायोडाइवर्सिटी का बढ़ावा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एनहेंसमेंट। खेती के साथ पेड़ पौधे लगाने से छोटी मोटी वाइल्ड लाइफ और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जैसे मधुमक्खी आते हैं पोलिनेशन के लिए, वो आते हैं। जब मिक्स क्रॉपिंग होते हैं, जब पेड़ पौधे होते हैं, जब फूल होते हैं, सब आते हैं और एक इकोसिस्टम के एक इकोसिस्टम बनाते हैं, जैसे फॉरेस्ट में, जैसे वन में मिमिक करते हैं, तो ऐसे ही माहौल पैदा करते हैं। और पांचवा न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि वृक्ष एक तरह से न्यूट्रिएंट को पंप और जड़ों से पकड़ने का काम करते हैं। ये जमीन के काफी गहरे हिस्से से उन न्यूट्रिएंट्स को ऊपर खींचते हैं जो नीचे गए थे, ताकि ऊपर की फसलें को मिल सके। मिट्टी के अंदर मौजूद हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म जो है को खाने देते हैं और मिट्टी को मजबूती से पकड़ करते, ताकि वो पानी के साथ नहीं बह जाते हैं।
1: तो इतने सारे फायदे हम देख रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम लोग बात कर रहे हैं एग्रोफोरेस्ट्री के, और हम लोग पहले के ज़माने की जब इतने सारे फायदे की बात कर रहे हैं तो पहले के ज़माने याद आ जाते हैं। आज तो हम लोग इतने डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन। तो आप हमें बताएं कि एक ट्रेडिशनल जो खेतीहर है, जो खेती बाड़ी करने वाला होता है, उसको एग्रोफोरेस्ट्री क्यों अडॉप्ट करना चाहिए?
0: ट्रेडिशनल जो मोनोकल्चर करते हैं, जैसे एक ही ज़मीन पर पोटैटो उगाने का या टमाटो या कुछ तो भी उगाने का, ये इसको बोलते हैं मोनोकल्चर। जब एक ही ज़मीन पर सिर्फ एक टाइप की कल्चर होते हैं, तो धीरे धीरे से वो कीटू बीमारी जो है, जो सब आते फास्ट से आते हैं।
1: अच्छा, अटैक करने लगते हैं।
0: और ज़मीन पर सिर्फ एक ही क्रॉप फार्मर को मार्केट क्रश या पेस्ट या क्लाइमेट शॉक के प्रति वल्नरेबल बन जाते हैं। तो एग्रोफोरेस्ट्री इसलिए अडॉप्ट करनी है चाहिए क्योंकि ये फार्म को डाइवर्सिफाई करते हैं।
1: अच्छा,
0: अगर आपकी प्राइमरी क्रॉप का सीजन खराब भी चल रहे हैं, तो आप वृक्ष प्रोडक्ट के ऊपर या सेकेंडरी क्रॉप्स एक रिलायबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। ये आपकी

0: जमीन परी रेजिलियंस बिल्ड करते हैं ताकि ताकि आपका आपका जो इनकम होते हैं वो रुक नहीं जाते
1: जी,
0: हैं
1: जी.
0: तो अगर एक एक बंद हो गए तो पांच
1: दूसरा रास्ता भी खुल जाता है
0: हो जाते
1: ये है। बहुत ही सही बात है। तो एक बार फिर आप सभी को हम याद दिला देते हैं कि अगर कोई प्रश्न पूछना है आज हमारे विशेष मेहमान है श्रीमान विशाल भिखारी जी फागे से है तो 402-8-4-02-8-0-8-5 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइन खुली है। आप हमें बताएं विशाल जी की एग्रो फॉरेस्ट्री जो है रेगुलर फॉरेस्ट्री या फिर ऑर्चर्ड फार्मिंग ये कैसे अलग है?
0: जो फॉरेस्ट्री का बोलते हैं
1: जी
0: अगर जब वन का ये फॉरेस्ट बोलते हैं तो लोग क्या सोचते हैं सिर्फ पेड़ है वृक्ष है तो सिर्फ लकड़ी यानी कि टिम्बर के लिए पेड़ उगाते हैं और ऑर्चर्ड का पूरा फोकस सिर्फ फ्रूट्स पर होते हैं
1: अच्छा।
0: यानी कि लीची या मैंगोज या कुछ तो भी तो दोनों तरफ सिर्फ एक ही फोकस होते हैं यानी कि टिम्बर या फ्रूट्स
1: जी।
0: वही एग्रो फॉरेस्ट्री में वृक्ष और फसलें या पशु अगर बकरी या बैल या गाय कुछ तो भी अंदर करने का तो एक एग्रो फॉरेस्ट्री है जहाँ पे क्या बोलते हैं पोल्ट्री डालते हैं
1: ओके।
0: तो उन सब के बीच का एक डायनामिक और डिलिबरेट पार्टनरशिप है
1: अच्छा।
0: जिसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि एक साथ मल्टीपल बेनिफिट्स मिल सके
1: जी।
0: तो इसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट और एनहेंस करते हैं क्योंकि जब एनिमल्स डालते हैं तो उसकी उसकी खाद प्लांट्स को जाती है
1: जी।
0: तो प्लांट्स उसको खींच के
1: उसके अब्सॉर्ब
0: करके और फ्रूट्स देते हैं तो एक बड़ा सा डायनामिक बैलेंस हो जाती है।
1: ओ दैट्स जैसे कहते हैं यानी कि हर किसी एक ऑर्चर्ड हो फॉरेस्ट्री हो हर किसी की अपनी खासियत होती है और जब सब एक साथ मिल जाते हैं तो सबका फायदा होता है।
0: एग्जैक्टली
1: तो अपने आप को आप हमें बताएं कि एग्रो फॉरेस्ट्री में जो मेन टाइप्स या फिर सिस्टम्स हैं कौन से हैं जिन्हें फार्मर्स जो हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
0: सबसे कॉमन और सिंपल तरीके कृषि वन की पहले जो है वो आले क्रॉपिंग
1: मतलब
0: बोलते हैं। आले क्रॉपिंग का मतलब है जैसे आप ऐसे लाइन में डालते हैं क्रॉप्स को वृक्ष को क्योंकि हर वृक्ष का साइज जब बड़े होते हैं अलग होते हैं
1: जी।
0: वो जो ऊपर का हिस्सा है उसको कैनोपी बोलते हैं
1: अच्छा।
0: राइट मैंगो का कैनोपी 5 या 6 मीटर का होते हैं तो जब प्लांट कर रहे हैं तो मिडिल का पार्ट और उन दूसरे का लाइन एक 10 या 12 मीटर छोड़ना पड़ेगा
1: अच्छा।
0: क्योंकि जब बड़े हो जाएगा तो पूरा
1: स्पेस तो चाहिए
0: तो लेकिन वो स्लो ग्रोथ होते हैं
1: जी।
0: राइट तो आले क्रॉपिंग एक तरफ की सिस्टम है। दूसरे हैं सिल्वो पास्चर जब जब वृक्ष के साथ जानवर यानी कि बकरी या गाय या कुछ तो भी कंबाइन करते हैं। तीसरी जो है विंड ब्रेक्स अगर एक जगह है जहाँ पे हैवी विंड होते हैं तो विंड ब्रेक्स या शेल्टर बेड क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वृक्षों की लाइन में लगाते हैं
1: जी।
0: ताकि छोटे फसलें जो उसके बाद जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरी होम गार्डन जहाँ पे पलहर पेड़ों यानी कि फ्रूट ट्रीज और सब्जियों का एक हाईली डाइवर्सिफाई और मल्टी लेयर मिक्सचर में है उगाते हैं। मल्टी लेयर यानी कि ट्रीज जो ऊपर है और इसके नीचे श्रब आते हैं और इसके नीचे जो फसलें हैं जो ग्राउंड लेवल पे हैं सलाद या कुछ तो भी ये मल्टी लेयर बोलते हैं
1: अच्छा जी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।

0: तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज की चर्चा कार्यक्रम. आज आप हम सब बात कर रहे हैं, खास तौर हमारे जो खास मेहमान आए हुए हैं फागे से, श्रीमान विशाल भिकारी जी, और हम बात कर रहे हैं अबाउट एग्रो फॉरेस्ट्री. जब एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हो रही है, औषद की बात हो रही है, तो इतने सारे फायदे के बारे में हम लोग जान पा रहे हैं. और जहाँ जानवर होते हैं, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे फॉरेस्ट्री, हमारे जो जंगल जैसे हम कहते हैं वन, हमारी जो एनवायरनमेंट में पर्यावरण को एकदम सुरक्षित बनाते हैं. जब भी बात करते हैं अबाउट वन या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री विशाल जी, तो हम अपनी मिट्टी को भूल नहीं सकते हैं. जी हाँ, तो चलिए मिट्टी की बात करते हैं. वृक्ष जो है, वन जो है, उनके बिल्कुल पास उगने वाली फसल को कैसे इनको बेनिफिट्स मिलते हैं?
1: नेचुरली मिट्टी को बेहतर बनाने वाले का काम करते हैं. जब जैसे पहले बताया था कि गहरी जड़ों वाले वृक्ष जमीन के अंदर से उन न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेकर आते हैं, जहां शालो रूटेड क्रॉप्स, जहां पे सिर्फ इतना इतना इतना चाहिए छोटा वाला, वो नहीं पहुंचते हैं, वो उसके ऊपर खींच के आते हैं.
0: अच्छा,
1: राइट. तो जब वृक्षों की पत्तियां गिरते हैं, जैसे पहले बताया, वो तो डिकम्पोज होते हैं, तो धीरे धीरे जैसे वन में किसी आदमी को जाते हुए देखा वन में, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई करने के लिए नहीं देखा, नहीं. कोई पेस्टिसाइड लगाने का नहीं देखा, लेकिन वन एकदम स्वच्छ है. एकदम स्वच्छ है. क्यों नेचुरल है? क्योंकि वो पत्तियों का काम करते हैं, और वहां पे जो नीचे का पत्ते हैं वो ह्यूमस बनते हैं, और ह्यूमस फार्म यार्ड मैन्यूर से बहुत ज्यादा बेहतर है.
0: जी.
1: तो ऊपर वाले जो

0: का काम करती हैं और वहां पे जो नीचे का पत्ते हैं वो ह्यूमस बनते हैं और ह्यूमस फार्म यार्ड मैन्यूर से बहुत ज्यादा बेहतर है
1: जी।
0: तो ऊपर वाले जो वृक्षों मिट्टी में पानी को पकड़ करते हैं क्योंकि वो जड़े हैं, सिर्फ बड़ी जड़े नहीं है, छोटी वाली भी है और सोइल पार्टिकल्स को एकदम ऐसे नेटवर्क में बन जाते हैं जहाँ पे जो फिल्म मॉइस्चर है वो पकड़ जाती है और इम्प्रूव करते हैं जड़ों के माध्यम से जो जायंट स्पंज के काम करते हैं।
1: अच्छा,
0: इसी तरह काम करते हैं जो वाटर रन ऑफ को स्लो करते हैं और बारिश का पानी जो जमीन के अंदर पेनेट्रेट करने में मदद करते हैं। तो जब ऊपर का कैनोपी जब बारिश होते हैं एक एक वृक्ष के ऊपर वो क्या बोलते हैं इसके इसके अलावा पेड़ों की छाव जो शेड है मिट्टी की सरफेस से एवापोरेशन को कम करते हैं
1: जी।
0: जब ढल जाते हैं तो सूरज का प्रकाश जो है जो हीट है वो नहीं पहुंचते हैं डायरेक्टली सॉइल के ऊपर तो मदद करते हैं जिसका मतलब है कि खेत ज्यादा समय तक हाइड्रेटेड रहते हैं और कीमती पानी की बचाव होती है।
1: अच्छा,
0: तो बर्फ वृक्ष डालना पड़ना पड़ेगा जब भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं
1: जी। इट्स अ मस्ट। एक श्रोता है आपसे बात करना चाहेंगे, प्रश्न पूछना चाहेंगे। हेलो जी,
2: नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
2: आम की गांछे कैसे प्लांट की तरह
1: आम के गांची यानी कि आम के जो पेड़ है उसको कैसे उगाया जाता है, कैसे रोपा जाता है?
0: जब भी फ्रूट्स के वृक्ष जो डालना है आपका कहाँ पे डालना है अगर मालूम नहीं, अगर घर के
1: घर
0: पास
1: पर, घर के आंगन में किसी बगीचे में कहाँ
2: आंगन में
0: ओके अगर आंगन है तो ज्यादा स्पेस है, अगर 10 मीटर बाय 10 मीटर का स्पेस है तो लगा देना क्योंकि आम का जड़ी आपका बेसमेंट घर का बेसमेंट को बाद में नुकसान पड़ सकते हैं तो देखना पहले कहाँ पे प्लांट करने का।
1: ठीक है,
2: जहाँ
0: नहीं आप ये प्लान कर सकते हैं लेकिन वो डिस्टेंस चाहिए, अगर कोई
1: अगर अगर पहले से ही कोई कोनो गौची बाचाची तधरला तू आम के गौची रोपे के मन बात हो रहा ना तो तुहर आंगन में कोनो और गौची बात है कि नहीं?
2: तब नहीं खोला कुको की गौच नहीं बात।
1: अच्छा, कुछ नहीं बाती अभी आंगन में, कुछ नहीं बाती
2: बाती एक मजा
1: अच्छा छोटा की बड़ा
2: छोटा नहीं
1: बचे चाहे की जब अमुआ के गौची जब बड़ा हो तो चाहे अपन लिस्पास ना
2: कुको की गौची कैसे प्लौटाला
1: कुको की गौची कैसे प्लौटाल जाला कैसे
0: आप कहाँ पे रहते हैं
1: आप कहाँ रह
0: अगर पेटी राफ्रे में है तो फारे का एक ऑफिस है मापू में, अगर आप जा सकते हैं पूछने के लिए वहाँ पे एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं आपके जगह आपके साइट विजिट कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं क्या कहाँ पे उगाना है।
2: हाँ।
0: अच्छा
1: ठीक बा, बहुत धन्यवाद। तो चला जब कुछ हो पूछे के बातें हमने के लाइन खुलल बातें का सौदे का तो वैसा 402-808-5। विशाल जी हमने के आप बताइए ज़रूर कि कृषि जब एग्रोफॉरेस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो किसान का जो केमिकल खाद जैसे हम बात करते हैं पेस्टिसाइड तो जैसे जो इनपुट्स हैं उन पर खर्चा कैसे बचाया जा सकता है?
0: वो जो खाद है वो फर्टिलाइजर का
1: जी,
0: है।
1: जी जी
0: बिल्कुल, क्यों कुछ स्पेसिफिक ट्री स्पीसीज चुनकर जैसे लेग्यूमिनस ट्रीज यानी कि जो हवा के नेचुरली नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं
1: जी।
0: मिट्टी में पंप करते हैं किसान लोग महंगे पदार्थों पर अपनी डिपेंडेंसी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: वो जो नेचुरल लीफ, क्योंकि एक टाइम लगता है, टाइम लगता है, एक आज से कल तक नहीं नहीं हो सकेगा, तो टाइम लगेगा। और वो नेचुरल लीफ मल्स की वजह से सिंथेटिक पदार्थों बार बार

0: खरीदने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब ये बात कर रहा हूँ वो मैं 10 साल का ये एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम का बोल रहा हूँ। अगर नया है तो कृषि वन की खेत में अगर अभी अभी शुरू किया है तो इरिगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी डालना है, वो छोटा पैर है, पानी डालना है, और आपका जो इंटरलाइन जो क्रॉप्स होते हैं उनको भी पानी का ज़रूरत होते हैं। अगर पहले से ही एक एस्टाब्लिश एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम है तो सूखे के पूरी तरह अफेक्ट नहीं होते हैं जब भी सूखे का सीजन आते हैं, क्योंकि बड़े वृक्ष के जड़ पहले से ही मिट्टी का पानी को मजबूती से पकड़ रखते हैं और ये ऊपर वाले फसले को जीवित रखते हैं।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है। तो हम जब बात कर रहे हैं एग्रोफॉरेस्ट्री खेत की बारी में कर रहे हैं, और बहुत जाना हमने की अभी सुना थवन देखा थवन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बताएं कि खेत पर लगे वृक्ष कीड़े जो मकोड़े और बीमारियां हैं उनके मैनेजमेंट में कैसे मदद करते हैं?
0: मोनोकल्चर फील्ड्स, यानी कि जहाँ पे एक जमीन है सिर्फ एक ही कल्चर के है, उसको बोलते हैं मोनोकल्चर।
1: जी
0: बिल्कुल, एक जैसे ऑल यू कैन ईट बुफेट जो है, जहाँ पे एक टेबल है सिर्फ एक ही चीज़ है खाने के लिए, यानी कि एक टेबल है जहाँ पे सिर्फ चावल है, या एक टेबल है जहाँ पे सिर्फ चिप्स है, लाइक फॉर एग्जांपल, ये इनवाइट करते हैं कीड़े मकोड़ों को, दावत देते हैं खाने के लिए, तो सब आते हैं। लेकिन जब आप खेत में वृक्ष और अलग अलग तरह की फसलें लगाते हैं तो आप उस बुफेट को, उस खाने की चीज को पूरी तरह से तोड़ कर देते हैं। इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। तो जैसे अगर हम आप एमबीसी में आ गए हैं अभी, तो आगे से पीछे तक सिर्फ एक ही जन का फेस दिख रहे हैं, तो ये उसको मोनोकल्चर। लगर जब मैं आऊं तो आगे मैं वॉचमैन
1: अलग लोग दिख रहे हैं,
0: एक हो गए, तो अलग अलग है, ये तो मिक्स क्रॉपिंग है। तो प्रकृति ने ऐसे ही बनाए हैं
1: जी।
0: तो लेकिन ह्यूमन जो है वो मोनोकल्चर करते हैं सिर्फ पैसे के लिए
1: जी।
0: तो वृक्ष लगाने से फायदेमंद कीड़े यानी कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और पक्षियों को एक अच्छा घर, अच्छा हैबिटेट मिल जाते हैं, जो नेचुरल प्रीडेटर्स का काम करते हैं। ये पक्षियों उन कीड़े का खा जाते हैं जिसे बिना हैवी पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के ही गंदे कीड़े की संख्या घट जाती है
1: जी।
0: तो प्राकृतिक रूप से और कंट्रोल में रह जाती है। तो सब अगर एक ही साथ में रहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी होते हैं ना, तो एकदम आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
1: हम यही आशा करते हैं कि आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम लोग एग्रोफॉरेस्ट्री, जहाँ पर सिर्फ मोनोकल्चर नहीं है बल्कि सब कुछ एक साथ हम लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी तो हम विंटर सीजन में हैं, सर्दी का मौसम आता है या फिर साइक्लोनिक वेदर आता है, बारिश, जब भारी बारिश आती है उसके दौरान सॉइल इरोजन की भी बात हो रही है। ये आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है सॉइल इरोजन, एंड तो एक ही रात में किसानों की जो फसल है वो बर्बाद भी हो सकती है। तो ऐसे में जो वृक्ष होती हैं, जो वन होती हैं, जो एग्रोफॉरेस्ट्री है, इससे कैसे बचाया जा सके?
0: पैरों के जरिए जब पहले बात कर रहे थे, वो रूट्स खेत के लिए एक लिविंग एंकर का काम करते हैं, सब पकड़ करते हैं
1: जी।
0: वो मिट्टी को पकड़ते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स को मजबूती से बांध कर रखते हैं। जब बड़ी बारिश होते हैं तो वृक्ष की कैनोपी जो ऊपर का है वो बारिश के बूंदे की जोर को तोड़ कर सकते हैं, तो इतना जो ऊपर का प्रेशर आते हैं तो उसको धीमिक से करते हैं, तो धीरे धीरे अंदर आते हैं। तो वृक्ष के कैनोपी बारिश के बूंदे के ये जोर तोड़ करके और जरे ऊपर के मिट्टी को, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नदी या ड्रेन्स में नहीं बह जाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो सब कैप्चर कर देते हैं
1: जी।
0: तो मरे हुए पत्ते जो मल्चिंग का काम करते हैं वो भी बारिश को धीरे से मिट्टी में, क्या बोलते हैं, वो पर्कोलेट करते हैं।
1: अच्छा।
0: वो डायरेक्ट

0: सॉइल पे इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो जब भी जैसे कम्बल का काम करते हैं
1: ग्लेयर जैसे, हाँ,
0: तो सॉइल इरोजन नहीं होते हैं
1: जी,
0: पानी से नहीं और हवा से भी नहीं।
1: अच्छी बात है ये। तो चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं आर्थिक विविधीकरण और रोजाना का काम, मतलब कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड टेरी ऑपरेशंस। साथ देते रहिएगा बस थोड़ी देर में।

बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, जिसको आप फेसबुक लाइव देख रहे हैं, और शाम को 3 से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन और 4 से 5 के बीच MBC TV पर भी वापस देख पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको नंबर दे देते हैं 402-4-0-2-8-0-8-5। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्रीमान विशाल भिखारी जी, फागे के अधिकारी हैं, और आज हम बात कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, इनके जो फायदे हैं हम देख रहे हैं, और इनके फायदे के साथ सबको फायदा है इसमें, क्योंकि हम सब इस

0: के साथ जुड़े हुए हैं, वन हो, वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, हमारी मिट्टी हो, हम सब इसके साथ जुड़े रहते हैं। अच्छा विशाल जी, आप हमें बताएं कि जो किसान होते हैं, किसानों को हमेशा अपने फायदे अपने नुकसान देखना होता है, इट्स अ मस्ट जैसे कहते हैं, और ये जो सिस्टम है यानी कि हम बात कर रहे हैं अबाउट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड टेली ऑपरेशंस, जो आर्थिक विविधकरण है और रोजाना के जो काम होते हैं, ये जो सिस्टम है किसान की कमाई को कैसे इम्प्रूव करता है और क्या इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है?
1: एग्रोफोरेस्ट्री एक सिस्टम है जहाँ पे एक ही खेत से इनकम के मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट करता है।
0: अच्छा,
1: तो जब तक एक ही जमीन पर शॉर्ट साइकिल सीजनल क्रॉप्स जैसे मिर्ची, अलग अलग सब्जी, फूल, सलाद, बैगन आदि आदि, और मीडियम और लॉन्ग साइकिल वाली क्रॉप्स जैसे हल्दी, सूरन, अदरक, केले एक ही साथ उगाई जा रहे हैं, तब तक किसान का डेली, वीकली या ईयरली हार्वेस्ट
0: चलता रहता है,
1: कर सकते हैं। तो एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम में इनकम हमेशा एक कंस्टेंट बेसिस पे होती है
0: जी।
1: लेकिन एग्रोफोरेस्ट्री स्टार्ट करने के लिए लगभग मिनिमम एक एकड़ जमीन या हाफ एकड़ जमीन पे भी ओके चलेगा तो ये इम्पोर्टेंस है साइज का, क्योंकि वृक्ष का साइज बड़ा है, क्योंकि ये गार्डन नहीं है जहाँ पे सब्जी उगाते हैं, तो वृक्ष जब डालते हैं तो स्पेस लगाना पड़ेगा
0: जी।
1: तो प्लॉट है, प्लॉट जो है जहाँ पे एग्रोफोरेस्ट्री जा रहे हैं करने के लिए, वो फेंस होना चाहिए और प्रॉपर पानी का आवश्यकता या और रोड एक्सेस अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं और पानी नहीं है और जो रोड का एक्सेस अच्छा नहीं है, तो आपका मुसीबत हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर प्लॉट बड़ा है तो ज्यादा मैन पावर और ज्यादा मशीनरी की जरूरत होती है, छोटी मशीनरी है, बड़ी मशीनरी नहीं, इसका मतलब है ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट
0: जी।
1: हम फिगर्स पे नहीं जा रहे हैं आज, क्योंकि ये इकोनॉमिक एनालिसिस है और इट्स अ केस टू केस बेसिस। और किसान जो को जानना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, लक्ष्य क्या है
0: जी।
1: इसके आधार पर एग्रोफोरेस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाना है और एक अच्छे से प्लान करके हम फारे में साइंटिस्ट हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, मदद कर सकते हैं
0: जी। और यहाँ पर फिर से आपको याद दिला देते हैं 92.85, अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमें बताएं कि क्या एग्रोफोरेस्ट्री और पशुपालन माने कि लाइफ स्टॉक जो है करने वाले किसान, उनको भी साधन माने कि रिसोर्सेज प्रदान किए जाते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि पशुपालन एक वन की वातावरण में क्या बोलते हैं, वो सिल्वोपास्चर सिस्टम बोलते हैं। अगर पशुपालन और वन की एक ही सिस्टम में करते हैं तो सिल्वोपास्चर करते हैं। फरी में एक है, एक सिल्वोपास्चर है जहाँ पे शुरू किया है, तो देखना पड़ेगा बाद में कैसे होते हैं। वो पेची मेलो में है
0: जी।
1: और इसमें कुछ स्पेसिफिक ट्रीज या घास की पत्तियाँ जानवरों के लिए ज़्यादा प्रोटीन वाले चारा यानी कि फोडर का काम करते हैं। खासकर ड्राई सीजन में जब घास की कमी होती है तो ये फीड को काम करते हैं और लाइफ स्टॉक की स्वास्थ्य और दूध का पैदावार इम्प्रूव करते हैं।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप हमें बताएं कि एक किसान जो है अपने रेगुलर क्रॉप्स के साथ और किस तरह के वृक्ष उत्पादन जो है वो बेच सकता है?
1: किसान जो फसलें बोई गई हैं उसके बेसिस पर, उसके आधार पर वो इन साधनों से फलों, नट्स या मसाले या स्पाइसेस, मेडिसिनल बाग्स जैसे कानेल बोलते हैं, जलाने वाली लकड़ी चारा और हाई वैल्यू लकड़ी मिलते हैं
0: जी।
1: ये वैरायटी उनके लिए अलग अलग लोकल मार्केट्स और एग्रो प्रोसेसिंग अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलते हैं।
0: तो यहाँ पर क्या आप कह सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री एडॉप्ट करने का

0: ये मतलब है कि किसान को अपने जो करंट फसलें उगाने बंद करने होंगे?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्रोफोरेस्ट्री पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है
0: जी,
1: मॉडिफाइड कर सकते हैं। अगर आप एक सब्जी वाले किसान हैं तो आप वेजिटेबल्स उगाना बंद नहीं करेंगे, आप बस स्ट्रैटेजिकली स्पेस रोज में ऐसे वृक्ष लगाना है जो आपकी फसलें को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
0: अच्छा,
1: ये आपके एग्जिस्टिंग खेत को एनहेंस करते हैं। वो एक एक डिज़ाइन करना पड़ेगा
0: जी,
1: क्योंकि जब अच्छा डिज़ाइन होते हैं सब खराब हो जाते हैं, तो उसे बदलने करने नहीं चाहिए।
0: अच्छा,
1: सिर्फ
0: जैसा है। हाँ जी जी जी जी, तो यहाँ पर एक श्रोता है, उनसे बात करेंगे। हेलो,
2: हाँ नीतिशा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
2: और भाई को ही मेरा नमन।
1: नमस्ते।
2: हाँ, मेरा ये कहना है नीतिशा जी, जो गाना आपने चलाया भी ना, बर तरे झूला हूँ न पहली हो बाबा
0: जी,
2: उसमें एकदम सच्चाई है, झूठ नहीं है। क्योंकि उस समय में रात्रि को शादी होती थी, तो अब कैसे, पहले तो खेर खिलौने छोड़ कर, गुड़ा गुड़िया छोड़ कर लड़कियों को शादी करना पड़ता था ना, और बद की वृक्ष की जटाओं को पकड़ कर झूलते थे। अब तो वो सब छूट गई है, तो मेरा ये कहना है कि, और सचमुच में वो ससुर जी आते थे अपनी बहू को ले जाने के लिए, और जेठ जी भी आते थे, हाँ तो कहाँ पति आते थे। तो गाना सुनकर, मैं तो सवेरे से नहीं सुन रही हूँ क्योंकि काम काज में उलझी हूँ, अभी आई तो थोड़ा सा सुना, अच्छा लगा, प्रोग्राम अच्छा, अच्छा लगा।
0: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर
2: अच्छा, यादें सामने आती है क्योंकि मैंने रात्रि की शादी देखी है ना।
0: अच्छा,
2: इसीलिए उस समय रात्रि में शादी होती थी, ससुर भसुर आते थे, दो तीन मोटर आती थी तो शादी करके जाती थी लड़की, और बाद में जब विदाई होती थी तो लड़की के पापा नहीं जाते थे लाने, वो
0: जी, जी, जी।
2: लाने जाते थे, लेकिन जब वहाँ से पीहर से लोग आते थे ले जाने के लिए बहू को, तो पति नहीं आते थे उस समय।
0: अच्छा जी, बहुत धन्यवाद श्यामा जी। वैसे आज शादी पर बात नहीं हो रही, आज तो बात हो रही है एग्रोफोरेस्ट्री पर, लेकिन चलिए, इन गानों के जरिए आपकी यादें वापस आ गई हैं, उभर आई हैं, बस जानकर अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं समय की ओर भी देख रही हूँ, बस हमारी जाने का टाइम आ गया है, लेकिन एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछेंगे, क्योंकि आने वाले जो हफ्ते हैं, अगले हफ्ते वापस आएंगे इसी टॉपिक पर, यानी कि एग्रोफोरेस्ट्री, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट है विशाल जी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चलते चलते आप हमें बताएं कि जो वृक्ष की छांव है, जो शेड है, उन फसलों को कैसे अफेक्ट करती है?
1: यही पर क्या बोलते हैं, स्मार्ट डिजाइन काम करते हैं
0: जी।
1: क्या बोलते हैं, रेगुलर प्रूनिंग जब काटते हैं
0: जी,
1: हिंदी में बोलते हैं शतनई।
0: अच्छा,
1: तो बारी बारी जब शतनाई करते हैं, तो जैसे ये टेक्निक का यूज करते हैं ताकि कैनोपी ऊपर वाले का हिस्सा जब बोलते थे पहले, वो जब मैनेज करते हैं तो ये सनलाइट को नीचे आ सकते हैं
0: जी,
1: इसको बोलते हैं विंडोइंग।
0: अच्छा,
1: यानी कि अंदर का ब्रांच जो बड़ा है वो काट सकते हैं और अंदर से ही सनलाइट आते हैं नीचे। तो इसके अलावा कई हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कॉफ़ी, कोकोआ, अदरक, हल्दी और कुछ लीफी ग्रीन्स उगाई कर सकते हैं
0: जी।
1: एक्चुअली पार्शियल शेड में ये क्रॉप्स ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और फसल की क्वालिटी बेहतर होते हैं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डांसिंग शैडो, यानी कि थोड़ा सा सूरज, थोड़ा सा शेड, तो ये प्लांट्स अच्छे लगते हैं जब दोनों का मिक्स होते हैं।
0: हाँ, मिक्स होता है। तो बस ऐसे ही हम लोग मिक्स करते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगले हफ्ते फिर से हम लोग, क्योंकि ये बहुत है, जैसे कि हमने कहा टॉपिक बहुत ही वास्ट है एग्रोफोरेस्ट्री। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी श्रोता, जितने भी आप हमारे साथ जुड़े रहे, दर्शकगण जुड़े रहे, हमने बात की एग्रोफोरेस्ट्री और कैसे जो फार्मिंग जो है कम्युनिटी को एम्पावर कर सकते हैं, इसी विषय को हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विशाल भिखारी, आप सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है फागे से, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक हमारी पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद, सबको नमस्ते,
1: शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं समाचार रचने के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। वैथोल आशय के खिलाफ औपचारिक रूप से नए आरोप लगाए गए हैं। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एजेंसी के इस निदेशक को सेल्वी थर्मल स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 2020 में डेनमार्क की कंपनी बीएमएससी में एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व आयका के महानिदेशक की ओर से इंटरमीडिएट अदालत के सामने दर्ज मामले को रद्द कर दिया गया और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन डीपीपी सुझावों के अंतर्गत एक नया मामला दर्ज किया जाएगा। गंगा तालाब एक पवित्र स्थल है, आध्यात्म का प्रतीक। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इस स्थल का दौरा करते हैं, लेकिन हाल में पेश आई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब से इस प्रतीकात्मक स्थल पर दौरे के लिए संबंधित कदम उठाना चाहते हैं। इस तरह आज कला एवं संस्कृति मंत्री के नेतृत्व में स्थल का दौरा किया गया और उठाए जाने वाले कदमों पर बातचीत की गई। स्थलों के संरक्षण के लिए गाइडलाइंस दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अभी ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून तैयार किया जा रहा है और मॉरिशनों को महासागर के टिकाऊ संचालन के हक में अतिरिक्त रूप से समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करने के वास्ते उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बात का ऐलान ब्लू इकोनॉमी मंत्री डॉ. अरविंद बुले ने किया। वे आज मॉरिशस ओशियानोग्राफी इंस्टीट्यूट की ओर से लैंस्टिटी फ्रांसे डे मॉरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस के संबंधित गतिविधियों में भाग ले रहे थे। कपड़ा उद्योग में कई कर्मचारी करीब 2 सप्ताहों से तकनीकी रूप से बेरोजगार हैं। असल में उन्हें 2 से 3 महीनों से अपना वेतन नहीं मिला है। संबंधित कंपनियों में वर्लनिट्स, यूनिवर्सल फैब्रिक्स लिमिटेड, क्लाइंट टेक्सटाइल लिमिटेड और इवाको लिमिटेड शामिल। आज सुबह कर्मचारी तथा उनके श्रमिक संघ फेडरेशन दे ट्रावायर्स यूनियन के आत्मा शांतु ने श्रम मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। उनका मानना है कि अधिकारियों की ओर से समाधान पेश नहीं किए जा रहे हैं। विदेश समाचारों में फिलीपींस में आए भूकंप में मृतकों की संख्या कम से कम 32 तक पहुंच गई है। कई इमारतें ढह गई और सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। 200 से अधिक लोग घायल बताए जाते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान से तत्काल सैनिक कार्रवाई रोकने की अपील की है। बेहद कम शब्दों में उन्होंने ट्रूथ सोशल के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को फौरन शूटिंग गोलीबारी बंद करनी चाहिए।

0: दो महीनों की लड़ाईबंदी के बाद कल ईरान की ओर से इसराइल और पर मिसाइल दागी गई। जवाबी कार्रवाई में तेल अविव ने भी तेहरान के कई प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जिसमें कारोन पेट्रोकेमिकल प्लांट भी शामिल था। संक्षिप्त समाचार ये बस समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉयल रोड शुमेगंजे में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की बेबी फरीदा भातू पैदाशी नाम फाउदा, जो फरीदा नाम से भी जानी जाती थी, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात सवा आठ बजे उनके बेटे जनाब रियाद भातू की मकान रॉयल रोड शुमेगंजे से उठाकर दफनाने के लिए कौशालो शुमेगंजे का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:15 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio, Radio, Radio.
3: आपके सितारे
4: सोमवार 8 जून घड़ी मिला लीजिए 4:04। रेडियो मनोरंजन पर हम आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए, आपके सितारे इस प्रोग्राम को लेकर। कैसे हैं आप सभी? ठीक तो है ना? तो चलिए, आ चुके हैं आपके सितारे इस प्रोग्राम को लेकर। अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है खूबसूरत गाने तराने हम आपके लिए चलाएंगे। और आपके सितारे में आप सोच ही रहे होंगे कि आज हम आपके सितारे प्रोग्राम किन पर करेंगे। तो आपको बता दें कि आज 8 जून को बर्थडे है डिंपल कपाडिया का, और डिंपल कपाडिया को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इनके सभी फैंस की ओर से, इनके सभी चाहने वालों की ओर से। और डिंपल कपाडिया की बात करें तो 70s के सालों में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और अभी भी जो है हम इन्हें फिल्मों में देखते ही हैं। महज वो 14 साल की थी जब राज कपूर साहब ने इन्हें देखा था और उसके बाद इन्हें फिल्म में लेने के बारे में सोचा था। तो चलिए, राज कपूर साहब की बात हुई है तो इनकी जो पहली फिल्म थी, इनकी जो पहली फिल्म थी बॉबी, इस फिल्म के साथ आज, इस फिल्म के गाने के साथ आज के जो है प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। और फिर डिंपल कपाडिया जी के बारे में कुछ और बातें और कुछ खूबसूरत गाने हम ज़रूर जोड़ेंगे।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है,
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम।
7: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
5: अच्छा मैं कहती हूँ

0: के सितारे।
1: अजी ये दीवानगी तो अभी अभी शुरू हुई है, अभी 6 बजे तक ऐसे ही खूबसूरत तराने आपके लिए हम चलाने वाले हैं। इन यू आपके सितारे ऑन रेडियो मनोरंजन। और आज 8 जून बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है डिंपल कपाडिया। 8 जून 1957 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बॉबी फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ये महज 14 ईयर्स की थी जब राज कपूर साहब ने इन्हें डिस्कवर किया था और इन्हें अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ ऑपोजिट कास्ट किया था 1973 में रिलीज फिल्म बॉबी में। और पहली ही फिल्म से जो है ये रातों रात स्टार बन गई थी। और बॉबी फिल्म के बारे में क्या कहे, बॉबी फिल्म के बारे में जितना कहे उतना कम है। ऋषि कपूर साहब के साथ ये ऑपोजिट नज़र आई थी। फिल्म के गाने कमाल के थे, फिल्म की स्टोरी कमाल की थी, लेकिन इनका जो लाइफ था वो कुछ अलग ही था। पहली ही फिल्म में जो है उसके बाद जो है रिलीज़ के आसपास ही जो है इनकी शादी राजेश खन्ना साहब के साथ हो गई और पहली फिल्म के बाद ही इन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया। काफ़ी साल फिल्मों से दूर रही और जो है काफ़ी साल फिल्मों से दूर रहने के बाद इन्होंने फिर से फिल्मों में कमबैक किया 80s के सालों में। चले कुछ और बातें करेंगे, अभी के लिए हो जाए एक और खूबसूरत सा तराना।

0: के सितारे।
1: चलिए थैंक यू सो मच। आप आपके सितारे इस प्रोग्राम से कनेक्टेड हैं और रेडियो मनोरंजन, और इस समय

बहुत से लोग जो है ड्राइव करते करते काम से निकल कर अपने घर की ओर जा रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो सो मच। चलिए डिंपल कपाड़िया का कोई गाना आप सुनना चाहते हैं, किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4028070 और यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250600 पर। जी हाँ, डिंपल कपाड़िया अपनी पहली फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने तुरंत जो है राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। उस समय वो महज 15 साल की थी और पहली ही फिल्म के बाद जो है इन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया था और काफ़ी सालों बाद जो है वो फिर फिल्मी दुनिया में लौटी। और अगर देखा जाए तो इनका इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी ऋषि कपूर साहब के साथ, बॉबी इस फिल्म से, और वहीं पर जब इन्होंने कमबैक किया तो वो भी जो है सागर इस फिल्म से इन्होंने कमबैक किया। और इस फिल्म में भी ये एक बार फिर ऋषि कपूर साहब के साथ ही नजर आई थी।

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे प्रोग्राम देखते ही देखते 4:42 डिंपल कपाडिया जी पर आज हम बात कर रहे हैं। ऐसे अपने पहली फिल्म के लिए भी इन्हें फिल्मफेयर की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और काफ़ी सालों बाद जब इन्होंने फिल्मों में कमबैक किया था सागर इस फिल्म से, इस फिल्म के लिए भी ये अवार्ड ले गई थी। और बस कमबैक के बाद जो है इन्हें अपने आप को साबित करना था तो काफ़ी फिल्में इन्होंने बैक टू बैक की थी। उस समय ये काफ़ी पैरेलल सिनेमा में नज़र आती थी 80s के सालों की अगर हम बात करें तो। काश, दृष्टि, लेकिन, रुदाली जैसी फिल्मों में ये नज़र आई और इन फिल्मों में भी इनके किरदार को बहुत ही पसंद किया गया क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी वर्सटाइल एक्ट्रेस है कि ये रोमांटिक रोल जितने अच्छे से करती है फैमिली ड्रामा भी उतने ही अच्छे से करती है और वहीं पर जो है

एक ऐसे किरदार की बात करें, एक ऐसे फीमेल कैरेक्टर की बात करें जिसे अपने आप को साबित करना हो, अपने अस्तित्व को साबित करना हो, तो ऐसे किरदारों में भी इन्होंने बखूबी अपने आप को दर्शाया। और रुदाली इस फिल्म की बात करें तो रुदाली इस फिल्म के लिए ये नेशनल अवार्ड ले गई थी और साथ ही फिल्म फेयर की ओर से क्रिटिक्स अवार्ड भी इन्हें मिला था। और चलिए रुदाली फिल्म की बात हो रही है तो ये गाना हो जाए आप सभी के नाम भूपेन हजारिका जी की आवाज़ में।

0: के सितारे।
1: ऐसे डिंपल कपाड़िया जी की बात करें तो इनका जो करियर रहा है काफ़ी जो है चैलेंजिंग रहा है। पहले ही फिल्म के बाद इन्होंने शादी कर ली और फिर शादी के बाद काफ़ी सालों तक जो है फिल्मों में इन्होंने काम नहीं किया, फिर कमबैक किया और वहाँ पर एक स्ट्रगल कि अपने आप को साबित करना। तो ऐसे में जो है कमबैक के बाद इनका जो स्ट्रगल था वो उतना आसान नहीं था। उस समय काफ़ी जो है रोल्स ऐसे इन्होंने किए जहाँ पर जो है काफ़ी सपोर्टिंग रोल्स में भी

नजर आई प्रहार, अंगार, गर्दिश, क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में, लेकिन जो भी रोल्स इन्होंने किए, जो भी किरदार इन्होंने निभाए, कहीं ना कहीं लोगों ने इनके हर एक किरदार को बहुत ही पसंद किया। ये अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि क्या कहे। और साथ ही यहाँ पर अगर हम उन फिल्मों की बात करें जहाँ पर इन्होंने, फिर एक समय ऐसा भी आया जहाँ पर ये कैरेक्टर रोल्स भी निभाने लगे 90s के सालों में, तो फिर चाहे रोल कैसा भी हो, कभी भी ये अपने काम से पीछे नहीं हटी हैं। जब वक्त था मेन एक्ट्रेस के रूप में काम करने का, तभी इन्होंने काम किया। फिर जब सपोर्टिंग रोल की बात आई, उन्होंने इस चैलेंज को भी बखूबी निभाया और वहीं पर कैरेक्टर रोल्स में भी ये आज भी हमें नज़र आती है काफ़ी फिल्मों में। अभी के लिए चलिए गर्दिश फिल्म की हमने बात की है, तो गर्दिश फिल्म का ये गाना हो जाए आप सभी के नाम। 93 में ये फिल्म आई थी, ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ नज़र आए थे।

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे के इस सेकंड आवर में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है, जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो सो मच। और आज आपके सितारे में वी आर टॉकिंग अबाउट डिंपल कपाडिया। टुडे शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे और इनके सभी फैंस की ओर से, इनके सभी चाहने वालों की ओर से इनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और जितने भी लिसनर्स आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आपको बता दें यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे विथ डिंपल कपाडिया। और चलिए यहाँ पर डिंपल कपाडिया जी की बात करें तो जाबाज इस फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं। जाबाज ये फिल्म 86 में आई थी, ऑब्वियसली फिरोज खान साहब की ये फिल्म थी। ऐसे इस फिल्म में और भी कई सितारे थे, जैसे फिरोज खान तो थे ही, साथ में श्रीदेवी थी, अनिल कपूर जी थे और अनिल कपूर जी के साथ थी डिंपल कपाडिया। इन दोनों के जोड़ी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी कमाल की थी। फिल्म जो है ड्रग एडिक्शन पर थी और फिल्म जो है लोगों ने बहुत ही पसंद भी की थी। और वहीं पर जो है डिंपल कपाडिया की बात करें तो अपने करियर के दौरान इन्होंने ऋषि कपूर साहब, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जी जैसे एक्टर्स के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया है।

0: के सितारे।
1: यकीनन अगर हम डिंपल कपाड़िया जी के करियर के बाद पहली ही फिल्म में इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, वहीं पर जो फिल्म 1973 बॉबी ये फिल्म आई थी, फर्स्ट ही फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। और कुछ सालों के बाद जब इन्होंने कम बैक किया 1984 में सागर इस फिल्म से, सागर इस फिल्म के लिए इन्हें 85 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें दिया गया। वहीं पर कई अन्य बड़े बड़े अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं, जैसे दृष्टि इस फिल्म के लिए इन्हें अवार्ड मिला है फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और वहीं पर फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें, रुदाली इस फिल्म के लिए ये काफ़ी अवार्ड ले गई थी फिल्म फेयर की ओर से, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें रुदाली इस फिल्म के लिए मिला था। वहीं पर फिल्म फेयर की ओर ही से रुदाली इस फिल्म के लिए बेस्ट क्रिटिक्स के अवार्ड से भी ये नवाजी गई थी। वहीं पर गर्दिश इस फिल्म में इनका किरदार लोगों ने बहुत ही पसंद किया गया था, लेकिन इस फिल्म के लिए नॉमिनेट हुए। वहीं पर क्रांतिवीर इस फिल्म के लिए 1994 में इन्हें फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। उसके अलावा कई अन्य फिल्मों के लिए नॉमिनेट हुई थी, जैसे कि दिल चाहता है, लक बाई चांस, दबंग, फाइंडिंग फैनी, सास बहू और फ्लैमिंगो। इन सभी फिल्मों में जो है इन्होंने सपोर्टिंग रोल किया था और इन सभी रोल्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। वहीं पर पठान इस फिल्म के लिए, जो अभी 2023 में इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस मतलब कि बेस्ट सपोर्टिंग रोल का जो अवार्ड है ये इन्हें मिला था पठान इस फिल्म के लिए 2023 में। चले अभी के लिए हो जाए 20 साल बाद फिल्म का ये तराना। ये फिल्म भी इनके करियर की काफ़ी कमाल की फिल्म रही है। ये नज़र आई थी ऑपोजिट मिठुन चक्रवर्ती। फिल्म की स्टोरी तो अच्छी थी, फिल्म के गाने भी बड़े लाजवाब थे।

0: आपके सितारे।
1: चलिए आपके सितारे डिंपल कपाड़िया जी की बात करें तो उनकी दो बेटियां हैं ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई थी, काफ़ी फिल्में उन्होंने की थी। बरसात इस फिल्म से इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी और ट्विंकल खन्ना ने शादी की अक्षय कुमार से। और अभी ट्विंकल खन्ना एक पॉपुलर राइटर बन चुकी है, उनके लिखे हुए किताबों को लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे उनकी दूसरी बेटी रिंकी खन्ना की बात करें तो वो भी फिल्म में नज़र आई थी, प्यार में कभी कभी इस फिल्म में वो नज़र आई थी। एक दो फिल्मों के बाद उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया, लेकिन इनकी जो पूरी फैमिली है वो फिल्मों से काफ़ी जुड़ी हुई है, फिल्मों से काफ़ी लगाव है। और अभी भी जो है हम आए दिन जो है डिंपल कपाड़िया जी को फिल्मों में देखते रहते हैं। शायद इनकी जो लास्ट फिल्म हमने देखी होगी वो 2024 में आई थी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। और OTT प्लेटफॉर्म पर भी इन्होंने जो है काम किया है, मर्डर मुबारक जैसी फिल्म में।

0: के सितारे।
1: चलिए इसी के साथ आपके सितारे जो प्रोग्राम है ये लगभग खत्म होने को चला। दो घंटे का आपके सितारे का जो सफ़र रहा यहाँ पर, इसमें आप जुड़े, गानों को आपने पसंद किया, प्रोग्राम को आपने पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारा आपके सितारे प्रोग्राम था डिंपल कपाटिया पर। टुडे शी इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे, सो एक बार फिर इनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे इनके सभी फैंस की ओर से, इनके सभी चाहने वालों की ओर से। और जाबाज फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ आज के इस आपके सितारे प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं। 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तैसे ही रेडियो मनोरंजन पर हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर। और रेडियो मनोरंजन पर यूँ ही साथ देते रहिएगा जब भी मौका मिले।

0: शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। सोमवार 8 जून 2026 सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। सुर्खियां इस प्रकार हैं। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ 22 आरोपों वाले मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस जांच में गंभीर खामियां पाई हैं और कहा कि मुकदमे को आगे बढ़ाना न्याय हित में नहीं होगा। डीपीपी कार्यालय ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का संकेत दिया। एज रेटिंग्स अफ्रीका की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस के सार्वजनिक वित्त में सुधार के संकेत मिले हैं, हालांकि ऊंचे कर्ज और वैश्विक अनिश्चितताएं अब भी चुनौती बनी हुई हैं, लेकिन सार्वजनिक खर्च पर बेहतर नियंत्रण से वित्तीय अनुशासन मजबूत हुआ है। मॉरिशस दुनिया का पहला ऐसा गन्ना उत्पादक देश बनने की ओर बढ़ा है जिसकी सभी चीनी कारखानों को बोंसिको सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा। ये प्रमाणन पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उत्पादन की गारंटी देता है। हाल ही में बोंसिको इंस्पायर अवार्ड्स 2026 में मॉरिशस सुगर सिंडिकेट को उसकी उल्लेखनीय पहलों के लिए सम्मानित किया गया। विदेश में दक्षिणी फिलीपींस में मिंडानाओ द्वीप के तट पर आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद कम से कम 32 लोगों की मौत, कई प्रांतों में 100 से अधिक लोग घायल, लगभग 2 दर्जन लोग लापता और सुरक्षा के तौर पर 10,000 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और अब पेश है समाचार विस्तार से। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ चल रही मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उन पर 5 लाख रुपए की सीमा से अधिक नकद भुगतान स्वीकार करने के मामले में 22 आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था, लेकिन अदालत का मानना है कि पुलिस जांच में गंभीर कमियों के कारण इस मुकदमे को आगे बढ़ाना न्याय की भावना के खिलाफ होगा। डीपीपी कार्यालय ने संकेत दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। बेथॉन लाजर्स के खिलाफ नए औपचारिक आरोप दर्ज किए गए हैं। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट एजेंसी के इस महानिदेशक को सेल्वी थर्मल पावर स्टेशन के पुनर्विकास के लिए डेनमार्क की कंपनी BWSC को ठेका देने की जांच के सिलसिले में 2020 में गिरफ्तार किया गया था। अब बंद हो चुकी आईकाक के महानिदेशक द्वारा इंटरमीडिएट कोर्ट में दायर पिछला मामला खारिज कर दिया गया है और डीपीपी के कार्यालय की सिफारिशों के बाद एक नया मामला शुरू किया जाएगा। ताविन तापेसो की रिपोर्ट पर विवरण आस्था गोबिंद चितावन।
1: 6 सितंबर 2020 को इंजीनियरिंग परामर्श कंपनी के निदेशक बेथॉन लाजर्स को आईकाक ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने डेनमार्क की कंपनी बर्मिस्टर और वेन स्कैंडिनेवियन कॉन्ट्रैक्टर यानी BWSC से लगभग 42 मिलियन रुपए प्राप्त किए ताकि 4.3 बिलियन रुपए की सेल्वी बिजली उत्पादन केंद्र पुनर्विकास परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट BWSC को मिल सके। इसके लिए मॉरिशस के अधिकारियों के समक्ष अपने प्रस्ताव का इस्तेमाल कर सके। इस मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 66 आरोपों के साथ प्रभाव के दुरुपयोग का एक आरोप भी दर्ज किया गया था। ये मामला पोर्टली इंटरमीडिएट अदालत की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन में दायर किया गया था। उस समय आईकाक को बेथॉन लाजर्स के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए डीपीपी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये अधिकार सीधे संस्था के महानिदेशक के पास था। इसके बाद 2025 में FCC ने आईकाक का स्थान लिया और करप्शन तथा वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभाली। उसी वर्ष फरवरी में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट में संशोधन किया गया जिसके तहत धोखाधड़ी और करप्शन से जुड़े मामलों में डीपीपी के अधिकारों को फिर से बहाल किया गया। इसी संदर्भ में गत 5 जून को पोर्टली इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष FCC ने बेथॉन लाजर्स के खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने की अर्जी दाखिल की। FCC के अनुसार इससे पहले डीपीपी कार्यालय आरोपी के खिलाफ नए और औपचारिक आरोप दर्ज कर चुका था। डीपीपी दफ्तर का मानना है कि पहले दायर किया गया मामला असंवैधानिक था क्योंकि उस समय लागू कानून के तहत संस्था के महानिदेशक को डीपीपी की सहमति के बिना ही मामला अदालत में ले जाने का अधिकार प्राप्त था। डीपीपी के अनुसार इस आधार पर बचाव पक्ष भविष्य में मामले को चुनौती दे सकता था, इसी कारण पुराने मामले को वापस लेकर नए सिरे से मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को पोर्टली इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन में होगी।
0: केयर एज रेटिंग्स अफ्रीका द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस का सार्वजनिक वित्त मजबूती की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उच्च कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएं अभी भी बजटीय संभावनाओं पर दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि एजेंसी ने सार्वजनिक खर्चों पर बेहतर नियंत्रण के चलते वित्तीय अनुशासन में सुधार दर्ज किया है। मॉरिशस दुनिया का पहला ऐसा गन्ना उत्पादक देश बनने की राह पर है जिसके पास अपनी सभी कारखानों के लिए बोसिको सर्टिफिकेशन होगा। ये आधिकारिक प्रमाण पत्र स्थिरता की गारंटी है जो इस बात की पुष्टि करता है कि इसकी पूरी उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के अनुकूल है। स्थानीय स्तर पर की गई पहलों के रंग लाने का प्रमाण ये है कि पिछले सप्ताह बोसिको इंस्पायर अवार्ड 2026 में चीनी सिंडिकेट की जमकर सराहना की गई। मीगान पुनापा नायकन, आस्था गोविंद तमन।
1: पिछले 5 वर्षों से अल्तियो की चीनी मिल और उसके प्रबंधन के तहत आने वाली लगभग 3000 हेक्टेयर गन्ना खेत बोसिको सर्टिफिकेशन के दायरे में है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन टिकाऊ, जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल चीनी उत्पादन की मान्यता देता है। वर्ष 2024 के अंत तक कंपनी के सभी गन्ना खेतों को ये प्रमाणन प्राप्त हो चुका था। अल्तियो के अनुसार ये प्रमाणन इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी की चीनी उत्पादन प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण, सुशासन, जिम्मेदार कार्य प्रणालियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अच्छी कृषि पद्धतियों की ये गारंटी चीनी खरीदने वाली कंपनियों के बीच काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओमनिकेन मॉरिशस ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की पहली चीनी मिल थी जिससे ये प्रमाणन प्राप्त हुआ था। कंपनी के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल थी। इस प्रमाणन ने जल प्रबंधन, गन्ना खेती और उत्पादकता के सेक्टर में बेहतर कार्य प्रणालियों को बढ़ावा दिया है। साथ ही इसने मॉरिशस की चीनी को वैश्विक बाजार में एक अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा प्रदान की है। सीमित उत्पादन क्षमता के बावजूद ये प्रमाणन मॉरिशस को उच्च किस्म वाली और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरने वाली चीनी के विश्वसनीय उत्पादक के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहा है। मॉरिशस में हर वर्ष लगभग 2,20,000 टन चीनी का उत्पादन होता है जिसमें से करीब 70,000 टन चीनी वर्तमान में बोसिको प्रमाणित है। ये आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ सकता है क्योंकि तेगा इस वर्ष अपने अंतिम ऑडिट की तैयारी कर रहा है ताकि उसे

ही ये प्रमाणन प्राप्त हो सकी। मॉरिशस शुगर सिंडिकेट का कहना है कि हाल ही में बोंसिको अवार्ड्स में प्राप्त बेस्ट वैल्यू चेन इनिशिएटिव अवार्ड ने देश और उसके चीनी उद्योग की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में खरीदार किस्म, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ उत्पादन से जुड़े सर्टिफिकेशन को पहले से कहीं अधिक

0: देशों की कंपनियां और चीनी मिलें बोंसिखो प्रमाणन प्राप्त कर चुकी है। मॉरिशस का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 के अंत तक देश के कुल चीनी उत्पादन का 50% हिस्सा बोंसिखो प्रमाणित हो जाए।
1: एक पवित्र स्थान जो आध्यात्मिकता और ध्यान प्रार्थना का प्रतीक है, गंगा तालाब हर दिन हजारों आगंतुकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल ही में हुई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थल पर आने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रस्तावित उपायों की समीक्षा करने के लिए कला और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में आज इस स्थल का दौरा भी किया गया। इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेष रूप से जेरियाट्रिक्स के क्षेत्र में, पिछले मार्च महीने में SSRN अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष वार्ड्स के उद्घाटन के बाद वहां के दैनिक कामकाज का जायजा लिया गया। इन एक्यूट केयर ऑफ एल्डरली वार्ड्स को खोलने का उद्देश्य हमारे बुजुर्गों को विशेष उपकरणों के साथ बेहतर देखभाल प्रदान करना है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चिकित्सा कर्मियों को लगातार दी जाने वाली ट्रेनिंग पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। नीले अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून फिलहाल तैयार किया जा रहा है, और मॉरिशस के नागरिकों को समुद्र के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ साथ मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों के समुद्री संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तरह ब्लू इकोनॉमी मंत्री ने ये घोषणा की। डॉक्टर अरविंद बुलेल आज 8 जून को मॉरिशस ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट द्वारा इंस्टीट्यूट फ्रांसे दे मॉरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस के उत्सव में भाग ले रहे थे। बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी हैं, जो 2 महीने पहले शुरू हुए युद्ध विराम के बाद से अब तक का सबसे गंभीर तनाव है। विदिमा सिबुरन।
2: इसराइल ने पश्चिमी और मध्य ईरान में हवाई हमले किए हैं। इससे पहले ईरान ने उत्तरी इसराइल पर मिसाइलें दागी थीं। 2 महीने पहले युद्ध विराम लागू होने के बाद ये पहली बार है जब ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के क्षेत्र पर हमले किए हैं। तेहरान में नए धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इससे पहले इसराइल ने कहा था कि उसके दर्जनों लड़ाकू विमानों ने ईरानी रक्षा प्रणालियों पर हमले पूरे कर लिए हैं। ये हमले ईरान पर इसराइली हमलों के बाद हुए हैं, जिसमें तेहरान, तबरीज और इस्फहान में धमाकों की खबरें मिली है। ये तनाव तब और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ने कहा कि शहर के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्ला के ठिकानों पर किए गए वे हमले हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के जवाब में थे।
1: फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आने से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि 200 से अधिक अन्य लोग घायल हुए हैं। एक बार फिर से विधिमा सिबुरन का विवरण पेश है।
2: इस भूकंप के कारण इंडोनेशिया और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई और लोगों से देश के सुरक्षित स्थानों की ओर जाने या ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के लिए कहा गया। मिंडानाओ देश के सबसे दक्षिणी द्वीपों में से एक है, और ये भूकंप इसके दक्षिणी छोर पर जनरल सांतोस से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आया। जनरल सांतोस 7 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है, जहां कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 130 अन्य लोग घायल हो गए। जनरल सांतोस में फिल्माई गए एक वीडियो में एक छोटी इमारत को ढहते हुए देखा गया, और वहां के अधिकारियों ने बताया कि वे नुकसान और घायलों की रिपोर्ट का आकलन कर रहे हैं। वे एक ढहे हुए स्कूल में कुछ छात्रों के फंसे होने की खबरों की भी जांच कर रहे हैं। अन्य मौतें मलबे गिरने, एक मस्जिद को नुकसान पहुंचने और सारंगानी, दक्षिण कोटाबातो और दावो ऑक्सीडेंटल के दक्षिणी प्रांतों तथा बालूत द्वीप पर हुए भूस्खलन के कारण हुई।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में जो आग लगी थी, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। उधर केरल के उत्तरी जिलों में भारी वर्षा से तबाही मची हुई है। 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन पर तथा कुछ अन्य खबरों पर पेश है ये रिपोर्ट।
2: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा लंदन में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद रूस और यूक्रेन ने घातक हवाई हमले किए हैं। सोमवार तड़के यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी ज़ापोरिज़्या

0: क्षेत्र में एक रूसी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास खर्च हो चुके परमाणु ईंधन के एक भंडारण केंद्र को जानबूझकर निशाना बनाया। इस हमले से ईंधन प्राप्ति इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम को न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन के अंदर चाकूबाजी की घटना में 6 लोग घायल हो गए। हमले के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने रविवार को पुष्टि की कि मालविया नगर के एक होटल में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जब एक और विदेशी नागरिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। केरल विशेषकर उत्तरी इलाकों में शनिवार को भारी बारिश के कारण हुए हादसों, जमीन धंसने और इमारतें गिरने से 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग द्वारा और गंभीर मौसम की चेतावनी के बाद प्रभावित इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। बर्लिन के हिंदू समुदाय ने श्री गणेश मंदिर के भव्य उद्घाटन के साथ एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए भक्त प्रार्थनाओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ एकत्रित हुए। उम्मीद है कि ये मंदिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो सामुदायिक संबंधों को मजबूत करेगा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा।
1: और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां, जो इस प्रकार हैं। मस्कारेंस के दक्षिण में एक काफ़ी ज़ोरदार आंटी साइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर मामूल हवा की लहर चल रही है। कमज़ोर दबाव वाली हवा के साथ जो बादल जुड़े हुए हैं, वे रह कर हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करते रहेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह के दौरान आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रह कर बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से ऊंचाइयों पर। दोपहर बाद में मौसम सुहाना रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी एवं दक्षिणी लगून में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 26 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:37 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:40 पर सूर्योदय।

0: और इससे पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि एक पवित्र स्थान जो आध्यात्मिकता और ध्यान प्रार्थना का प्रतीक है, गंगा तालाब हर दिन हजारों आगंतुकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल ही में हुई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थल पर आने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रस्तावित उपायों की समीक्षा करने के लिए कला और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में आज इस स्थल का एक दौरा भी किया गया। इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अनाबेल फुलबे की रिपोर्ट पर पेश है विवरण आस्था गुबिन चितामन के साथ।
1: हर दिन गंगा तालाब हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मॉरिशस के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इस आध्यात्मिक तीर्थ स्थल की दिव्यता और धार्मिक महत्व को अनुभव करने यहाँ पर आती है। लगभग 300 मंदिरों और करीब 50 धार्मिक संगठनों से जुड़ा ये स्थल देश के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है, लेकिन हाल में यहाँ हुई कुछ घटनाओं ने इस पावन स्थल की मर्यादा, पर्यटकों के आचरण और धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान को लेकर चिंताओं को फिर से जन्म दिया है।
2: Maurice n'est un pays multiculturel, nous n'avons beaucoup lieu de culte comme ça, on dit pas c'est un grand bassin mais il porte dans le pays que nous pouvons un minimum de respect. Et aussi dit pas ce respect touriste bien respecté, c'est pas les mauriciens eux même qui bien respecté que ce soit vestimentaire, tu dis pas
1: स्थिति को देखते हुए नेशनल हेरिटेज फंड ने आगंतुकों के लिए दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला तैयार की है, जिसका उद्देश्य दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाना और गंगा तालाब की पवित्रता को अक्षुण बनाए रखना है। इन प्रस्तावों को हाल ही में संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया

0: गया है और इनके जल्द लागू होने की संभावना है।
1: Nous en consultation avec tous ban association qui n'a pas de liste ici qui se occupe sa place là parmi les ban représentation c'est qui besoin d'un trust et nous envie faire un trust qui sérieux pour ensemble nous vous donner un coup de main mais trust là pour gérer pas PMO.
0: ये प्रस्ताव शीघ्र ही मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा ताकि ये पवित्र तीर्थ स्थल आगे भी अपनी परंपराओं, मूल्यों और श्रद्धा के वातावरण के साथ आगंतुकों का स्वागत करता रहे।
2: ब्लू इकोनॉमी पर एक नया कानून फिलहाल तैयार किया जा रहा है और मॉरिशस के नागरिकों को समुद्र के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ साथ मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों के समुद्री संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी मंत्री ने ये घोषणा की। डॉक्टर अरविंद बुलेल आज 8 जून को मॉरिशस ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट द्वारा लिंस्टिट्यूट फ्रांसे मॉरिस के सहयोग से आयोजित विश्व महासागर दिवस के उत्सव में भाग ले रहे थे।
3: धरती का नीला फेफड़ा कहा जाने वाला महासागर हमें पोषित करता है, हमारी रक्षा करता है और हमारे जीवन का आधार है। 8 जून को EFM में एक फिल्म के प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों को समुद्री जंतुओं और व्यापक रूप से महासागर की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
4: Pour moi, c'est important comme si de protéger, venir avec des lois et des paramètres de sécurité pour protéger l'eau.
5: Imaginez-vous, vous offrez de la plage, de la mer, l'environnement tropical, mais sans les poissons. C'est difficile de vendre un produit comme ça, surtout si c'est à l'international.
6: Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas par rapport à l'océan et les importances, la valeur de l'océan, surtout pour notre petite île.
7: Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y avait des problèmes dans l'océan et aussi qu'on va prendre des mesures et mettre des règles importantes pour préserver l'océan et nos poissons.
8: C'est nous là, la future génération, et la mer surtout va nous aider, va beaucoup nous aider. Ça crée beaucoup de travail.
3: विश्व महासागर दिवस के मौके पर मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट ने समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समुद्री संसाधनों का एक मानचित्र तैयार करने की घोषणा की। MOI के निदेशक डॉक्टर डैनियल माही ने कहा, बहुत खोज करते हैं जो संरक्षण से संबंधित हैं, काफ़ी समय लगता है और संसाधन भी लगते हैं, खासकर फंड। EFM के निदेशक ने कहा, इस तरह की गतिविधियों से महासागर के महत्व को दर्शाते हैं। हमारे लगून में मछलियों की घटती संख्या को देखते हुए अधिकारियों का मानना है कि टिकाऊ समाधान खोजना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। ब्लू इकोनॉमी मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने कहा, 14 बिलियन रुपए की लागत के चूना का निर्यात करते हैं, यानी कि हमारे कुल निर्यात के 20% हम लगून से बाहर एक्वाकल्चर करने पर काम कर रहे हैं। जो रुचि रखता है औद्योगिक मछलीमार के लिए, वो लाइसेंस लेकर आगे आ सकता है। गहरे समुद्र में मछलियां हैं। मंत्रालय इस रणनीतिक क्षेत्र के विकास को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पर भी काम कर रहा है। ये दिन जागरूकता और ठोस कार्रवाई के तहत मनाया गया।
2: और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से जेरियाट्रिक के क्षेत्र में पिछले मार्च महीने में SSRN अस्पताल में बुजुर्गों के लिए विशेष वार्ड्स के उद्घाटन के बाद हमारी एक टीम ने वहां एक दैनिक कामकाज का जायजा लिया। इन अक्यूट केयर ऑफ एल्डरली वार्ड्स को खोलने का उद्देश्य हमारे बुजुर्गों को विशेष उपकरणों के साथ बेहतर देखभाल प्रदान करना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चिकित्सा कर्मियों को लगातार दी जाने वाली ट्रेनिंग पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। रिया रामभोजन की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू।
3: डायबिटीज के इलाज के लिए भर्ती की गई 67 वर्षीय ये मरीज आज अपने घर लौट रही हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिन इस खास इकाई में बिताए।
9: सुबह नर्स, एफएमए, डॉक्टर, मेड, टू बियन जांची, इन बियन पामा को, देवी मन विनी बनान बियन गेट मा।
3: 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के इन मरीजों की देखभाल के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है, अधिक ध्यान और कभी कभी अधिक धैर्य की भी जरूरत। नर्स प्रिसिला चिनापियल ने कहा, ज्यादातर मरीज बिस्तर पर रहते हैं, उनकी देखभाल, उनसे बातचीत,

0: हंसी मजाक भी करते हैं। वार्ड मैनेजर लेखना तेलंगर ने कहा, उन्हें स्नान कराते हैं, उन्हें आराम दिलाते हैं। इन मरीजों की देखभाल के लिए नर्सों की टीम के अलावा विभिन्न विशेषज्ञों की एक टीम भी है। इसमें जेरियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और फिजियोथेरापी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। दूसरों की सेवा, खासकर बुजुर्गों की देखभाल, एक ऐसा पेशा है जो लगातार विकसित हो रहा है। इसी कारण चिकित्सा कर्मियों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता है। हर सप्ताह इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर शिव सिगोबी ने कहा,
1: pour donne les soins médicaux mais pour faire ça avec beaucoup l'empathie nous mettre beaucoup l'accent sur la communication
0: sabse pehle manav pehlu hain staff prashikshit hain hum samvad aur karuna bhav par bal dete hain ye sunishchit karte hain ki puri team ko prati saptah antarrashtriya manakon ke anukool gyan prapt ho बढ़ती वृद्ध जनसंख्या को देखते हुए जेरियाट्रिक सेवाएं पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। पॉम्पलेमुस के एसएस ओरन अस्पताल और फ्लाक के साज अस्पताल के बाद जल्द ही देश के अन्य 3 इलाकाई अस्पतालों में भी इसी प्रकार के विशेष वार्ड स्थापित किए जाएंगे।
2: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों लुदोविक और नेतुषा को। कुछ ही समय में शोक समाचार। रॉयल रोड शो में ग्रेनियर में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड की बीबी फरीदा भातू, बीबी फरीदा भातू पैदाशी नाम फादा, जो फरीदा नाम से भी जानी जाती थी, का अंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात सवा आठ बजे उनके बेटे जनाब रियाद भातू के मकान रॉयल रोड शुमेघनिये से उठाकर दफनाने के लिए कौशालो शुमेघनिये का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फनरल टुडे एट 8:15 PM। क्लेफो नंबर तीन वाकवा में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड की श्री कृष्णा लक्ष्मणन जो मैन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर क्लेफो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। बैनिकाले नंबर दो ग्लेनपॉग वाकवा में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमित्राबाई भाऊ पैदाशी नाम लक्ष्मो, जो मानती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी अगले मंगलवार सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर बैनिकाले नंबर 2 ग्लेनपॉग वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 9:30 AM। नंबर 60 कैल्डरन रोड रेटनस्टोन ईस्ट लंदन इंग्लैंड में बहत्तर साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र रोचाया जो रॉय नाम से भी जाने जाते थे और पहले टैगोर रोड फूंजिसक रहते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उनका अंतिम संस्कार अगले बुधवार 10 जून को दिन के 1:30 बजे ईस्ट लंदन इंग्लैंड में ही किया जाएगा। शोकग्रस्त परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.

0: सोमवार 8 जून घड़ी मिला लीजिए शाम के 6:30 बज रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का, आप सभी लिसनर्स का स्वागत है। मैं हूँ सुमी और यहाँ पर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर रात के 9 बजे तक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक है और रेडियो मनोरंजन पर जुड़े हुए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। नई सोच ये प्रोग्राम जो है यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक चलेगा नई सोच ये प्रोग्राम और 7 से 9 बजे के बीच आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को। तो बस साथ देते रहिए, यूं ही हमारा खूबसूरत गाने तराने और बेहतरीन प्रोग्रामों के ज़रिए ऐसे ही हम भी यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं रात के 9 बजे तक।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: नहीं सो।
1: यकीनन सरहदों की बात करें तो दिलों में कैसी सरहदें और एहसासों में कैसी सरहदें, हमारे जो जज्बात है उसमें कैसी सरहदें, जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को अपनाते हैं, उसमें कहाँ पर सरहदें मायने रखती हैं। उसमें तो बस नज़दीकियाँ मायने रखती है, एक दूसरे के एहसास मायने रखते हैं, एक दूसरे के जज्बात मायने रखते हैं। और जब हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के जज्बातों की कद्र करते हैं, तो ऐसे में रिश्ते जो है और भी मज़बूत होते हैं। और यहाँ पर हमारा और आपका ये जो रिश्ता है, इन गानों के ज़रिए जुड़ा हुआ है और इन खूबसूरत प्रोग्रामों के ज़रिए जुड़ा है। इतने प्यार से आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप सभी के नाम ये अगला तराना हो जाए केके की आवाज़ में।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: यकीनन ये जो वक्त है, ये जो समय है, जो भी नाम दे इसे, ये जाते जाते हमसे बहुत कुछ ले जाता है, जाते जाते हमारे इन खूबसूरत पलों को ले जाता है, जाते जाते हमारे इस आँच को ले जाता है, जाते जाते हमारी इस उम्र को ले जाता है, हमारे कई सपने, हमारी कई उम्मीदें चली जाती हैं। कहते हैं ना कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, और समय के साथ हमें भी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए समय हुआ है कि हम बढ़े आज के इस आखिरी गाने की ओर। जी हाँ, आखिरी गाना जिसके साथ जो है आज का ये जो नई सोच प्रोग्राम है ये ख़त्म हो जाएगा। आपका प्यार भरा साथ हमें आज भी मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे आपके मुलाकात जो है ये जारी रहने वाली है, क्योंकि 7 बजे से शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की। डेडिकेशंस आपके जो है अभी से ही बरस रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी ही देर में हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे, जहाँ पर आपसे लाइव इंटरेक्ट हम आपसे जुड़ेंगे। तो बस आगे भी ऐसे ही साथ देते रहिए हमारा।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Monday, 8th of June, घड़ी मिला लीजिए, शाम के 7 बज रहे हैं.
4: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज.
5: You're listening to RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज।
1: चलिए मंडे 8th of June घड़ी मिला लीजिए शाम के 7:08 रेडियो मनोरंजन पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। दिलों की आवाज इस प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं आपके साथ। रात के 9 तक आपका साथ हम देने वाले हैं। हमें पता है आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आज का दिन भी अच्छे से बीता होगा। और आज ठंड थोड़ी ज्यादा है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन

मौसम चाहे जैसा हो, यहाँ पर खूबसूरत गानों का जो कारवा है वो जारी है, चलेगा रात के 9 बजे तक। और चलिए यहाँ पर बदलते मौसम में आप अपना ख्याल रखिए और आपके एंटरटेनमेंट, आपके मनोरंजन के लिए हम तो है ही। और अगर किसी के नाम कोई खूबसूरत सा तराना करना चाहते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें 5250600 पर। और साथ ही थोड़ी देर में हम

जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठा

0: खुशियों की आवाज़।
1: यकीनन बातें तो यहाँ पर हो ही रही हैं, हमारी और आपकी बातें, वो भी आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपकी फरमाइशों के जरिए। और देखते ही देखते शाम के 7:22 भी ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसे गाने चलते हैं, इतने खूबसूरत तराने चलते हैं, तो समय का अंदाज़ा ही नहीं होता है ना, यानी कि कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चलता। तो चलिए, यहाँ पर आप सबका प्यार भरा साथ मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकवा से वी हैव सुदेवी जी जो हमारे साथ जुड़ी है। गुड इवनिंग आपको भी सुदेवी जी, कैसी है आप? एंजॉइंग द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। अगला गाना आपकी दीदी लालिता के नाम, जो इस समय त्रियोले से हमारा साथ दे रही है सभी कुशल फैमिली के लिए। आत्माराम भैया मालिंगा से है, कृषय कृषिका कृष्णी लक्षिका सभी राम रतन परिवारों के नाम ये अगला तराना। सपने साजन के फिल्म का ये जो गाना है, कुमार सानू अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में, ये दुआ है मेरी रब से। तो चलिए, खूबसूरत सा तराना आपके नाम भी हम करते हैं सुदेवी जी, थैंक यू सो मच।

रेडियो मनोरंजन और इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी हैं और जुड़ते ही हमारे साथ कितने सारे हमारे फॉलोअर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग आप सभी को भी जहां के से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, बताइएगा कि कहां कहां से आप हमें फॉलो कर रहे हैं, कहां से हमें देख रहे हैं, दिन कैसे बीता ये भी बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। उदित नारायण, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ों में जानवर फिल्म का ये जो खूबसूरत सा गीत है, जाता है यहाँ पर गुलशन जी आपके नाम। आप अपने पापा को याद करते हुए आपने इस गाने की रिक्वेस्ट की है। गाना खासकर आपके पापा के नाम, आपके मामा प्रभा के लिए, आपकी सिस्टर दीक्षिता के लिए, लवली एंजल आयशा के नाम, सभी बोला फैमिलीज के नाम। यकीनन अपने चले जाते हैं लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहती है और कभी कभी इन यादों के सहारे ही ज़िंदगी कट जाती है। तो चलिए सभी अपनों को हम याद कर रहे हैं इन खूबसूरत गानों के ज़रिए। आप अपने डेडिकेशंस, अपनी फरमाइशें बेशक हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5250-6200 पर। इस समय टिकटॉक पर हम लाइव भी हैं, वहां पर भी आप हमारे साथ अपनी डेडिकेशंस कर सकते हैं।

0: दिलों की आवाज।
1: चले गाने तराने ऐसे हैं जिन्हें सुनकर वाकई में दिल को चैन आएगा, वाकई में दिल को सुकून आएगा, क्योंकि दिलों की आवाज इस सेगमेंट में ज्यादातर हम रोमांटिक सूदिंग गाने चलाते हैं। दिन भर सभी काम से घर अभी लौटे हैं, अभी अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, तो चलिए डिनर करते करते साथ दे रहे हैं आप सभी को बन अपेक्षी शुभ आहार हम कहेंगे। और ऐसे गाने जो है शाम के वक्त सुनो तो मानो दिन भर की थकावट जो है अपने आप दूर हो जाती है ना। तो चलिए, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपको, कल आपने अपना बर्थडे मनाया, विशिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस। वी हैव डानुई जगरू गुडलैंड से हमारा साथ दे रहे हैं। हेलो मिमी, कैसी है आप? किरण रामपुल जी, हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक है। माला जी, आपके भी प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। अगला गाना प्रकाश और मेधा, आप दोनों के नाम हम करते हैं। पद्मिनी कंदास्वामी जी, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड बेलिया से वी हैव बापश्री, थैंक यू सो मच। वी हैव गीता कालीचंद जी, और अगला तराना कलाकार फिल्म का ये गीत है, किशोरदा की आवाज़ है। शालिनी जी आपके नाम जाता है, रवि जी आपके लिए, और साथ में नीरव के नाम। विनोद ठाकुर जी, शुक्रिया गानों को पसंद करने के लिए। सरिता जी नमस्ते, कैसी है आप सरिता जी? इस्माइल बिल्किस, और आपका भी हम वेलकम करते हैं। शी, गुड इवनिंग, कैसी है आप? तो चलिए, खूबसूरत सा तराना किशोरदा के सभी फैंस के नाम।

0: दिलों की आवाज की आवाज।
1: चलिए, अच्छा लगता है ना जब कोई हमारी दिल की आवाज को सुन पाए, हमारी दिल की बातों को समझ पाए, या बिन कहे हमारे जज्बातों को समझ पाए। तो चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो तराना है, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना है, तेरे इश्क में नाचेंगे। और ये जो गाना है खासकर स्वेनल आपके नाम हम करते हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। गाना जाता है भाई श्रवण भाभी कृति, साथ में अभिनव है, कियान है, नव्या है, तिलक फैमिली के लिए, आजी हंसनी और मेरे लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे हमारे जो टिकटॉक के फॉलोअर्स है इस समय हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। सो जितेन जी, ये गाना आपके लिए। माला जी फ्लाक से साथ दे रही है, आपके नाम भी। कविता जी, दिस वन इज़ फॉर यू। माला जरी जी पेचित्रित्रित से हमारा साथ दे रही है। साउथ अमेरिका से रॉबी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच रॉबी। तो चलिए, ये गाना आप सभी के नाम हम करते हैं, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का तराना।
0: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: सो चलिए, दिस इज योर दिलों की आवाज। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का तराना भी आप सुन रहे थे, तेरे इश्क में नाचेंगे। और क्या आप लोगों ने राजा हिंदुस्तानी ये फिल्म देखी है? इसमें आमिर खान थे, करिश्मा कपूर थी। फिल्म के सभी गाने बहुत ही कमाल के थे। एक बहुत ही मतलब कि ये जो फिल्म है, बबीता मतलब कि करिश्मा कपूर की माँ जो थी बबीता, उन्होंने शशि कपूर साहब के साथ एक फिल्म की थी। फिल्म का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये जो फिल्म है, ये स्टोरी लाइन दोनों फिल्म की लगभग सेम ही थी। और जितनी बखूबी से एक्टिंग शशि कपूर और बबीता ने की थी, उतनी ही खूबसूरती से इस फिल्म में जो है राजा हिंदुस्तानी में इन दोनों ने एक्टिंग की थी, आमिर खान और करिश्मा कपूर ने, है ना। और मुझे अगर राजा हिंदुस्तानी फिल्म की बात करें तो परदेसी परदेसी जाना नहीं ये गाना बहुत अच्छा लगता है। आप बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। चलिए, अभी के लिए खूबसूरत गानों की ओर हम बढ़ते हैं। हेमा जी साथ दे रही हैं। सैयारा फिल्म का ये जो गाना है, हेमा जी आपके नाम हम करते हैं। और विनोद ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंग्लैंड से यश हमारा साथ दे रहे हैं रिविजी रोंपो से देव और एंजल, ये गाना आप दोनों के नाम हम करते हैं। वाकवा से हमारे साथ जुड़ी है वीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यही गाना जाता है क्रीता और अजागेन आप दोनों के लिए। वी हैव जेवीना क्वेश्चन, एक बाजीगर भी हमारे साथ जुड़े हैं जो फिजी से हमारा साथ दे रहे हैं। वी हैव जितेन, वी हैव बब्बू, जिया अनंत, आतिश, नंदा, जय पोटलुइस से साथ दे रहे हैं, धनजय है, पूनम है ग्रांगुप से, और जितने भी सुनने वाले साथ दे रहे हैं। सैयारा फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए चल पड़ा। सो दिस इज़ योर दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन, और मैं हूँ सुमी, आप सभी का साथ दे रही हूँ। रात के 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है।

0: चलिए सैयारा फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक उन सभी के नाम जो सैयारा इस फिल्म को तो पसंद करते ही है साथ ही इस फिल्म के गानों को भी पसंद करते हैं।
1: दिलों की आवाज की आवाज
0: मंडे 8 ऑफ जून घड़ी मिला लीजिए रात के 8 बज रहे हैं। दिलों की आवाज के सेकंड आवर में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। ऐसे पिछले सैटरडे हम ब्लू बे गए थे जहां पर हमारे रेडियो की पूरी टीम थी, वहां पर आप लोग हमारे साथ आए थे मिलने, यहां पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब भी हम आउटडोर प्रोग्राम करने जाते हैं और आप सभी वहां पर हमसे मिलने आते हैं। हमने फैमिली बीच फन डे मनाया था, मदर्स डे सेलिब्रेट किया था, वहाँ पर हमारे सारे जितने भी हमारे जो है हमारे सुनने वाले हमारे साथ आए थे, बहुत सारे गेम्स थे, बहुत सारे गिफ्ट्स थे। आप लोगों ने 3 घंटे के शो को बहुत इन्जॉय किया, थैंक यू सो मच इसके लिए। तो चलिए ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलता रहे। अभी के लिए यहाँ पर हमारे साथ जो है ललिता जी कालबास से साथ दे रही हैं, उनकी प्यारी बेटी चांदनी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। चांदनी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको, बेस्ट विशेस, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मामा ललिता की ओर से, आपके हस्बैंड विमल की ओर से, साथ में विष्णवी है, बहने हैं, भाई है, सभी फैमिलीज की ओर से। और जानम समझा करो फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना चांदनी आपके नाम।

0: चलिए जानम समझा करो फिल्म का ये तराना। ये जो फिल्म है पिक्चराइज्ड हुई थी सलमान खान पर, साथ में थी उर्मिला मातोंडकर। और चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले गाने की ओर।
1: दिलों की आवाज की आवाज।
0: अगला जो गाना है चांद से पर्दा कीजिए, आओ प्यार करें फिल्म का ये तराना है। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने इस गाने की फरमाइश की थी, शायद एस के जरी जी आपने, है ना। तो चलिए गाना आपके नाम हम करते हैं। राशना कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। कवि है, शिरीष है, दिनेश गोपी जी आपका भी वेलकम हम करते हैं। राजीव जी कैसे हैं आप, हाय मीता। लाफ्लोरा से सुनील जी और नंदा जी हमारा साथ दे रहे हैं। ट्रियोले से एंजल हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना आपके सभी दोस्तों के नाम, वी हैव पूर्णिमा, यही गाना जाता है सभी दोस्तों के नाम। खुशी है, ध्रुव है, आहाना है, रिया है, जो बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। ग्रीस से हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, साथ में सुनीता जी भी हमारा साथ दे रही हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स जो हैं अलग अलग कोनों से जुड़ते हैं। तो शुक्रिया विमल तपसी जी, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक है। बाला सिंगम जी, वी हैव माया रामदोस, वी हैव रोशन, रुमाइसा, सुनील, शिबू, अगला गाना आपके नाम वाइफ पूर्णिमा की ओर से। और बेटी के नाम भी आपने लिखा बर्थडे है, लेकिन किसका बर्थडे है आपने ये नहीं बताया। तो चलिए जिनका भी बर्थडे है उनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की ओर से। वी हैव आशा एंड वी हैव आशा भी, आप दोनों का भी वेलकम हम करते हैं। उत्तम जी शुक्रिया साथ देने के लिए, हम बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक हैं। तैयब बोला जी कैसे हैं आप, आशा करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर हमारे साथ रोहित

राफिक मोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राफिक जी, ऐसे तो इस प्रोग्राम में हम पुराने गाने नहीं चलाते हैं, लेकिन ये जो अगला तराना है आपके नाम हम करते हैं। राफिक मोहित, आपके नाम, बेनी के नाम, तयाक से सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो ये गाना चल पड़ा आओ प्यार करे इस फिल्म से लिया गया। चांद से पर्दा कीजिए।

0: दिलों की आवाज,
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए और जितने भी हमारे फॉलोअर्स टिकटॉक पर इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं, अपने डेडिकेशंस हम तक पहुंचा रहे हैं। चलिए वी हैव सबिता जी, आप साथ दे रही हैं यहाँ पर, हस्बैंड विनय, बेटियों के नाम गाना जाता है शकीला की ओर से। रीना जी, बिल्किस जी हमारे साथ जुड़े हैं, किशन, रेहान, मामा और विनोद के नाम ये अगला तराना। कनाडा से रोजी हमारे साथ जुड़ी है, रोजी आपके भी, आपका भी वेलकम हम करते हैं। वी हैव मनु, थैंक यू सो मच हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए। रिया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। विमल जी, आपका भी शुक्रिया। मिस्टर बी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, आपको भी हम नहीं भूले हैं। मिंटा है। वी हैव स्वाति जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वाति जी, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगी। एंड विक्की साहाजू, प्लीज़ प्ले खूबसूरत सॉन्ग। ऑल राइट, कौन सा, मतलब कि आप खूबसूरत मूवी का गाना मांग रहे हैं या कोई खूबसूरत सा गाना मांग रहे हैं, मैं नहीं समझी। तो चलिए इस अगले खूबसूरत फिल्म के गाने को आपके नाम हम करते हैं। अगला गाना एंजल, आपके नाम, आपकी मामा उमिला सुकन के नाम। ग्रांगप से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो माधुरी जी, कैसी हैं आप, उम्मीद करते हैं अब आप बिल्कुल ठीक हैं। पूनम, हमने आपका नाम लिया, हम आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हैं। ये अगला गाना आपके भी नाम करते हैं, ऐसे आप भी बड़ी खूबसूरत है। सही, जो खूबसूरत फिल्म का गाना है आपके नाम हम करते हैं। एलएफसी, कैसे हैं आप, ठीक तो है ना एलएफसी। ये अगला गाना आपके लिए भी चल पड़ा, अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर चलिए इसी गाने को आप सभी के नाम हम करते हैं।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: यकीनन गाने तराने इतने खूबसूरत है कि क्या कहे, गानों को सुनते सुनते समय का पता ही नहीं चल रहा है, है ना। तो चलिए ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो तराना है वो है दिल का क्या कसूर, इस फिल्म से लिया गया, मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना। ये जो गाना है जाता है आपके नाम। रिहाना फिनिक्स से हमारा साथ दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा हमारा साथ देती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस, काफ़ी दिनों बाद आपका मैसेज हमें मिला, हमें भी आप लोगों से मैसेज मिलते हैं, आप लोगों से बात होती है तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर गानों का ये जो सिलसिला है इसे हम आगे ले जाते हैं और ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम हम करते हैं। दिल का क्या कसूर फिल्म का ये गाना आशा जी और कुमार सानू जी की आवाज़ों में।

0: अदा तो टूट जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा तराना था, दिल का क्या कसूर इस फिल्म से लिया गया। अब इस फिल्म में दिव्या भारती नजर आई थी, लेकिन उस एक्टर का नाम हम हमेशा भूल जाते हैं। अगर आप लोग, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे टिकटॉक पर हमें देख रहे हैं, अगर आपको दिल का क्या कसूर फिल्म के एक्टर का नाम पता है तो हमें बताइएगा ज़रूर। ऐसे आप लोगों ने क्या ये फिल्म देखी है? तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले गाने की ओर। किसी ने यहाँ पर, हमारे एक फॉलोअर ने, क्रिमिनल फिल्म के गाने की फरमाइश की थी। कहता है ये गाना उनके नाम और उनके हस्बैंड के नाम। तो अगला गाना आपके नाम और आपके हस्बैंड के नाम हम करते हैं, शायद अश्विनी जी थी। और राइट, माया सेजल वेदिका हमारे साथ जुड़े हैं। कादिराज सिबलाग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इटली से रामिनी हमारा साथ दे रही है, थैंक यू सो सो मच। वी हैव गीनू, मानिश, दिया, शामिला, थैंक यू सो मच। कटरबोन से यास्मिन जी हमारा साथ दे रही है, कह रही कि काफ़ी ठंड है वहाँ पर। यहाँ आज मौसम थोड़ा बदला बदला सा है, कभी गर्मी तो कभी ठंड, तो इस बदलते मौसम में आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। आनंद देवानंद जी, झीली जी, रिवेजी रॉम्पर से हमारे साथ जुड़े हैं। गाना जाता है आप दोनों के नाम। यूके से तनवीर हमारे साथ कनेक्टेड है, थैंक यू सो मच। प्रीति हमारे साथ जुड़ी है। राजेश, माया, पल्लवी, कमला सभी बड़े ही प्यार से साथ दे रहे हैं। ग्रीस से गुरिंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुरिंदर सिंह जी कैसे हैं आप? मेबक से रंभा जी हमारा साथ दे रही है। अगला गाना जाता है रीना, आपके नाम, आपके हस्बैंड के लिए और आपकी प्यारी बेटी रूही के नाम। और यही गाना यास्मीन, हाजो, आप सभी के नाम। राजेश जी, माया जी, आपको भी हम नहीं भूले हैं। और अनीता जी प्रताप, अनीता प्रताप जी, आपके लिए भी ये गाना चल पड़ा।
1: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।

0: दिलों की आवाज
1: चलिए दिस इज योर दिलों की आवाज और अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं जाबाज फिल्म का ये जो अगला तराना है तेरा साथ है कितना प्यारा गाना जाता है मामा नीतू के नाम पापा नवीन के नाम मिष्टी की ओर से गाना और आज डिंपल कपाडिया इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे जाबाज इस फिल्म में डिंपल कपाडिया नजर आई थी साथ में अनिल कपूर थे फिरोज खान थे एक गाने में श्रीदेवी भी नजर आई थी तो चलिए ये गाना जो है डिंपल कपाडिया को बर्थडे हैप्पी बर्थडे विश करते हुए उनके सभी फैंस की ओर से गाना जाता है यहाँ पर नाजियाना और रेशाद आपके नाम नरवेश आपके लिए यहाँ पर SSRN हॉस्पिटल से जितने भी स्टाफ इस समय हमें सुन रहे हैं रागिनी की ओर से अगला गाना आप सबके नाम हम करते हैं ऐसे आपने बताया नहीं कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं तो इस गाने को हम आपके नाम करते हैं उम्मीद करते हैं गाना आपको पसंद आएगा प्रीति गाना आपके नाम और आपके हस्बैंड ऋषि के लिए भी हम करते हैं ऋषि बाबूलाल जो इस समय काम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं नर्मदा जी हमारा साथ दे रही है बहुत बहुत शुक्रिया वी हैव राजेश एंजल अगला गाना आपकी ओर से आपकी मामा उमिला के नाम कुनल गाना जाता है आपके नाम और आपकी वाइफ वाफिया के लिए सुबीता जी हमारा साथ दे रही है नुश हमारे साथ जुड़ी हुई है थैंक यू सो सो मच शे प्रसाद आपका भी साथ हमें मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मौका मिला तो खुदा गवाह फिल्म का जो तराना है वो हम ज़रूर चलाएँगे LFC शुक्रिया साथ देने के लिए गाने को पसंद करने के लिए विकी सहाजू बहुत बहुत शुक्रिया मोस्ट वेलकम मीमी मैं बिल्कुल ठीक हूँ उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक है और अगला गाना कुनल आपके नाम आपकी ओर से आपकी वाइफ वाफिया के लिए आपका नाम हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चले दिलों की आवाज। और यहां पर दिलों की आवाज में अगले तराने की ओर हम बढ़ते हैं। किसी ने हम दिल दे चुके सनम फिल्म का जो गाना है उसकी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कौन सा गाना ये नहीं बताया, तो हमने सोचा क्यों ना हम केके की आवाज में इस फिल्म में जो एक कमाल का गाना है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रहे, इस गाने को हम करते हैं। इसी गाने के जरिए हम केके साहब को याद भी कर लेंगे, है ना। तो चलिए, गाना जाता है आप सभी लवली लिसनर्स के नाम, हमारे तमाम फॉलोअर्स के नाम जो टिकटॉक के जरिए भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यही गाना जाता है कियान आपके लिए, सियान के लिए, साथ में अकिल है, नेविन है, सभी दुमाओं परिवार जो हमारे साथ जुड़े हैं। रागिनी जी गाना आपके नाम, नीला जी आपके लिए भी, और यहाँ पर अश्विनी जी, निशाल जी, आप लोगों के लिए भी गाना चल पड़ा।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: और चलिए इसी के साथ दिलों की आवाज ये जो प्रोग्राम है खत्म होने को चला। इस समय जो है बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाइट शिफ्ट करते करते हमारा साथ दे रहे हैं। जितने भी लोग जो है हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी मरीजों की सेवा कर रहे हैं, ये अगला गाना आप सभी के डेडिकेशन आप सभी के इस डिवोशन इस डेडिकेशन के लिए हम इस गाने को आप सभी के नाम करते हैं। और इस समय बादवाग विदेशी जी हमारा साथ दे रहे हैं, गाना जाता है अनुषा आपके नाम इनकी ओर से। और जाते जाते यही तराना आप सभी लवली लिसनर्स के नाम, हमारे तमाम फॉलोअर्स के नाम जो टिकटॉक के जरिए हमारे साथ जुड़े रहे। बस जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी 9 बजे रेडियो मॉरिशस पर से। सीधा प्रोग्राम जो है आप रेडियो मनोरंजन पर सुन पाएंगे भोजपुरी तड़का। तो हमें दीजिए इजाज़त, कल हमारी आपकी मुलाकात होगी सवेरे 9 बजे आज की चर्चा इस प्रोग्राम में रेडियो मॉरिशस पर। तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, साथ देते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट लिसनिंग ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। गुड नाइट हमारी ओर से आप सभी को। अपना ख्याल रखिए।
0: दिलों की आवाज की आवाज।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: घड़ी मिला लाई बखत मॉरिशस में रात के ठीक 9 बजे बाद तू सुनता रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: 819 किलोहर्ट्ज़ दिस इज रेडियो मॉरिशस रेडियो मॉरिशस
2: कंटीन्यूअस म्यूजिक आरएम फ्री
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा
0: सब संगत यालो के अजय प्रताप सिंह से तालु की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन साथ में तू हमने के दिखा था रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर तो सब संगत यालो के स्वागत बा भोजपुरी तड़का अभी से लेके रात के 11 बजे ले जलसा ही जलसा गमत ही गमत हंगामा ही हंगामा जी हाँ और अब बनकर था कोनो भी भोजपुरी गीत से लेकर तो नंबर वन घुमैया कांजा को दे विद जगो विद सांक या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर अपन मिसाज भी जा करिया ये प्रोग्राम गीत मांगी के इधर उधर की बात ना करिया और अभी ढेर कोई हमने के टिकटॉक पर देखा था माधवी डुमा फिर शेला रामदीन अक्षय दर्शनी विमला मुतु और मिली तो जितना कोई अभी हमने के देखा था रेडियो टिकटॉक पेज पर ये पहल का गाना तो लोग खातिर मार ताली मार ताली मार हमर संगे मार ताली मार ताली मार बहुत ही प्यारा सन गाना कुणाल हिरीलाल की आवाज में और कामिनी बगुड़ी है गीत थोरो खातिर नरुका है गीत थोरो नाम रेशमी हंग है गीत थोरो नाम विश्वानी देसाई है गीत थोर खातिर फिर गोपी भी बाहमनी के संगे संगे और लीना मिस स्वामी वो भी हमने के साथ देवा था उमा बाचू भी हमने के साथ देवा था उमा जी नमस्ते और अनिता पैतब जी हाँ अगला गीत और खातिर और साथ में अनिता के नाम जो नहलन फ्लिकों फ्लाक आरती भी हमने के साथ देवा था देवी बेबी भी हमने के साथ देवा था जितना कोई हमने के साथ देवा था इस समय हमने के टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस पर और रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस उनकी सुनाते हुए गीत लोग के नाम मार ताली मार

बड़ा जलेंदी 8 जून की फिलीपींस में को बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ बाद जो है मिंडानो द्वीप के पास समुंदर में सरांगनी प्रोविंस के तट पर को बहुत जबरदस्त भूकंप पेश आलबा और ये भूकंप रिश्टर स्केल पर मापल गया 7.8 डिग्रीज और ये तीव्रता से वहाँ पर ही सब इमारत धीमना इमारत बिल्डिंग ढह गलवा 100 लोगों के मृत्यु हो गल बा 250 लोग घायल बा और ढेर कोई लापता हुआ सा और हई भूकंप के बाद वहाँ पर ही सुनामी के अलर्ट भी जारी करल गल पर बाद में सुनामी के अलर्ट के निकाल

केवल गरबा और दिन दहाड़े जन भूकंप आल बा ये ढेर कुल के जान नहीं लगवा ता हमने अपन सहानुभूति प्रकट करते ही सा फिलीपींस के जनता के प्रति कि देखा मृत्यु कैसन दर्दनाक और भयानक रहेला और ये दृश्य हमने देख रही सा यूट्यूब पर और गूगल पर कौन प्रकार से दो तीन सेकंड में है जो भूकंप आल और कितना लोगन की जान

और भगवान से प्रार्थना कर सके जो व्यक्ति की मृत्यु हो बा लोग आत्मा की शांति मिली। तो कबू सोची रहा सर जीवन आसान नहीं है, काल सब कुछ ठीक ठाक रहा और आज दिखाई काय कैसे वहाँ पर ही माटी थोंबले हो भूकंप आ और उतना लोगन के जान चल गए बा। तो कहा सकब जा बोले कैसे जैसी हमने अपन सहानुभूति प्रकट करते सर एगो प्राकृतिक प्रकोप है कोई नहीं सकेला रोके थोमल देती है बोल कौन सब कोई नहीं सकेला रोके। पर जब हमने देखते से तो हमने की आत्मा थोड़ा सुन हिल गल की कब भी कुछ भी सकेला हो जाए देख रहा कि एकाएक ही भूकंप में कितना लोगन की जान चल गई। तो चला भी को गीत सुनब सा अंशु के आवाज़ में सोचे के परेरा जिंदगी के बारे में कबो कबो की चोरा की कोनो ठिकान नहीं बा।

रात की 9:15 हुआ था तो उनकी सुनो तो रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर और उनकी लिखा तो वो जा टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस की और संगत या लोग फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो 11 जून की यानी कि आज 8, 9, 10, 11 है जे जी बिफे के 11 जून की शुरुआत फीफा वर्ल्ड कप 2026 और ये जारी रही 19 जुलाई 2026 ले और मेज़बान देशों यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा और मेक्सिको और पहली बार 48 टीम भाग ले हुआ था और कुल 104 मैच खेल जाए और उद्घाटन मैच मेक्सिको सिटी में हुई और फाइनल 19 जुलाई 2026 के हुई और पिछला विजेता जो वर्ल्ड कप रहा तो कल में विजेता रहा अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल

फुटबॉल टीम और है बरिस जिन शकीरा और बेनाबोई और विशाल गीत गेंस डाई डाई तो जितना कोई खुश फुटबॉल देखे के तो बेसब्री से हमने इंतजार करते थे और जरा बोला था तो हर लेकिन तू कौन पे ही के बोते कर बा कौन पे ही से केला निकाली फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमर कमेंट भी जा करिए जा हमने के टिकटॉक पेज पर बेशक और एगो प्यारा सन गीत आवा था कैसे मिलो ना बहुत ही प्यारा सन गाना और है गीत वा जो हाँ हमने चलावा थे इस चाची पर भावती का थी जो नहलन नोवेल फ्रांस चाचा आत्माराम श्रीमती का थी सुयाक रहेलन मोहिस परिवार खातिर और विशाल विशेषर जो हमने की कैंटीन में काम करें उन्हें गीत और खातिर तोहर पत्नी प्रहेल लाफलोगा और कल तोहर बेटा भावेश विशेषर के जन्मदिन बा तो बोलते हैप्पी बर्थडे भावेश धे बना प्यार और आशीर्वाद तोहर पापा विशाल तोहर मामा तोहर सब विशेषर परिवार की ओर से तो चलो एक साथ सुने है गीत वहाँ कैसे मिलू ना और है गीत चलावती से माधवी दुमर खातिर मेऊ मिम खातिर प्रेमिला पांडे गीत हर खातिर विश्वानी जमन शबनीज है गीत तोरो नाम और है गीत चलाव नेहा खातिर बहुत प्यार के साथ सुमन जी हमने के साथ देवत हवन और जितना कोई वीना भोला भी हमने के दिखा हवन टिकटॉक पेज पर तो है गीत थोड़ो नाम कैसे भी लेना जितना कोई रेडियो मनोरंजन और रेडियो मोशन सुना था है गीत तो लोग खातिर भी

आजकल महंगाई की जमाना बा दुनिया भर में सब चीज महंगा बा खाली मोरिस में नहीं कोनो भी देश में जे बत महंगाई बा फ्लैश होबा सब अगर झगड़ा होता तो ये सब के असर पड़ता और ये महंगाई की जमाना में कर सक बा पैसा बचा के रखे तो पैसा बचा के रखिया भैया सब पैसा डिपॉजिट सही कर दिया कहे कि बुरा का बुरा समय में पैसा ही काम आवेला न बाप बड़ा न भैया न बीबी न मैया द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया ये सगला गीत सुमन के गीत चलिए गीत वाचरावत इस संगतियाल के नाम आप हवन माधवी दुमा गीत मंगले हवन कियान सियान प्रियंका रखिर खतेर है गीत चरावत इस त्रियोले की सब परिवार के नाम जिराखंड परिवार हरकू परिवार करकतिया परिवार और चाची ललिता कुशल के नाम है गीत चराव से आरती की ओर से संजना मनोज और सब बुजू और देव की परिवार के नाम किवी है गीत और नाम तानिया सिवालक है गीत और खातिर शबनीज तू छुट्टी में आलो घूमे तह गीत और खातिर हैप्पी हॉलीडेज तानिया सिवालक है गीत और नाम और सुमन जीवन के साथ देवतावन जरूर अगला गीत और खातिर विश्वानी जमन तो चल अभी एगो प्यारा संगीत सुनब जा हाँ बहुत ही प्यारा संगीत है सुमन राम तोहर जलसा ग्रुप की ओर से बहुत ही प्यारा सा गाना

0: आजकल डिजिटल वर्ल्ड में जी थे सबने सब कुछ डिजिटल बा रेडियो टीवी सब कुछ एगो बटन दबाई बता सब कुछ हो रहा मिल रहा अब देखा रेडियो में बात करते ही सर पर तुम की सकते हुआ देखे भी और सुने भी प्यार से हाँ कि नहीं तो टेक्नोलॉजी के ज़माना बा भैया टेक्नोलॉजी के साथ चेहरा चले के आजकल इंटरनेट बा कंप्यूटर बा लैपटॉप बा यूट्यूब बा गूगल बा चैट जीपीटी बा जेमिनी बा सब कुछ ऑनलाइन जैसे एगो क्लिक कर बा माउस दबाइला कि सब चीज़ तोरा मिल जला होम डिलीवरी पिज्जा के मन तोरा मन करता पिज्जा खाए के मीन खाए के कि कोई चीज़ खाए के तो बात है मैंने आपसे जो ऑनलाइन डिलीवरी होम डिलीवरी करें नंबर वा डाल दे बा तो घर आके छोड़ दे तब सब पे करे वाह भाई वाह क्या ज़माना आ गया एआई का ज़माना है टेक्नोलॉजी का ज़माना बा अभी कर संग जब लाइन पे कर से मिल जा हेलो हेलो जी नमस्ते
1: हेलो कैसे हो
0: हम ठीक है तो शुभ नाम
1: हम विकास बोला थे रोस्टर से
0: हाँ तो स्वागत बा भाई विकास बोला
1: धन्यवाद अभी को गीत मांगब एक गीत है लेकिन भोजपुरी का गीत हुआ वो फिल्म के गीत है
0: एक फिल्म के गीत है भोजपुरी में
1: हाँ मैं गोविंदा का अंगना में बाबा द्वारे में माँ कैसी आप गोरी जो है घर में अंगना में बाबा द्वारे में माँ
0: फिल्मा के नाम जाने रहा
1: आंखें
0: फिल्मा के नाम है आंखें
1: अंगना में बाबा द्वारे में
0: भाई दिसंबर दिसंबर हमने क्या आजू में खेल लग बा
1: नहीं जाएगा लेकिन एक वो हिट गाना है
0: फिल्मा के नाम आंखें बोला तो हुआ ना आले भी खोजब सब भैया फिकर ना करिया और एक तो आखिर खातिर बोला था
1: सब लोग के नाम और जो लोग सुनता और जो लोग काम करता रात के
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद हमने की फोन कर लिया जा शुक्रिया शुभ रात्रि और लोगों संगत वाला लाइन पे शोभा पॉम्पले मुझसे कैसे शोभा
2: अच्छा भाई प्रताप जी कैसे हो अच्छा हुआ ना
0: हाँ हमने की देखा था टिकटॉक पर
2: नहीं नहीं नहीं
0: hey,
2: हम टेलीविजन देखा था कश्मीर की कली और राजू सुना थे
0: हमने किन्हें देखा था टिकटॉक पर
2: नहीं
0: hey, था कोई बात नहीं
2: नहीं टेलीविजन फिल्म आता है जैसे जल्दी लगा था ना दोनों दोनों प्रोग्राम जो दीबा
0: अच्छा बात
2: एक गीत मांगा था
0: अरे बोला
2: कहे दिलवा लगाई ला मोरे पिया संगे
0: कहे के गई लग बा
2: हम नमन या जाने ला हाउले की पा सात सहेली में क्यों गुमा मुआगावीला खूब नाचीला सात सहेली गो
0: हाँ दिनू वीर माला देवी हाँ बा कहे दिल वाला गई थी बा बा बा चलो
2: सब क्या
0: कर खाते हैं सब संगत
2: चलो खाते आप जितना कोई सब कोई सुनाता तो हर खाते
0: ओके
2: दिल नहीं लगे या दूसरा संगे
0: हाँ दिल नहीं लगे कि खतरनाक
2: अपन दिल वाला गई या अपन पत्नी संगे दांसेरी दिल वाला गई अपन पत्नी रानी संगे
0: और आज के दिन कैसे बिताए
2: बहुत अच्छा हमारा दिन रोज निमन में चलेला
0: तो हमेशा गमत में रहेगा
2: हाँ गमत में
0: अच्छा ऐसे भी हैप्पी हैप्पी रहे चिराई

0: ठीक बा
1: आले
0: नमस्ते रहल शोभा जी मामले मुझसे और है कि चाचे से कविता खूब लोल के नाम दुष 2024 और बेशक जितना कोई अभी उनके दिखा था टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉर्शस के जितना कोई सुना था रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉर्शस पर एक गीत तो रो नाम है कि चाचे से दिशांत सिंह चुबा के नाम कर पत्नी कर बेटा बेटी दामाद और सब परिवार और उमा जगन्नाथ लू पूरे हिरण इसका ये को बेटी दृष्टि दामाद बहादुर और सब परिवार के नाम सब बहादुर और जगन्नाथ लू परिवार के लिए तो चल एक साथ सुना जाएगी तो कहे दिलवा लग गई थी

है दिलवा लगाईदा मोरे सैया संगी बहुत ही प्यारा संगीत रहा लाशा कहते गीत थोड़ा पसीना लो यार अब थोड़ा सुन आगे के जमाना के बारे में बताए आपसे आगे पहले सब कोई नदी जाता हल लुगा धोए बरका बरका बाके किवेत के कपार के ऊपर जातरी से लुगा धोए और नदी में लुगा धोआता हल नदी में चिंगरी मारतरी से लेकर लोग नाजे करे वहाँ पर ही और आगे के जमाना तो कुछ और हल है और सब कोई नदी जाता है और आजकल कहाँ कोई नदी जा रहा कोई जा रहा काजरी सीमा बाकी नहीं नदी दी जाए कि पर पहले के ज़माना में लाफोंटेन भी रहल और सब कोई उनकी बाता चिरो कपार में लंबा लंबा गमेल लेके जाता रहन सर पानी भर के आना था रन सर पानी से भात पके नितवायास हो और वही पानी से सब कोई नहाई धोवाई तो अब सब कुछ बदल गए बा आगे लिखा नहीं बा है भी सब कुछ सपास जीते बा तो अभी सब कुछ बदल गए बा है पर आगे का ज़माना कुछ और रहा सब कोई संगे संगे जाते जी सर माँ बाप लड़का फैका सब कोई जाए थे नदी में है एक बगल पिताजी जो ना चिंगड़ी मारा था माता जी दुगा तो होता लड़का लोग नासी कर रहे थे पर आजकल सब बदल गए बा तभी वो गीत सुन अब सर लाफोंटेन गाँव के लाफोंटेन हुआ गीत चलावर थी सर रीता सितालू के नाम गीत साइदेश अनुष्का रानी परी और सैरन खातिर गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत चलावत इस विकास भाई खातिर फिर श्रीदेवी तिलोकी है गीत होरो खातिर और तक्ष है गीत होरो नाम करुणा दुर्गा अमृत है गीत तोहर खातिर भाई विकास बोलता आजकल मासी नावे बा अब धोआ जा रहा लुगा हाड़ी से पर मासी नावे में और हाथ में लुगा धो के एगो दूसर है अपन हाथ से लुगा लगर लगर के धोआ तो दलग घमा में तो दूसरा भाई मासी नावे में जा दे रहे थे हाँ हम नहीं बोलते नहीं खुशी रही रह सर पर आगे की जो रहल तो वो एक एक सावे रहल और जॉर्डन हमके साथ होता हाय जॉर्डन सेंटो वेस एस एस हेलो आई एम फाइन एंड यू जॉर्डन हाउ आर यू होप यू एंजॉयिंग द म्यूजिक आशा करते हैं तू हाई लाइव देखा था और हमने के म्यूजिक पसंद करते हुआ तो अगला गीत तो और खातिर जॉर्डन बहुत बहुत प्यार के साथ और देव जीवन भी हमने के देखा था तो चलो सुन अब सर गाँव के लाफोंटेन की कहानी राजकमल राजकमल चिंतामणि की आवाज़

ये रहल गांव के लाफोंटेन की कहानी और अब हम बात करब सा ऐसन एगो सब्जी के जो खूब प्रयोग होला मॉरिशस में दुनिया भर में वह आलू पोटैटो एक आलू के ढेर मला व्यंजन बनेला जैसे कि चिप्स आलू टिक्की तरह तारल आलू आलू मसाला में आलू बैगन में आलू मुर्गी की तकारी में और आलू से ढेर मना व्यंजन बनेला और आलू के प्रयोग होला है जैसे घोपा के गुलादुप करत हुआ या आलू के बुयो बनेला आलू के सलाद बनेला भी है आलू के बुई करके जोरी से इसको के काट दे गोल गोल होकर में बेथाव डाल दे पीमा प्याज डाल दे तो आलू के सलाद बन जा रहा हाँ कि नहीं तो आलू जो है ओकर प्रयोग करल जला है ढेर मना व्यंजन में ढेर मना प्लाम में के तैयार करी रहा सर गातोपोम देते है तारल आलू बेसन में डाल के वह बनेला और आलू के चटनी बहुत ही लज्जेदार बहुत ही मज़ेदार है आलू है और आलू के कोनो भी मसाला में दलब रोगाए में दलब चिप्स बनेब या कुछ भी तो बढ़िया अच्छा लगेगा खाए के हाँ कि नहीं पीमा फौसी भी बोला था आलू और पीमा फौसी हाँ तो हयो सकब करे विकास आलू के जोड़ी से डाल दे तार दे जोड़ी से निमन आलू चाहना है और जो आगे के आलू जन रहा तब नहीं मिलेगा है अभी को बालू आलू मिला था बालू बालू रहेला ओकर आपुआ में का आज निकाही पर आगे जब आलू छिड़त रहे तार से अलुआ लाल हो जाता अब अलुआ के ढेर तरब अभी के आलू के उजर जला का जनी का है से नालू बा तो चल अगला गीत दादा के कहानी सुन दादी के कहानी है गीत उदाई दलनी राम जी के नाम रहन रिवे जी पोस्ट किशन गुड़िया केशव बिलक प्रीतम राज मिला और साथ में अश्विन बच्चन बच्चन और बड़ा भाई और सब परिवार के नाम बालदेव जी उनकी दिखा था वन टिकटॉक पेज पर बालदेव जी गीत और खातिर माहिर इमानुएल ऑक्चिल एस एस एस से हवन जा हमने के देखा था वन और सुना था वन तोहर खातिर भी विश्वानी जमन अगला गीत और खातिर और गीत आश खातिर भी चलाते ही सर बालदेव जी खातिर आश खातिर भी और है गीत चली वीरेन के नाम भी जन बहुत प्यार से हमने के सुना था वन और दिखा था वन लीना और आरती है गीत हो रो नाम दादा की कहानी सुना दादी की कहानी

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

0: संगे एमबीसी रेडियो पर कमर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: Continuous music.
2: RM3.
3: 7 days a week, 24 hours a day.
4: My,
3: this is Radio Marxist.
5: ये वक्त हम की लाइव प्रसारण चला था एमबीसी मोका से रात के 9:53 हुआ था और एमबीसी रेडियो के दुगो चैनल पर चलाया था प्रोग्राम एको है रेडियो मनोरंजन दूसर का रेडियो मॉरिशस प्रोग्राम है एकदम चकाचक तलों के पसंदीदा भोज हुई तरका तो संगतिया जय प्रताप सिंह सीतालू के साथ और हमने तो नचते गए थे आवाज ऐसे और नचते गए थे जब से यहाँ से बचा बोल सुना नयन की गीत चली पर गीतों से पहले हम थोड़ा सुनावा बबी महाभारत के कहानी तो आगे को टीवी सीरियल आवतर हमने के एमबीसी टीवी पर बीआर चोपड़ा द्वारा ओकर नाम रहल महाभारत तो महाभारत कौन सी है एगो महाकाव्य है और एकर में ज्ञान या ज्ञान योग बा कर्म योग बा भक्ति योग बा और कहानी के आरंभ हस्तिनापुर राज्य में दुगो कुल रहल एगो पांडव और एगो कौरव पांडव में रहल पांच पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव और कौरव में रहल दुर्योधन और ओकर सबगो भाई तो दोनों राज परिवार के सदस्य जो रहल वो लोग में उतना नहीं बनाता है दुगो कुजे हैं वन से पांडव और कौरव तो एक दिन वो लोग एगो खेल कर लन था और वो खेल में पांडव हरा गल तो पांडवों के पर वनवास जाए के और कौरव लोग छल से जुआ खेलन सा और छल से पांडव के हरा दिलन सा और वहाँ पर ही होला द्रौपदी वस्त्र हरण है बदमाश दुशासन जो था द्रौपदी की भरी सभा में खोचेरा कर वस्त्र हरण करे के तभी द्रौपदी कृष्ण भगवान की याद करेला और बढ़िया से जब भगवान की याद करब तो भगवान कोनो न कोनो रूप में आवेला तब भगवान आशीर्वाद देवेला और द्रौपदी के वस्त्र हरण से होई से बचावेला और बेशक है जो महाभारत की जो कहानी है वो कुरुक्षेत्र मैदान में होला और श्री कृष्ण भगवान जो है वो एगो गुरु के रूप में आवेला और अर्जुन एगो स्टूडेंट के रूप में और है जो युद्ध है ये 18 दिनों तक चलेला और अर्जुन युद्ध भूमि में जो है कृष्ण भगवान से ढेर कुछ सीखेला अर्जुन ढेर मना सवाल पूछेला कृष्णा से कृष्ण भगवान जवाब देवेला और युद्ध में बहुत बड़ा योद्धा लोग लड़ाई कर लन से जैसे भीष्म पितामह कर्ण द्रोणाचार्य अर्जुन अंत में पांडव विजयी होला लेकिन दोनों पक्ष के बहुत हानि होला महाभारत के संदेश ये है कि सत्य और धर्म के पालन चेहरा करे के और तोहरा चेहरा तोहर हर इंसान के चेहरा अपन हक खातिर लड़े के एगो कुरुक्षेत्र ही जीवन तोहरा चेहरा लड़े के अपन राइट्स खातिर हों कि नहीं और अहंकार के परिणाम का होला ये देखी सही महाभारत कहानी में और महाभारत के कहानी के लेके ढेर मना टीवी सीरियल बनल बा कार्टून बनल बा ढेर मना भाषा में कर

ता अनुवाद होल बा और फिल्म भी बनल बा पर अभी मॉडर्न जमाना में जिससे भी एगो मॉडर्न रामायण के फिल्म बनता अभी वो रामायण फिल्म बनता बॉलीवुड में आशा करते हैं कि लैंड के जो चैत्य लोग महाभारत पर भी एगो फिल्म बनाई अंजा तब बड़ी रोचक कहानी है महाभारत एक में ढेर चीज हमने के सीखे कि जैसे कि कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग हाँ कि नहीं तो अगला गाना बच्चा बोल सुनने की गावल है गीत अनायत खतीर फिर है गीत चली लक्ष्य खतीर यस हेलो लक्ष्य और है गीत शमीला खतीर विद्यानी सी चयन खतीर भी और जितना कोई हमने के देखा था टिकटॉक पेज पर है गीत और खतीर जितना कोई रेडियो पर हमने सुना था गीत तो लोग के नाम बजा बोल सुरन की आवाज़ में और हे गीत चलावप सा हमने बहुत बहुत प्यार के साथ संदेश और लता खातिर और अंजलि और शिवानी खातिर प्रीतम की ओर से पत्नी ज्योति बेटी प्रियंका पूजा दामाद राविश सिंह और है गीत चली सब लोगों के नाम जो नबी हमने की सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और जो हमने दिखा था टिकटॉक पर गीतों नाम बजा बोल

ढेर कोई सोचे रहन सा कि हमने के जोन गृहिणी है लोग के काम नहीं रह रहा ना घर में धीर मना काम रह रहा अब फजर के उठ के पकावा लड़का लोग खातिर पति देव खातिर जब पति देव काम में चल गए लड़का लोग काम लड़का लोग लेकर चल गए सब बर्तन नमाज की धोवा घर के साफ सुथरा रखा दिन की खाना तैयार करा अब शाम के जब लड़का लोग और पति परमेश्वर काम में से आए तो लोग के चाय दे के गरम गरम तो नहीं बुझा कि जो मैडम घर में रह रहा लोग काम नहीं रह रहा ना ये लोग ढेर काम रह रहा हवे कमा कोई कि पे करके करेबा तो कैंस में अमीर हो जाए भैया तो गृहिणी लोग के एंड एस्टिमेट नहीं करिए हमने कि जो माँ बहन लोग घर रह रहा हाउस वाइफ लोग वो लोग के ढेर काम रह रहा वो लोग के हमने ग्रांड सैल्यूट कर दिए सर जितना माँ बहन लोग घर में रह रहन सर अपन घर संभाल रहन सर और जितना कोई काम करे जा रहा वो माँ बहनों के भी हमने के ग्रांड सैल्यूट है अगला गीत जो है वो है मंगा द 9 लाख के हरवा और रहेगी तो आपने चलावत ईसा गौरंगा की ओर से कर सासू माँ शिमला कर ससुर जीतन इंद्र मत्तु सिंह है गीत और खातिर है गीत रविश मंदू की ओर से और माता पिता कर भाई भौजी और सब मंदू परिवार के नाम मणिप्रिया है गीत तोरों खातिर मनु चंद गीत तोहर नाम चलावत ईसा और शमीरा तो गीत मैंने गोरकी सवर किए गीतों की बात छदी ओके ठीक बा और जितना कोई अभी हमने की सुना था रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर जितना कोई हमने देखा था हमने की देखा था टिकटॉक पेज पर गीत लोग के नाम मंगा द 9 लाख के हरवा हम अपन हार सरियावत ही भैया 9 लाख के तो नहीं है पर हाँ एगो हार 9 लाख के हरवा मंगा द देखिए कंजूस नहीं कर दिया जब तुहर पत्नी भौजी तौर से बोली हमके 9 लाख के हरवान का द तब चेहरा देख के अरे भाई शाहजहां तो जो है मुमताज़ का थी ताजमहल बना दे लगते वो 9 लाख के हरवा भौजी नहीं सकते दे का हो ऐसी कंजूस ऐसा कंजूस बोलते

मंगादा हमर 9 लाख के हरवा 9 लाख के हरवा भौजी के दिया भौजी तोरा बड़ी खुशी रही भौजी तो से कबू झगड़ा नहीं करी 9 लाख के हरवा दे दिया हो और अपनी बात कर सब निके एमबीसी रेडियो के बारे में जी हाँ जब भी तोरा मन करी तब अपन रेडियो ऑन करिया और अच्छा अच्छा प्रोग्राम सुनिया अच्छा अच्छा गीत सुनिया फजीर से लेके रात से लेके फजीर ले 24 घंटे सातों दिन एमबीसी रेडियो पर हमने आनी रह सत तुलो खाती दिलचस्प कार्यक्रम जबरदस्त म्यूजिक और तुलो के पसंदीदा गाना तो आशा कही रह सके जब भी थोड़ा मन करी जब भी मन उदास हो या जब कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता तब पर रेडियो ऑन करिया और बेशक हमने के साथ दिया ठीक बा अगला गीत चली सैतुम एस एस एस के सब स्टाफ लोग के नाम टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ हमने के रेक्टर निखतेर यूनिवर्सिटी मॉरिशस के सब स्टूडेंट्स लोग के नाम जो बी फ्रेंच ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री में हवन एम ए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू और जो पी एच डी फ्रेंच कोर्स में हवन सब स्टूडेंट्स के बोला पोंकवाश अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करिए और अपन डिग्री में नंबर वन से पास हो जा और अगला गीत जो है गुरकी सवर की है गीत चरावती से प्रवीण गर्ती मगर के नाम आप नेपाल से हवन और हबी मॉरिशस में हवन जा शामिल है गीत थोरो खातिर इंदिरा मत सिंह है गीत थोरो नाम चरावती ईसा और शमिला को जालो गए सन मरलक बा बाप रे बाप हमने सब अभी ऑन एयर पर ही 9 लाख के हरवा नहीं दिलक भैया देख लो ना पाफे नौ ये 9 लाख के हारने दिलक तो कुनो कादू तो देवी रहना हाँ तो कोई बात नहीं है और चलो अभी गीत सुने गौर की सवर की और गीत तो चलाते सब लोगों के नाम जो हमने के साथ जुड़ा हवन जा

हमने के मजदूर भाई बहन लोग कड़ी मेहनत करन सब दिन के देखी रहा जब कॉलेज जायला त देखी रहा सर कैसे कारों में काम करते हैं सब फजर के बुंदरे 5 बजे चल जा रहे कारों में काम करे और दिन भर कारों में काम करे रहे सर आसान काम नहीं है तो हमने की जितना मजदूर भाई बहन लोग कहते और लोग हमने की सुना था तो लोग के ग्रैंड सैल्यूट करते हैं तो लोग के नमस्ते बोलते हैं तो लोग के योगदान से हमने के झुरी झुरी और स्वादिष्ट लगी मिलेगा खाई के तो अगला गीत विक्की गोपाला के नाम अगला गीत है जलसा लालबा गीत तो आप विक्की गोपाला का तेर उनका सब परिवार फिर निधि त्रियोले से गीत नरेश प्रतिमा और इशिका सुकारी के नाम और मिकराज बालदुआ भी हमने के दिखाता हुआ ना टिकटॉक पेज पर है गीत थोरो नाम और किशोर तुरी है गीत थोरो खतर चली और मसूद भाई का तेर भी और है गीत तो हमने चलावते स्वीति और स्वीनी के नाम और वाकवा के शोभा खातिर रवि को संगत है लाइन पे ओकरा से मिलब जा और ध्यान रखे जब टेलीफोन कर बत बतिया टेलीफोन करके कटिया नहीं ये खातिर हम नहीं खुशी देला जब टेलीफोन कर बत चेहरा बतिया की नहीं कि टेलीफोन उठा

0: téléphone cardé with us, a very bad habit. 402-808-5 पर लाइन खुलल बा नेबर की लाइन नहीं देवते लाइन देवते भैया तब बात कर लिया जाए और गीत के बीच में टेलीफोन नहीं करिए गीत के बीच हमने कॉल नहीं दिया सका है कि गीतवा चला पूरा चलाए कि गीतवा पूरा चल जाए तब सुने करिए तब से कब से तो लोग के फोन कॉल्स लिए अभी देखा था ये टेलीफोन बजे था और देखिए सर व्यक्ति फोन वाले वे लगे नहीं हेलो तो रखा बोली हेलो हेलो जी नमस्ते
1: नमस्ते जी
0: तो हर शुभ नाम
1: श्रीमती
0: कहाँ से
1: सूर्या से हो
0: तो स्वागत बा चाची बोला
1: हाँ गोगी दादा हमार पोसल चिरैया
0: हाँ
1: उजाला परदेसी के अंगना
0: हमार पोसल चिरैया की दादा के पोसल चिरैया
1: दादा के पोसल चिरैया
0: ए ता दादा कैसे जोली जोली चिरै बागे मामा
1: हाँ उजाला परदेसी
0: देखा तो ना दादा के पोसल चिरैया चल जाता
1: हाँ
0: के कर खातिर
1: ये गीत आदाब दिया सब परिवार लोग खातिन
0: ओके
1: चंद्रमुनि परिवार मोहिश परिवार खातिन और आप खातिन भी डाल दिया
0: ओके बहुत धन्यवाद अभी क्या बजे ले सुन रात के 11 बजे ले हेलो चाची नहीं समझ लग दिख रहा कोई बात नहीं अगला फोन हेलो
2: हेलो
0: नमस्ते जी प्रेमिला जी कैसे समाचार दादा के पुसल पसल ललका चिरैया उरल जाला सच्चे के हेलो है वो गीत अभी चली दादा के पुसल पसल ललका चिरैया सुन लिया वो गीत वा
2: हाँ
0: और बोला कैसे बात समाचार
2: समाचार अच्छा ठीक
0: बटे
2: देखो है ये गीत
0: चले बाबी नहीं कौन गीत सुन बा तू तोहरा कौन गीत मन बा बोला
2: माँ पर
0: अरे कौन गीत है बोला था एक जोली गीत माँ पर भोजपुरी के
2: हाँ माँ बोले नन्ना जे किसी नाम हो भात पानी
0: खाके थोड़ा दिन दाल खाके थोड़ा दिन पानी पी के औसे नहीं शुरू होला कोनो दिन दाल खाके कोनो दिन भाजी खाके ना
2: आले
0: पाफ नहीं आले गीत आके कर खातिर हाँ बोला
2: तीन गो बहन खातिर
0: हाँ
2: और है भाई राजन खातिर हुआ अच्छी रहना लाख लोगा
0: ओके
2: उनका बहन भी मानती और उनका पत्नी उनका दो बेटी
0: आले चला दियो अब सर ठीक बा
2: बहुत धन्यवाद शुभ रात्रि
0: शुभ रात्रि और कॉल बा हेलो हेलो
3: हेलो
0: नमस्ते
3: नमस्ते हो
0: के हवा जा
3: शांता सुकारी
0: हाँ चाची शांता कैसे समाचार
3: अच्छा बस सब समाचार तो रहे हाथ में बस सुना था कब से टेलीफोन कर रहा था का नियम बेचते का बोला था वो टिकटॉक में
0: हाँ टिकटॉक में सब जा देखे और सुने भी हमने टिकटॉक पर
3: कैसे टिकटॉक में हम नहीं जानी ला
0: ए दादी को की बोलिए अब थोड़ा बता दे के लड़का लोग बता दे
3: अब लड़का लोग सुतल बा इतना बखत लोग नहीं लियन सा
0: हम ए बाबा देखिए अभी की
3: अभी सुनियन सा बोली था हम भी ले सुतल नहीं है
0: कुछ बात दादी के मन बा गीत सुन के बोला दादी कौन गीत सुन बा
3: हाँ चाची हाँ गीत मांगा था हो हमारा लड़का लोग बोल दिले बाबू ने रे अल्लाह नी बेस है हमारे बेटा के
0: कौन गीत
3: सोना ऐसे के हो बस हम चुप बोल के
0: हैप्पी बर्थडे
3: हाँ
0: हाँ बा बा की तो बाद बाद आदि बोला
3: सुना होकर चार गो भाई बा अशोक के बाद
0: अशोक के जन्मदिन बाद जन्मदिन मुबारक
3: तर रविनन हाँ रविन होकर भाई हाँ ओके शुभकामना देवता रविन सुदेश सुजीत ये सब के शुभकामना और हम सब परिवार सुकारी अरे को भगिना रहेला को भगिना रहेला रोजबेल ओके नाम बा संजय एच एन
0: अक्सर टेलीफोन ही करे रहन हमने की भाई संजय हाँ
3: ना यू नहीं हाँ दूसरा
0: एगो दूसरा हाँ बोला बोला
3: एगो दूसरा हाँ ओके नाम बा संजय एच एन ओके

0: se sentant relax.
1: Et un bon anniversaire, Bhaiwake, dire mon appuyer, Ashirwad.
0: Ah, ah, hal hamar ha, bol ul ki sab chal gal. Bakir badi deri, ab kani suni ki nahi suni.
1: Paafi naya to pan devoa karate wa tu git manga te wa usun.
0: Ha, dada thay beta. Sal ma tu takadni masin lave ki hal bulat hawa.
1: तब सब चेहरा जाने के न चाची देख जाने लेकिन लोग नहीं जानी माँ चेहरा लेकिन
0: अभी के कहाँ जाने लंसा वो सब हो जाता है दुख सुख का
1: बात तो हमने की दिवा बताई के
0: हाँ
1: उसे बताई देखा तो आजकल कहाँ हुआ
0: था
1: कहाँ देख बाबर चाची का दुनिया
0: वे
1: उल्टा जवान जवान छोकरा छोकरी खुशी होके मरत कहाँ
0: हाँ बोल दे हमार गिटवा डाल दो
1: आले डाल दो भाभी हाँ
0: बस अच्छे से आले नमस्ते तोरे
1: आले नमस्ते शुभ रात्रि और अगला गीत जोन है चली सुदेवी जोन है वन वाकवा से गीत प्रोग्राम बड़ी एंजॉय करता है वन दादी ललिता कुशल परिवार खाते रात माराम भैया मालंगा की कृष्णी कृष्य कृषिका लक्षिका सब राम रतन परिवार के नाम वंडरफुल नाइट गुड नाइट गॉड ब्लेस यू ओके सुदेवी अवाकवात गीत तोर खातिर चली जलसा लालबा वेदिनो है गीत तोर खातिर लव बॉय और तमंग और जितना कोई भी उनके साथ देवता है गीत तो लोग के नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ जलसा लालबा चल एक साथ सुने

0: गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमर धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: Continuous music.
2: RM3 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
4: संगठन लोग आजकल देखी रहा कि ढेर कोई ढेर गुस्सा कर रहा था बात बात पे गुस्सा खींच कर रहा और एक गुस्सा जो है ये इंसान के सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा नहीं कर रहा है गुस्सा से तो और बीपी हाई होला तो और तोशों से की मोती हो जाए तो है गुस्सा जो है ये तुम्हारा सब प्रकार की बीमारी देवेगा। काज ने कहा हमने देखी रहा आजकल ढेर को छोटा छोटा बात में गुस्सा कर रहा था तो अपन गुस्सा पर काबू करिया है बहादुर इंसान वो है जो अपन गुस्सा पे काबू कर रहा है। गुस्सा में कोनो काम कर दे कोनो बुरा काम तो बाद में पड़ेगा पछताए के तो गुस्सा जो है एक ही कंट्रोल कैसे कब से कंट्रोल करे सकब से जब मेडिटेशन करब से योगा करब से पूजा प्रार्थना करब से सत्संग में जब से अच्छा लोगों की संगति करब से तब हमने सकब से अपन गुस्सा के काबू में रखे है। गुस्सा के कारण ढेर घर टूटा था आजकल छोटा छोटा बात में पति पत्नी में कि एक दो बात हो जाला पति नाराज हो गया या पत्नी नाराज हो गई तब पत्नी बोले हम जाते हैं हमार माँ लगे है सबसे बड़ी बात हम जाए हमार माँ लगे और घर छोड़ छाड़ के चल जा रहे सर तो एक गुस्सा पर चहला काबू रखे के गुस्सा हमने के समाज के बर्बाद करता है ठीक बा। और अब एगो गीत चल अब सर गीतवा संगे संगे गाओब सर नाचब सभी जोड़ी छोकरी से प्यार करीरा और गीतवा भाई कुणाल हीरा गैले रहन जब सामधी की गरली सब लूबे फन बीच फैमिली फन बीच मदर्स डे स्पेशल में तो कुणाल हीरा गीतवा गैले रहन जितना कोई आर हमने के देखे

0: तर सबको की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। याद भाई ना सामजी के ब्लूबे में आर एल जहा हमने से मिले, रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती के टीम सब वहाँ पर रहल और खूब नची सके से भाई कुणाल खे लाल संगीत गीता जोली छोकरी चलावत इस राज मन्ना खातिर और सब परिवार जिमी दुखिया सावन दुखिया सुदेश जसवा कर महाराज कुमारी छिबुक लोंग राजा श्री माना नानो खातिर संजय हरिचंद के परिवार के नाम कुणाल हीराल के परिवार के नाम और पूर्णिमा फोकीरा के नाम और है ये गीता चराब से मासूद साहिब के नाम समद भाई के नाम भी और राधा वन वेलफॉर्म से राधा से मेरी भेजा। हेलो राधा।
1: हेलो नमस्ते भाई साहब।
0: राधा जी नमस्ते, कैसे समाचार?
1: बोला से नमस्ते।
0: कैसे
1: बात? ठीक बा।
0: हाँ
1: कैसे
0: हुआ? चलो तक
1: गमा डाल देता
0: है
1: जालोग डाल देता, खूब
0: जालोग डालत हुआ। हाँ तो जालोग जालोग डाल सकते अपने सबको हमने की सुनी।
1: हाँ आलू की चटनी डाल पगल बा। कुछ पकायला आज बोला था, कुछ पकायला बिजीता है ना।
0: हमने यहाँ कौन सी पकल का आज भुला गई थी, कुछ पकल है
1: अब वो खा लेता है।
0: कुछ पकल का पकाय दे, बोले
1: का पकायला है घोगाम
0: चोले
1: पकड़े
0: सारे आले अभी प्रोग्राम फिर तो आप थोड़ा लगे भोजन करे ठीक बा
1: आगे खा ला
0: आले बोला
1: घी डाल दिया हमारे खातिर थी कौन फुलवा फुलेला तोहर अंगनवा में
0: ठसुन गा द खातिर
1: हमारे सब बहन खातिर हमारे जितना भाई बहन बा हमारे नेवे नहीं है सब खातिर चपल उत्सव और हमारे भाई हमारे नेवे बबीस नितिन
0: ओके
1: और हमारे सब कमार लोग
0: सामने की जब गई फेतुआ में ब्लू बे सीसाइड में एमबीसी के टीम संगे सब हमने की श्रोता लोग हमने की ज्वाइन करे सब कोई खूब नचती सर तभी गीतों पर नाच सर गाव सर तू हमने की संगे संग गई आले 1 2 3 4 Let's start. संगे संगे चला गाय के हैं शर्मैया नहीं

राम साहब हमनी के संगे जुड़ल बा। राम जी गीत हर खातिर तू भी जोड़ी छोकरी से प्यार करिया। हेलो बिग जो, हेलो मिस्टर इकबाल।

0: बकरा जो दिखेला
1: कैसे बतावा
0: कैसे बतावा
1: याद में चलेला
0: फजिर फजिर जब बकरा जो दिखेला

गीतों के बाद वो अंतिम गीत सुन बचा उमेश दोहू की आवाज में जिले जिले जिले जिले। अब गीतों के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम समाप्त हो जाए। रात के 11 बजे सुन बचा अगला प्रोग्राम सुनहरे पर, रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे सुन बचा नॉनस्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तलों की मुलाकात हो बुधवार के रात के 9 से 11 बजे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन टिकटॉक पेज पर। तो रात के 9 बजे से 11 बजे ले हमने के सुना जा, हमने के SMS कर ला, हमने के टेलीफोन कर ला, टिकटॉक पेज पर हमने के देख ला। बहुत बहुत धन्यवाद और एक मुलाकात तक हमने के इजाजत दे और जय प्रताप सिंह से तालुक से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल फिर से आ गए हैं गिनीश का साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनीश का प्रणाम। वैसे दोस्तों, पुराने गीत एक खजाना है जो जितना सुनाए जाए उतना ही दिल को सुकून देता है। आज हम इसी खजाने के मोती चुन चुन कर आप तक पहुँचाएंगे। बस साथ बनाए रखे और संगीत की इस खूबसूरत दुनिया में खो जाइए। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

जिंदगी की भाग दौड़ में अगर कुछ पल सुकून के मिल जाएं तो दिल वाकई में खुश हो जाता है मेरी जान। आज सुनहरे पल में हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही सुकून भरे गीत जो आपकी शाम को और भी हसीन बना देगा, हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए आराम से बैठ जाइए, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

वो जमाना याद है आपको जब रेडियो के आसपास पूरा परिवार बैठकर गीत सुना करते थे बिल्कुल जी आज हम फिर से वही माहौल लेकर आए हैं तो अपनी यादों की किताब खोलिए और हमारे साथ इस सफर में जुड़ जाइए मैं हूं गिनिशा जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल और ऑफ कोर्स इस पल को हम खास बनाएंगे इस गीत के साथ

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: पुराने बॉलीवुड गीतों में एक अलग ही मिठास होती है, उनके बोल दिल को छू जाते हैं और उनकी धुन रूह तक पहुंच जाते हैं। आज की महफिल उन्हीं अमर गीतों के नाम, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

दोस्तों आज हम लेकर आए हैं उन कलाकारों की आवाजें जिन्होंने बॉलीवुड संगीत को अमर बना दिया। उनके गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने सालों पहले लगते थे। सुनहरे पल में ऐसे गिने चुने नगमे हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप गाड़ी चला

गाए। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ और भी गहरे हो जाते हैं। उन्हें सुनते ही पुरानी यादें, पुराने दोस्त, पुराने पुराने दिन याद आ जाते हैं। आज हम उन्हीं गीतों को आप तक लेकर आए हैं आपके ही मनपसंद शो के साथ। जी हाँ, आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हम वापस आएंगे एक और खूबसूरत से शो के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर शुभ रात्रि, शब बखैर।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हम

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्ही ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती है, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा, तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।

देखो देखो वो आ गया।

को कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे।

उनकी लाइफ, ड्रंकड हस्बैंड, फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े।

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे

देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

लुटी खुशी पर लौट के आई आई रे आई रे आई रे आई रे आई पीना छूट गया।

दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए, प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारिया

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।